आज सोमवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 21 सितंबर 2026। इस समय प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब आज की प्रथम सभा आरंभ होती है। इस सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी है। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र में राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनके यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। श्रीमती मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्मा कुमारी के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअली पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्मा कुमारी नडियाड के विकसित भारत के लिए, युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। साथ ही डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी करेंगे। यात्रा के दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन न्याय विभाग आज गोवा में दिशा 2.0 योजना के अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन करने जा रहा है। इस कार्यशाला का उद्देश्य प्रौद्योगिकी सक्षम कानूनी सेवाओं, कानूनी जागरूकता और निःशुल्क कानूनी सहायता के माध्यम से जमीनी स्तर पर न्याय की पहुंच को मजबूत करना है। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में गोवा के राज्यपाल पुसापति अशोक गजपति राजू शामिल होंगे। उनके साथ विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा का शरदकालीन सत्र आज श्रीनगर में शुरू होगा। 10 दिवसीय यह सत्र 30 सितंबर तक चलेगा और इसमें 7

0: बैठकें होंगी। सत्र के दौरान सरकार द्वारा जीएसटी, नगर पालिका प्रशासन और व्यापार सुगमता से संबंधित उपायों सहित कई विधायी प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने कल वाराणसी में झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीएस के प्रमुख ब्रिजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रिजेश गंझू करीब दो दशक से फरार था। उसकी गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और एनआईए ने 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आगजनी, आपराधिक साजिश और सरकारी कर्मचारियों पर हमले सहित 50 से अधिक मामले दर्ज थे। रियो की निर्देशित फिल्म अंग ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्लेटफॉर्म प्राइज 2026 जीता है। अंग उन 12 फिल्मों में से एक थी जिन्हें इस साल के प्लेटफॉर्म प्रोग्राम के लिए चुना गया था, जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का एकमात्र प्रतिस्पर्धात्मक श्रेणी है। जापान के आइची नागोया में एशियाई खेलों के पहले दिन शूटिंग में दो रजत पदक जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ी आज भी पदकों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। एलावेनिल वलारेवन, विदर्शा विनोद और सोनम मस्कर ने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

अंतकालीन चिंतन के अनुसार ही जीव की गति होती है। अतः मनुष्य को हरदम भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जिससे अंतकाल में भगवान की स्मृति बनी रहे।

जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं।

आज की वंदना कार्यक्रम में आपने सुना नीना मेहता, राजेंद्र मेहता, सीपी मिश्रा, संध्या मुखर्जी और राजेश मिश्रा की गाई ये भक्ति रचनाएं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये संवेद स्वरों में देशगान।

0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन बिंदु। विषय है उत्तम सत्य धर्म। आलेख और वाचन है नीरज जैन का।
1: साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। वास्तव में सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता, और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं होता। सत्य ही हर धर्म की आधारशिला है। सत्य संभाषण प्राणियों को निशंक बनाता है। सत्य वचन बोलने से संसार में मानव की धवल कीर्ति का प्रसार होता है, जबकि असत्य भाषण से अपकीर्ति फैलती है। असत्यवादी व्यक्ति का इस लोक में तो अपमान होता ही है, पर लोक में भी वह दुर्गति को प्राप्त होता है। लेकिन आज अधिकांश लोग सत्य भाषण नहीं करते। वे सोचते हैं कि असत्य बोले बिना उनका काम नहीं चल सकता। वे इसके पक्ष में अनेकों अनर्गल तर्क देते हैं, जबकि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सत्य का प्रयोग किया जा सकता है, चाहे वह राजनीति का क्षेत्र ही क्यों न हो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी सत्य और अहिंसा को अपना कर ही भारत राष्ट्र को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराया था। राजा और साधु दोनों अपने सत्य आचरण से अपनी प्रजा और समाज को नई दिशा दे सकते हैं, लेकिन यदि प्रजा पालक ही असत्य आचरण करेगा, अपना पद बनाए रखने हेतु गुप्त रूप से धन प्राप्त करेगा, अन्याय और शोषण को बढ़ावा देगा, तो वह सत्यनिष्ठ शासक नहीं हो सकता। क्योंकि पुण्य सर्वथा हेय नहीं होता, लेकिन

0: उच्च कुल वैभव प्राप्त होने पर भी उसका उपयोग अपने व्यसन हेतु किया जाए तो यह पापाचार है। वास्तव में सत्य पालन के लिए निर्लोभ वृत्ति की आवश्यकता होती है। जब भगवान राम ने रावण को हराकर लंका पर विजय प्राप्त की थी, तब विभीषण ने श्री राम से कहा कि हे प्रभु, आप ही यहाँ का राज्य स्वीकार करें। तब श्री राम ने कहा था कि मेरे लिए स्वर्ग का वैभव भी मेरी जन्मभूमि की तुलना में तुच्छ है, अतः मैं तुम्हारा राज्य स्वीकार नहीं कर सकता। अपने पिता दशरथ के वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए राम ने अपने सुख का बलिदान कर दिया। पिता के सत्य वचन के मर्यादा रखने के लिए श्री राम ने राज वैभव को त्याग कर 14 वर्ष का वनवास भोगा। ये था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का उत्तम सत्य धर्म। वास्तव में सत्य आत्मानुभूति की चीज है। सत्य से पुण्य और पवित्रता प्राप्त होती है। उत्तम सत्य शांतिकारक होता है। लेकिन यदि कभी सत्य बोलने से कलह और अशांति को बढ़ावा मिलता है तो उस स्थिति में मौन रहना ही श्रेयस्कर है। सत्य का ढोंग तो बहुत लोग करते हैं, पर वास्तव में कितने लोग अंतरंग से सत्य का पालन करते हैं, यही महत्वपूर्ण है। सत्य पालन करने वाला कभी ढोंग से काम नहीं लेता। उसका समस्त जीवन और कार्य व्यवहार सरल और निष्कपट होता है। वास्तव में सबसे बड़ा सत्य यही है कि हम अपने जीवन में किसी को दगा न दें, किसी के साथ छल कपट न करें, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, अपने कार्य व्यवहार में ईमानदारी बरतें, दूसरों का मन न दुखाएं और सत्य का आचरण करें। यही उत्तम सत्य है। इस सत्य से प्राप्त सुख स्थायी होता है, जबकि असत्य से प्राप्त सुख कपूर की तरह क्षणिक होता है। यदि हम अपनी आत्मा से विभिन्न मनोविकारों की छाया दूर कर देते हैं तो सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। सत्य प्रकट होने पर कोई किसी का तिरस्कार नहीं करता, क्योंकि तिरस्कार करने के लिए किसी के पास कुछ नहीं होता। इसलिए सत्य ही सच्चा धर्म है। इस उत्तम सत्य धर्म का आचरण ही संसार में सुख और शांति का आविर्भाव कर सकता है।
1: चिंतन बिंदु कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उत्तम सत्य धर्म विषय पर ये आलेख। आलेख और वाचन था नीरज जैन का। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस गान। स्वर है रंजना जोगलेकर का, संगीत है सतीश भाटिया का।

श्री राम और लक्ष्मण पिता के वचन पालन हेतु वनगमन के लिए तैयार हैं। इधर सीता अपने स्वामी का साथ छोड़ अयोध्या के महलों में रहने को सहमत नहीं। कहती हैं, स्वामी के संग में पशु पक्षी उनके कुटुंब होंगे। वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे। उदार हृदय वनदेवी और वनदेवता सास ससुर की भांति उनकी देखरेख करेंगे। कंद मूल और फल अमृत के समान आहार होंगे।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। स्वर था रंजना जोगलेकर का, संगीत था सतीश भाटिया का। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। प्रस्तुत है संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 6:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। विषय होगा कीटनाशी का प्रयोग एवं सावधानियां। वार्ताकार होंगे विजय सिंह नौलखा। भूले बिसरे गीतों का आनंद लीजिएगा सुबह 7 बजे से। सुबह 7:31 पर कार्यक्रम होगा ब्रज माधुरी। इसमें आज आप सुनेंगे कवि मुखसो। इसके अंतर्गत कवि होंगे काका हाथरसी। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आपको सुनवाएंगे सुबह 8:30 पर। 9 बजे हिंदी वार्ता के अंतर्गत भेंट वार्ता सुनिएगा। विषय होगा जलवायु परिवर्तन और जल प्रबंधन। वार्ताकार होंगे चित्रेश सरस्वत और इनसे भेंट करेंगे ओपी सिंह। कार्यक्रम आबोहवा का प्रसारण समय सुबह 9:25 पर। विषय होगा वृक्षारोपण और पर्यावरण। आलेख और वाचन होगा शरद सोनी का। 9:30 पर सुनिएगा ब्रज दर्पण कार्यक्रम। फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी दिन 11 बजे। 11:30 पर फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम सुनेगा यादों के झरोखे से।

दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम होगा ब्रज लोकगीत। कलाकार होंगी अलका राजेश। महिलाओं का कार्यक्रम वनिता लोक दोपहर 1:15 पर। चर्चा के विषय होंगे विश्व अल्जाइमर दिवस और दूसरा विषय अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। आरोग्य वार्ता सुनेगा वायरल फीवर कारण लक्षण और बचाव। वार्ता करूंगी डॉक्टर भारती गर्ग, इनसे भेंट करेंगे विजय सिंह नौलखा। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण होगा अपराह्न 2:30 पर।

शाम 5:30 पर युवावाणी कार्यक्रम में आज की बात में श्री नारायण गुरु समाधि दिवस पर बातचीत होगी और दूसरा विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। साथ ही काव्यांकुर में सुनेगा रूपा यादव को। ब्रज साहित्य कार्यक्रम शाम 6:15 पर ब्रज वार्ता सुनेगा ब्रज के ठाकुर सेवा में भोग राग, वार्ता करेंगे अजय कुमार तैलंग। संध्या वंदन कार्यक्रम शाम 6:30 पर।

शाम 6:50 पर ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम होगा, जिसमें चर्चा होगी एआई से खेती को आसान कैसे बनाएं इस विषय पर, और दूसरा विषय होगा स्वच्छता ही सेवा है मिशन। साथ ही वार्ता सुनेगा जैविक खेती, खेत की सेहत, किसान की खुशहाली। वार्ता करेंगे शंभु दयाल। शाम सुहानी कार्यक्रम शाम 7:31 पर। रात 8 बजे विशेष श्रृंखला सुनेगा जन सेवा से देश सेवा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नौटंकी आपको सुनवाएंगे रात 10 बजे स्वामी हरिदास जी। ये विषय होगा नौटंकी का। लेखक होंगे सत्यनारायण केशवरैया। प्रस्तुति होगी TN शर्मा की।

0: ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम खेती की बातें। विषय है कीटनाशी का प्रयोग एवं सावधानियां। वार्ताकार हैं विजय सिंह नौलखा।
1: किसान भाइयों, आज हम आपको कीटनाशकों का प्रयोग एवं सावधानियां विषय पर जानकारी देंगे। कीटनाशकों के हानिकारक प्रभाव से बचने के लिए इनका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। अतः कीटनाशक को फसलों में कीट नियंत्रण के लिए काम में लेने से पहले, काम में लेते समय तथा काम में लेने के बाद कुछ बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। सबसे पहले चर्चा करते हैं कीटनाशी को काम में लेने से पहले रखी जाने वाली सावधानियों पर। सबसे पहले कीट को पहचानें या कीट विशेषज्ञ से पहचान करवा लें व पता लगाएं कि वास्तव में फसल को कितना नुकसान हुआ है। जब आर्थिक हानि स्तर का नुकसान पहुंच जावे तभी कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। कीट नियंत्रण की सही जानकारी हेतु कीट विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। सिफारिश की गई कीटनाशी का ही प्रयोग करें। कीटनाशी के डिब्बे पर तिकोने आकार में लाल या पीले, नीले या हरे रंग का निशान लगा होता है। जहां तक हो लाल निशान वाली कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लाल रंग वाली से कम नुकसान वाली पीले रंग की व उससे कम नीले रंग की और अंत में सबसे कम नुकसान हरे रंग के तिकोने निशान वाली कीटनाशियों से होता है। कीटनाशी खरीदते समय उसके बनाने व काम में लेने की अंतिम तारीख अवश्य देखें। डिब्बों के साथ ऊपर लेबल या सूचना पत्रक आता है, इसे भी पढ़ लें व दिए गए निर्देशों का पालन करें। जगह जगह समूह में कीटनाशी हो तो एक के बाद दूसरी काम में लेवें। मिश्रण कभी

0: न बनाएं। रिसने वाले या टूटा फूटा स्प्रेयर कभी इस्तेमाल न करें। कीटनाशकों को हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर रखें और जरूरी है कि ताले में रखें। अब बात करते हैं कीटनाशी मिलाते व छिड़कते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक प्रकार से शरीर की सुरक्षा हेतु कपड़े पहने, हाथों में रबर के दस्ताने अवश्य पहने। बहुत जहरीले कीटनाशी छिड़कते समय अकेले न रहें। कीटनाशी को पानी में मिलाते समय किसी बच्चे या आदमी को पास में खड़ा न होने दें व मिलाने के लिए लकड़ी का डंडा या लोहे की सरिया काम में लें। भरते समय कीप का प्रयोग करें और घोल को इधर उधर न गिरने दें। लेबल व सूचना पत्रक को पुनः पढ़ें व निर्देशों का पालन करें। कीटनाशी छिड़कने वाले यंत्र की जांच कर लें कि कहीं वो खराब तो नहीं हो गया। त्वचा, खास रूप से मुंह और आंखों का कीटनाशी से बचाव रखें। द्रव्य वाली कीटनाशियों को सावधानी से पंप में डालें। चून रूप वाली कीटनाशियों के कण आदि मुंह में न गिरें व गलती से गिर भी जाएं तो तुरंत साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह से धो लें। कीटनाशी मिलाते एवं छिड़कते समय खाना पीना या धूम्रपान करना सख्त मना होता है, इसका पालन करें। यह भी निश्चित कर लें कि कीटनाशी ठीक मात्रा में पानी में मिल गई है या नहीं। कीटनाशी या उसका धुआं श्वसन क्रिया द्वारा अंदर न जाने दें। हवा के विरुद्ध दिशा में चलकर कीटनाशी का छिड़काव न करें। छिड़काव सदा कमर के नीचे करें ताकि कीटनाशक सांस के साथ शरीर के अंदर न जाए। मुंह से हवा लगाकर बंद हुए नोजल आदि की सफाई कदापि न करें। यह सुनिश्चित कर लें कि छिड़काव करने वाली जगह पर तौलिया, साबुन व पानी उपलब्ध हो तथा कपड़ों का भी एक जोड़ा अलग से रखा होना चाहिए। एक दिन में जितनी जरूरत हो उतना ही कीटनाशी काम में लें। फूल आने पर फसलों पर बहुत कम मात्रा में छिड़काव तथा सायंकाल में ही इसका छिड़काव करें ताकि मधुमक्खियों को बचाया जा सके। कभी भी कीटनाशी खेत में एकांत में न रखें व घर पर भी बच्चों की पहुंच से दूर रखें। कीटनाशी काम में लेते समय जहर का प्रभाव यदि शरीर पर होता है तो तुरंत काम बंद कर दें और डॉक्टर के पास जाएं एवं कीटनाशी का डब्बा भी अपने साथ लेकर जाएं। अब बात आती है कीटनाशक छिड़कने के बाद क्या करें। बची हुई कीटनाशी को भंडार में रखकर ताला अवश्य लगा दें।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कीटनाशी का प्रयोग एवं सावधानियां, इस विषय पर वार्ता। वार्ता करते विजय सिंह नौलखा। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणस्य सम्मेलनम् अवलम्ब्य राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः प्रावोचत् यत् प्राकृतिक विपदः जलवायु संरक्षणाय अस्मान् प्रेरयन्ति। तया प्रतिपादितम् यत् जलवायु परिवर्तनं मानव जीवनस्य जैव विविधतां जल संपदं च दुष्यति। अतः जागतिक समुदायेन संघटितः प्रयासः कर्तव्यः। जलवायु परिवर्तनं जैव विविधतां जल सुलभतां भूसंसाधनानि च समाविश्य मानव जीवनस्य विविध पक्षेषु महंतं वैषम्यं जनयति। राष्ट्रपतिना आहूतं यत् प्रकृति पर्यावरणयोः संतुलन रक्षणं न हि केवलं प्रशासनिक कर्तव्यं प्रत्युत सकल मानव जातेः निरपेक्षं अस्तित्व साधकमस्ति। गुजरात राज्यं संप्रतिष्ठमाना राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः त्रिदिवसान् प्रवत्स्यति। श्वः तया केवड़िया नगरे राष्ट्रीय चलचित्र पुरस्काराः वितरिष्यन्ते। वडोदरायां दीक्षांत समारोहं संबोधयन्ति राष्ट्रपतिः ब्रह्मकुमारी संस्थायाः आध्यात्मिक केन्द्रं समुद्घाटयिष्यति। जोधपुरे प्रचलति वीर गार्डन 26-27 वायुसैन्याभ्यासे भारतीय वायुसेनाध्यक्षः एपी सिंहः जापानी समकक्षः जनरल ताकेहिरो मोरिता स्वदेशी युद्ध विमाने तेजसी सहैव उड्डयनम् अकार्ष्टाम्। वायुसेनाध्यक्षेण प्रोक्तम् यत् भारतीय धरायां जापानी युद्ध विमानानां प्रथम प्रचालनम् उभयोः देशयोः रक्षा संबंधेषु ऐतिहासिकं सोपानम् अस्ति।
2: नवमे दिनांके आरब्धः एषः अभ्यासः श्वः पूर्णताम् एष्यति। कोलकाता नगरे मत्स्य पालन विभागः अद्य समीक्षा सभाम् आयोजयति। अस्याम् सभायाम् केन्द्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंहः, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी च सहैव अध्यक्षताम् विधास्यतः। पश्चिम बंगे मत्स्य संपदः विकासं लक्ष्यीकृत्य एतत् उपवेशनम् अकारि। एतेन विभिन्न योजनानां अनुपूर्वक प्रगतिः समीक्ष्यते तथा हि नूतन मार्गचित्रं प्रस्तूयते। 44वां शतरंज ओलंपियाड स्पर्धायां प्रज्ञानन्दः, गुकेशः च उत्कृष्टं क्रीडित्वा नीदरलैंड दलं पराजितवन्तौ। अनेन भारतेन 3-1 इति अंकांतरालेन विजयः समासादितः। महिलानां स्पर्धायां भारतं पोलैंड देशेन पराजितम्। अवधेयं यत् संप्रति भारतं जर्मनी उज्बेकिस्तान दलानि 10 अंकैः सह शीर्षस्थाने वर्तन्ते। रूस देशीय युद्धकाले आयोजितं संसदीय निर्वाचनं ह्यः समाप्तम्। निर्वाचन आयोगानुसारं 45.66% यावत् जनाः मतदानं कृतवन्तः। अमुष्मिन्नेव अवसरे युक्रेन दलानि 1000+ ड्रोनान् अपातयन्। अमेरिका राष्ट्रपतिः ट्रम्पः ईरान विषये निर्णयं विधातुम् उद्युक्तः अस्ति। ईरान देशः मध्यस्थ राष्ट्रैः सह होर्मुज मार्गं मोचयितुं 7 नियमैः सह संधि परामर्शान् अप्रेषयत्। ईरानी राष्ट्रपतिः पेजेश्कियन न्यूयॉर्क नगरं गमिष्यति। ट्रम्पः अकथयत् यत् तेषां पार्श्वे पूर्ण विनाशः, आर्थिक प्रतिबन्धः, संधिः च इति त्रयः विकल्पाः सन्ति। हौसी विद्रोहिणः अमेरिकी बलैः सह संग्रामं कर्तुं नैव स्वीकृतवन्तः। सुदीर्घकालस्य प्रतीक्षानन्तरं भव्य श्रीराम मन्दिरस्य निर्माणेन श्रीरामनगर्याम् अयोध्यायां नूतन स्वर्ण युगस्य अभ्युदयः सञ्जातः। कृत प्रयत्नेन अयोध्या पुनः एकदा वैश्विक धार्मिक पर्यटनस्य अथ सनातन धर्मस्य मुख्य केन्द्रम् अभवत्। सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्णयेन मन्दिर निर्माणस्य मार्गः प्रशस्तः अभवत्। दीपोत्सव सदृशैः भव्य आयोजनैः च अस्याः सांस्कृतिक वैभवस्य पुनरुद्धारः साक्ष्यसिद्धः अभवत् इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। अगला कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।

अनमोल घड़ी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना नूर जहां के स्वर में। गीत को लिखा था तनवीर नकवी ने, धुन बनाई थी नौशाद ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं बावरे नैन फिल्म से, गाया है गीता दत्त और मुकेश ने, बोल हैं केदार शर्मा की और धुन है रोशन की।

सुरैया और श्याम की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे दिल लगी फिल्म का ये गीत। लिखा था शकील बदायूनी ने और धुन बनाई थी नौशाद ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं सुजाता फिल्म से, स्वर है तलत महमूद का। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं एस डी बर्मन।

0: करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में 25 से 29 सितंबर तक होगा उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की तैयारियों की समीक्षा। मुख्यमंत्री ने गौतम बुद्ध नगर में प्रेरणा विमर्श 2026 के समापन समारोह को किया संबोधित। कहा, 12 वर्षों में बॉटम 5 से टॉप 5 में पहुंचा भारत। प्रदेश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर निर्देश जारी। पैक्ड खाद्य पदार्थों पर अब वास्तविक विनिर्माण तिथि अनिवार्य। और एशियाई खेलों में भारतीय दल के अभियान की शानदार शुरुआत। महिला निशानेबाजों ने जीते 2 रजत पदक। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के 4th संस्करण का आयोजन करने जा रही है। कल नोएडा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंटरनेशनल ट्रेड शो को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अब तक हुई तैयारियों की समीक्षा करने के साथ प्रतिभागियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आयोजन राज्य की औद्योगिक क्षमता, नवाचार और निर्यात क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए महत्वपूर्ण मंच होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गौतम बुद्ध नगर जिले के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में आयोजित प्रेरणा विमर्श 2026 के तहत उत्कर्ष नारी सम्मान और युवा स्वाभिमान कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों से देश विरासत, विकास और जन कल्याण की नई यात्रा पर आगे बढ़ा है।
1: पिछले 12 वर्ष में भारत बॉटम 5 से टॉप 5 की श्रेणी में दुनिया के अंदर पहुंचा है। याद करिए, भारत की यात्रा आर्थिक क्षेत्र में दुनिया को अपनी ओर आकर्षित भी कराता है और दुनिया के लिए हलचल भी पैदा करता है। विरासत से विकास की यात्रा, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हुआ अभूतपूर्व विकास, ये उसी यात्रा का नाम है। और उसी यात्रा के साथ भारत के हर नागरिक को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का बार बार आह्वान होता है।
0: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की गरिमा की रक्षा और सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रदेश में इस समय महिला वर्क फोर्स की भागीदारी पिछले 9 सालों के दौरान 12% से बढ़कर लगभग 37% हो गई है। आगरा, काशी, गोरखपुर और लखनऊ में दुग्ध उत्पादक काम कर रहे हैं।

0: में 4 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा यूपी में 24,000 से ज्यादा स्टार्टअप हैं, इनमें आधी महिलाओं के हाथ में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित लिपिक संवर्ग के 912 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का जोर नौकरी देने के साथ चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर भी रहा है।
1: जब किसी योग्य अभ्यर्थी का चयन स्वच्छतापूर्ण तरीके से, पारदर्शी तरीके से किसी परीक्षा के माध्यम से संपन्न होता है, तो चयन की प्रक्रिया केवल एक व्यक्ति के परिवार के लिए नहीं, बल्कि शासन और कॉमन मैन के प्रति एक विश्वास का प्रतीक भी बनता है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अगले 6 महीनों में 1 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी देगी। प्रदेश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं को सही जानकारी देने के लिए खाद्य सुरक्षा और औषध प्रशासन विभाग ने पैक्ड खाद्य उत्पादों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक अब प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत पैक किए जाने वाले खाद्य उत्पादों के पैकेज पर वास्तविक विनिर्माण तिथि दर्ज किया जाना अनिवार्य होगा। पैकिंग की तिथि को विनिर्माण तिथि के स्थान पर अंकित नहीं किया जा सकेगा। ये निर्णय खाद्य विनिर्माण इकाइयों के हाल में किए गए विशेष निरीक्षणों के दौरान सामने आए तथ्यों के बाद लिया गया है। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमीट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक इस व्यवस्था का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा ये कराने की जरूरत नहीं है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में देश भर में 1 माह का सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के विशेष श्रृंखला में हम मेक इन इंडिया पहल को जमीन पर उतारने की जानकारी दे रहे हैं। मेक इन इंडिया के अंतर्गत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजनाओं के माध्यम से भारत में 20,41,000 करोड़ रुपए से अधिक का उत्पादन हुआ है और 14,15,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। एक रिपोर्ट।
2: वर्ष 2014 में शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल ने भारत को एक वैश्विक विनिर्माण शक्ति में बदल दिया है। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड विजन को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत का मुख्य आधार बताया।
3: आज मेक इन इंडिया एक सशक्त ब्रांड बनकर उभरा है। मुझे इस बात का संतोष कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस में यूपी एक मजबूत पिलर के रूप में भी उभर रहा है।
2: काशी के बुनकर और कई पुरस्कारों से सम्मानित मोहम्मद यासीन ने बताया कि मेक इन इंडिया पहल से काशी की हस्तशिल्प और बनारसी साड़ियों को देश विदेश में पहचान और बाजार मिला है।
4: हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को काफी बढ़ावा मिला है। इसकी वजह से बनारस में काफी टूरिस्ट वगैरह भी आ रहे हैं जो यहाँ की बनाई हुई साड़ियाँ और यहाँ के हैंडीक्राफ्ट की डिमांड करते हैं।
2: पर्यटन के साथ ही वाराणसी आज बनारसी साड़ियों के जरिए मेक इन इंडिया पहल के प्रमुख विकास इंजनों में से एक बन रही है। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन जारी है। इसी क्रम में कल केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मेरठ के मोहिद्दीनपुर न्यू इंटीग्रेटेड टाउनशिप में भारतीय वायुसेना के प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के एयर शो में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और संकल्प का नतीजा है कि भारत रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है और रक्षा मंत्रालय भी नए तथा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
5: 10-12 साल पहले रक्षा का एक्सपोर्ट मात्र 686 करोड़ था, आज 38,424 करोड़ का एक्सपोर्ट है। और जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है स्वदेशी आत्मनिर्भर, उस ओर भारत का रक्षा मंत्रालय बढ़ा है। और आज जो अद्भुत नजारा होगा तो हजारों हजार युवाओं को प्रेरणा, 2047 विकसित भारत एक ही लक्ष्य है पूरे देश का। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाए, वो 100 साल कैसा होगा, वो ताकतवर भारत, वो मजबूत भारत, वो आत्मनिर्भर भारत, वो स्वदेशी से ही, वही प्रेरणा युवाओं में आएगी।
0: ये शो में राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी और प्रदेश के मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर भी शामिल हुए। भारतीय निशानेबाजों ने जापान के नागोया में आयोजित एशियाई खेलों में कल 2 रजत पदक जीतकर भारतीय दल के अभियान की शुरुआत की। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में इलावेनिल वलारिवन ने और इसी स्पर्धा की टीम प्रतियोगिता में इलावेनिल के साथ सोनम मस्कर तथा विदर्शा विनोद ने देश के लिए रजत पदक जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन निशानेबाजों को बधाई दी है। उधर महिला क्रिकेट के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 114 रनों से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारतीय टीम की तरफ से शेफाली वर्मा ने शानदार शतक लगाया। राज्य के कुछ जिलों में कल हुई हल्की बारिश के बीच मानसून अब अवसान की ओर है। मौसम विभाग ने बुंदेलखंड के अलावा बाकी हिस्सों में अगले 2 दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। विभाग ने इस दौरान अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना भी जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में 25 से 29 सितंबर तक होगा उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की तैयारियों की समीक्षा। मुख्यमंत्री ने गौतम बुद्ध नगर में प्रेरणा विमर्श 2026 के समापन समारोह को किया संबोधित। कहा 12 वर्षों में बॉटम 5 से टॉप 5 में पहुंचा भारत। प्रदेश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर निर्देश जारी। पैक्ड खाद्य पदार्थों पर अब वास्तविक विनिर्माण तिथि अनिवार्य। और एशियाई खेलों में भारतीय दल के अभियान की शानदार शुरुआत। महिला निशानेबाजों ने जीते 2 रजत पदक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर।

0: भैया यह कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं कवि मुखसौ के अंतर्गत काका हाथ रसी को काव्य पाठ।
1: हलुआ अनुप्रास अलंकार। हलुआ में हरि बसत हैं, घेवर में घनश्याम, मक्खन में मोहन बसे हैं, रबड़ी में श्री राम, शक्कर सेवे शालिग राम जय रघुनंदन जय शक्कर सेवे शालिग राम जय रघुनंदन जय सिया राम। माखन मिश्री का लगे बलदाऊ का भोग, माखन मिश्री का लगे दाऊ जी का भोग, और गरीबी ले गिरिराज प्रभु गोरस करे प्रयोग। गोरस माने गऊ का दूध। गरीबी ले गिरिराज प्रभु गोरस करे प्रयोग, छोटे श्याम बड़े बलराम जय रघुनंदन जय छोटे श्याम बड़े बलराम जय रघुनंदन जय सिया राम। भोले भंग तरंग में महादेव बाबा, भोले भंग तरंग में मस्त रहे दिन रात, भोले भंग तरंग में मस्त रहे दिन रात, और गुण गणेश के देकर गिरिजा मन मुस्कान, गुण गणेश के देकर गिरिजा मन मुस्कान। नंदी के मोह लगी लगाम जय रघुनंदन जय सिया राम। नंदी उनका बैल, नंदी के मोह लगी लगाम जय रघुनंदन जय सिया राम। गुंजिया खा गंधर्व गण गाए मीठे गान, और मालपुआ सेवन करें मार्कंडेय महान, मालपुआ सेवन करें मार्कंडेय महान। स्वर्ग सुंदरी करें प्रणाम जय रघुनंदन जय सिया राम, स्वर्ग सुंदरी करें प्रणाम। और सुनिए, चाचा चटनी चाटते चाची आलू चाट, और मिर्च अधिक पड़ जाए तो काकी मारे डाक, हाँ तो काका का जड़ जाए तो काकी ने डांट मारी तो काका का काकी मारे डाक, काका का झड़ गया जुकाम जय रघुनंदन जय श्री राम। फूफा फल सेवन करें, फूफा फल सेवन करें, और फूफी रोटी खाए, फूफा फल सेवन करें और फूफी रोटी खाए, नई मामी को देकर मामा मन मुस्कार। चुलबुल सी बुलबुल गुलफाम जय रघुनंदन जय सिया राम, चुलबुल सी बुलबुल गुलफाम जय रघुनंदन। फ्रिज में भरी मिठाइयां मम्मी काकी हमें न दे, फ्रिज में भरी मिठाइयां काकी हमें न दे, और गंध रसोई में उड़े तो जीव लपेटा ले, गंध रसोई में उड़े तो खुशबू, गंध रसोई में उड़े तो जीव लपेटा ले, खा जाते हाकिम हुक्काम जय रघुनंदन जय सिया राम। आखिरी सुन लो, आम फजली कलमी दशहरी हमको रोप दिखाए, साले 20 रुपए किलो 15 रुपए किलो, सारे हमने 1 रुपए के छोले से राम खाए। फजली कलमी दशहरी हमको रोप दिखाए, ओलंपिक में पहुंचकर लंबी दौड़ लगाए, अरे आगे पहुंचा लगराम आगे पहुंचा लगराम, फिर भी मिला न कोई इनाम जय रघुनंदन जय सिया राम। देखिए बड़े बड़े कवियों ने, रीत काल के कवियों ने भी सब अंगों पर कविता लिखी है, एक चीज छोड़ गई है बड़ी जरूरी,
2: कान
1: मैंने लिखी है।
2: स्वागत है काका जी।
1: आंख नाक पुतली पलक हाथ पांव मुख दांत, आंख नाक पुतली पलक हाथ पांव मुख दांत, नक्षिक वर्णन से भरे रीत काल के काव्य, हाथ पांव मुख दंत नक्षिक वर्णन से भरे रीत काव्य के ग्रंथ, रीत काव्य के ग्रंथ सभी हमने पढ़ डाले,
2: सभी हमने पढ़ डाले,
1: इतने पलटे पृष्ठ पड़े अंगुलिन में छाले, सभी हमने पढ़ डाले, इतने पलटे पृष्ठ पड़े अंगुली में छाले, बिना खून के नाखूनों को मिली बढ़ाई, बिना खून के नाखूनों को मिली बढ़ाई, किंतु किसी में कान प्रशंसा कहीं न पाई, किसी में कान प्रशंसा कहीं न पाई। नंददास कवि जायसी घना नंद मत राम, देव बिहारी ने नहीं लिया का नाम कान का नाम, नंददास कवि जायसी घना नंद मत राम, देव बिहारी ने नहीं लिया कान का नाम, लिया कान का नाम पढ़े रस खान व केशव, पढ़े रस खान व केशव, कालिदास कृत शागुन तलम्ब कुमार संभव, रत्ना रत्नाकर कवि तुलसी सूर चंद्र बरदाई।

0: विद्यापति पद्माकर जी की याद ना आई, विद्यापति पद्माकर जी को याद ना आई कान की। काव्य पुरातन, कान पुरातन, काव्य पुरातन छोड़कर परख आधुनिक काल, काव्य पुरातन छोड़कर परख आधुनिक काल, पंत निराला भी चले वही पुरानी चाल, वही पुरानी चाल कान के कुछ गुण गाती, धर्मवीर की कनुप्रिया सार्थक हो जाती। अगर उर्वशी में जिनकर करुण स्तुति गाते, अगर उर्वशी में जिनकर करुण स्तुति गाते, 1,00,000 से दुगना पुरस्कार पा जाते। भारतेंदु हरि औध ने दिया ने इस पर ध्यान, कैसी लगती नायिका अगर न होते का। भारतेंदु हरि औध ने दिया ने इस पर ध्यान, कैसी लगती नायिका अगर न होते कान, अगर न होते कान बालियां नहीं सुहाती, कहो कहां पर कर्ण फूल कुंडल लटकाती। कैसे गाती गीत मार नूपुर में ठुमका, गिरता नहीं बरेली के बाजार में। आखिर एड़े भेड़े बेतुके पा जाते सम्मान, एड़े भेड़े बेतुके पा जाते सम्मान, ऐनक द्वारा बढ़ गई मिस मिस्टर की शान, मिस मिस्टर की शान, कूतिए कर्ण करिश्मा, कूतिए कर्ण करिश्मा, बिना कान आंखों पर कैसे चढ़ता, कूतिए कर्ण करिश्मा, बिना कान आंखों पर कैसे टिकता चश्मा। मंत्री जी के कान विधायक कैसे भरते, किसी मंत्री का नाम मिल गया मैंने, काटना नहीं इसलिए। मंत्री जी के कान विधायक कैसे भरते, और चमचा भैया कान आपूर्ति कैसे करते। छोटे बच्चों में भरा कान ज्ञान विज्ञान, गंदी बातें मत कहो पक जाएंगे कान। कहावते छोटे बच्चों में भरा गंदी बातें मत कहो पक जाएंगे कान, पक जाएंगे कान, छात्रगण समझ न पाए गलती करे दिमाग, कान क्यों पकड़े जाए। गलती करे दिमाग कान क्यों पकड़े जाए, कानों से जीवों ने जीवन संज्ञा पाई, कानों से जीवों ने जीवन संज्ञा पाई, हुए अवतरित कान खजूरा कान, कान सलाई कान खजूरा,
1: कानन की वजह से।
0: हाँ, मुखमंडल के संतरी पहरेदार प्रधान, आंखों से आंखें लड़ी खड़े हो गए कान। ये मुहावरा है, खड़े हो गए कान, बनो कानों के सच्चे, आदेशों आदर्शों से लुढ़क जाएं कानों के कच्चे। कान शब्द का दुरुपयोग करते मनमाना, एक आंख वाले को क्यों कहते हो कान। एक आंख वाले को भैया कभी कोई नहीं कहना चाहिए। कर्णेन्द्रिय से चल रहे तार और बेतार, कर्णेन्द्रिय से चल रहे तार और बेतार, बिना कान के फोन या हेडफोन बेकार, हेडफोन बेकार, ऑपरेटर हैं लकी, कान न हो तो बैठे बैठे मारे मक्की। ऑपरेटर है लकी, कान न हो तो बैठे बैठे मारे मक्की। पायलट के कान मार्ग को आंक रहे हैं, पायलट के कान मार्ग को आंक रहे हैं, सुनकर वायरलेस प्लेन को हाँक रहे हैं, सुनकर वायरलेस। शब्द बने हैं कान से ही थकान ढलकान, शब्द बने हैं कान से ही थकान ढलकान, पर मकान दुकान में घुसे हुए हैं, पर मकान दुकान में घुसे हुए हैं कान, घुसे हुए हैं कान, हास्य की विधा बताई, कानों तक मुंह फैलाया मुस्कान कहाई।
1: बहुत सुंदर,
0: कहा
1: ऊंची ऊंची कर दी,
0: कानों तक मुंह फैलाया मुस्कान कहाई। एक आनंद का गायन सुनकर बोले लाला, बड़ी पुरानी गायिका थी, एक आनंद का गायन सुनकर बोले लाला, एक जमाने में प्रसन्न थी कानन वाला, एक जमाने में प्रसिद्ध थी कानन वाला। कान कीर्त को ढूंढिए क्यों जाते हो दूर, कान कृपा से कानपुर शहर हुआ मशहूर। कान कृपा से कान तक कान कीर्ति की ढूंढते क्यों जाते हो दूर, कान कृपा से कानपुर शहर हुआ मशहूर, शहर हुआ मशहूर। ब्राह्मण है कन बजिया, कान पकड़कर पैसे लेता कन कान मेलिया। काम शास्त्र तज काम शास्त्र पर रखो निष्ठा, काम शास्त्र तज कान शास्त्र पर रखो निष्ठा, तानसेन से कानसेन से मिली प्रतिष्ठा, तानसेन से कानसेन को मिली प्रतिष्ठा। कुंडल धारे कान में हुए अवतरित कर्ण, पैदा ही हुए कुंडल समेत, कुंडल धारे, अब साहब शास्त्र कहते हैं मैं क्या करूं, कुंडल धारे कान में हुए अवतरित कर्ण, देते श्री दान में नित्य सवामन।

0: स्वर्ण,
1: नित्य सवामन स्वर्ण, मानते गायक श्रोता, बिना श्रोत स्वर श्रुतियों का अस्तित्व न होता। सभी इंद्रियों से कर्ण इंद्रिय अधिक जरूरी, सभी इंद्रियों से कर्ण इंद्रिय अधिक जरूरी, श्रवण कीर्तन बिन है नवदा भक्ति अधूरी। नवदा भक्ति अधूरी, कुंडल धारे इच्छा आखिरी। कान कृष्ण ने कान को जगत किया प्रसिद्ध, कान कृष्ण ने कान को जग में किया प्रसिद्ध, कंठोपा धारण करें ब्रज के साधक सिद्ध, ब्रज के साधक सिद्ध, मुर्कियां का धारण करें ब्रज के साधक सिद्ध, ब्रज के साधक सिद्ध, मुर्कियां कहाँ पहनते, कानाबाती कुर्र कुंवर जी कैसे करते, कानाबाती कुर्र कुंवर जी कैसे करते, गीत कर्ण छेदन के काकी कैसे गाती, और काका कवि ये कविता कैसे जम जाती।
2: भैया अभी आपने सुनो कवि मुखसों के अंतर्गत काका हाथरसी को काव्य पाठ, और आओ अब आपको सुनवा में यह लोकगीत, स्वर है बाके बिहारी शर्मा को।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति कल केवड़िया के एकता नगर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध को लेकर अमेरिका फैसले की स्थिति में, निकट भविष्य में हो सकते हैं बड़े घटनाक्रम। सऊदी अरब में हौसी हमलों के बाद अमेरिका ने वहां अपने नागरिकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान। और भारतीय ग्रैंड मास्टर्स ने समरकंद शतरंज ओलंपियाड में हॉलैंड पर 3-1 से शानदार जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों या सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों, फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल है। फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, अभिनय, सिनेमाटोग्राफी, संगीत निर्देशन और कॉस्ट्यूम डिजाइन जैसे पुरस्कार शामिल हैं। नॉन फीचर फिल्म श्रेणी में डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्में, एनिमेशन, कला, संस्कृति पर फिल्में, नरेशन या वॉइस ओवर और स्क्रिप्ट शामिल हैं। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन श्रेणी में सिनेमा पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ किताब और सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक को सम्मानित किया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए एक अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें जानी मानी फिल्म हस्तियों की एक विशेष समिति पुरस्कार पाने वाले का नाम तय करती है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्मा कुमारीज के

0: विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्म कुमारीज नडियाद के विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी नवीनतम तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
1: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का विषय है विश्वास बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन करना। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और रुख को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने विश्व नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए और बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRnews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में आज प्रस्तुत है पीएम किसान योजना पर एक रिपोर्ट।
3: मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ बड़ी संख्या में किसानों को मिल रहा है। योजना के तहत पात्र किसानों को हर वर्ष 6000 रुपए की सहायता 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है। यह राशि किसानों के लिए खाद, बीज और खेती से जुड़ी अन्य जरूरतों में उपयोगी साबित हो रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सरकार लगातार किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है।
4: हमारी सरकार छोटे किसानों की जरूरतों, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है।
3: साल 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 23 किस्तों में 4,47,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों को दी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से बढ़ाकर 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। छिंदवाड़ा जिले के किसान बसंत पटेल ने कहा कि सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना को 5 वर्ष के लिए बढ़ाया है, जिससे किसान बहुत खुश हैं।
5: किसान सम्मान निधि के 5 साल जो पढ़ाई गई है, किसानों को काफी खुशी है। ये योजना बहुत लाभदायक है।
3: योजना के तहत महिला किसानों को भी लाभ मिल रहा है। अब तक महिला किसानों को 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के बठिंडा जिले के तलवंडी साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के 4th चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। ये यात्रा पंजाब में 3 प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशे की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्तावित कल्याणी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य कोलकाता एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करना और दक्षिण बंगाल में हवाई संपर्क का विस्तार करना है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कल घोषणा की कि राज्य सरकार 28 सितंबर को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत 4 हवाई

0: अड्डों के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा दिशा 2.0 योजना के तहत आज दक्षिण गोवा स्थित इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च के यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में कार्यशाला आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: कार्यशाला में प्रौद्योगिकी आधारित कानूनी सेवाओं, कानूनी जागरूकता और निशुल्क कानूनी सहायता के माध्यम से न्याय तक लोगों की पहुंच मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा। इस अवसर पर न्याय प्रबोध अवेकनिंग टू जस्टिस नो योर राइट्स इन 90 सेकंड्स अभियान के तहत तैयार की गई सर्वश्रेष्ठ रील्स प्रदर्शित की जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान न्याय प्रबोध स्लोगन प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया जाएगा। एक अन्य सत्र में न्याय बंधु निःशुल्क कानूनी सेवा कार्यक्रम पर चर्चा होगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: सदियों के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण से भगवान राम की नगरी अयोध्या में विकास के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। अयोध्या नगरी अब धार्मिक पर्यटन और विकास के वैश्विक पटल पर प्रमुखता से उभरी है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी। इसी राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
3: राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा।
2: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप बड़ा परिवर्तन हुआ है।
4: अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है, वह चाहे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण से देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए। सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
2: पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही राम नगरी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हुई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध को लेकर फैसले की स्थिति में है और निकट भविष्य में बहुत बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। एक टीवी चैनल को साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने युद्ध को लेकर 3 विकल्पों पर चर्चा की। उन्होंने ईरान को पूरी तरह से खत्म करने या उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की बात कही या फिर समझौते का भी विकल्प दिया। दूसरी तरफ ईरान ने भी युद्ध समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के सामने 7 शर्तें रखी हैं। इस बीच अमेरिका ने सऊदी अरब में सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। सऊदी अरब में कार्यरत अमेरिकी कर्मचारियों को ताइफ और यानबू शहरों की यात्रा के लिए विशेष अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। ये कदम यमन के हौसी विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब की राजधानी रियाद सहित कई शहरों पर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल और हवाई हमलों के बाद उठाया गया है। हालांकि सऊदी सुरक्षा बलों के अनुसार इन हमलों को नाकाम कर दिया गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों के दौरान राजस्थान के कुछ और हिस्सों तथा पंजाब, सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने कल से ओडिशा में बारिश तेज होने का भी अनुमान व्यक्त किया है। 3 से 4 दिन में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें दौर में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए हॉलैंड को 3-1 से हरा दिया है। हालांकि भारतीय महिला टीम को पोलैंड से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय पुरुष टीम लगातार 5 मैच जीतकर अंक तालिका में उज्बेकिस्तान और जर्मनी के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। उधर जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों में भारत के पदकों का खाता खुल गया है। भारतीय निशानेबाजों ने कल 2 रजत पदक जीते। एलावेनिल वलारिवन, विदर्शा विनोद और सोनम मस्कर की तिकड़ी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता। भारतीय खिलाड़ी आज भी पदकों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद विशाल। सिर्फ केंद्र के दम पर विकसित नहीं हो सकता भारत। दैनिक

जागरण की सुर्खी है। वित्त मंत्रियों की बैठक में केंद्र ने राज्यों से इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर खर्च बढ़ाने को कहा। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां बनाए राज्य। अस्पतालों में मनमानी कीमत पर लगाम की तैयारी, केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। राजस्थान पत्रिका के अनुसार निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान इस्तेमाल होने वाले मेडिकल उपकरणों की खरीद कीमत और मरीजों से ली जाने वाली कीमत में भारी अंतर पर सरकार सख्त, कीमतों की होगी समीक्षा। गर्भपात कराना या नहीं, अंतिम निर्णय महिला का। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ का अहम फैसला दैनिक भास्कर में है। न्यायालय ने दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को 28 सप्ताह के गर्भ समाप्त करने की दी अनुमति। बहुप्रतीक्षित एनपीएस स्वास्थ्य योजना में 30 लाख रुपए तक का मिलेगा बीमा, हिंदुस्तान की खबर है।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

एतवार फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और भूपिंदर सिंह की आवाजों में। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं सूर्या फिल्म से, स्वर है अलका याग्निक का।

0: शिवाय फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की आवाजों में। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से, सुबह के 9 बजे हैं और आइए अब आपको हिंदी वार्ता कार्यक्रम के अंतर्गत सुनवा रहे हैं भेंट वार्ता। विषय है जलवायु परिवर्तन और जल प्रबंधन। वार्ताकार हैं चित्रेश सरस्वत, इनसे भेंट कर रहे हैं ओपी सिंह।
1: श्रोताओं, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम कुछ बात करेंगे जलवायु परिवर्तन की, साथ ही साथ कुछ हिंदू माइथोलॉजी की, अपने समाज और परिवेश की भी बात करेंगे कि पानी को लेकर के कितना प्रबंधन तंत्र पहले रहा, आज रहा और आज क्या हो रहा है, इसमें कितना तकनीकी विकास हुआ है, ये भी बात रहेगी। हमारे साथ हैं चित्रेश सारस्वत जी।
2: जी नमस्ते जी। जलवायु परिवर्तन मेरे हिसाब से आज की सबसे बड़ी एक समस्या है और हमें उस पर सिर्फ गवर्नमेंट को ही नहीं, हम सबको उसके ऊपर बहुत ही सीरियसली सोचना चाहिए। तो यही एक रीज़न था जिसकी वजह से मैंने अपनी स्थायी नौकरी छोड़ी और एक नए प्रकार के परिवेश में जाने की मैंने हिम्मत की और वो था जलवायु परिवर्तन। तो मैंने अपनी दोबारा से पढ़ाई शुरू करी और तब मुझे समझ में आया कि ये ग्लोबल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक बहुत बड़ी समस्या है और सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व के सारे देश इससे जूझ रहे हैं। अगर हम कहें तो सारे वेस्टर्न वर्ल्ड कंट्रीज जैसे कि अमरीका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर भी इस बारे में बहुत डिबेट्स हैं, बहुत बातें होती हैं और यूएन लेवल पर, यूनाइटेड नेशंस में भी इसका एक अलग संस्था है जिसे हम UNFCCC बोलते हैं, जिसका काम हर बार ये होता है कि हर साल सारे देश एक साथ बैठें और कैसे जलवायु परिवर्तन की समस्या को सुलझा सकें पर बातचीत करें
1: जी।
2: और जलवायु परिवर्तन सिर्फ हम लोगों से जुड़ा हुआ नहीं है, ये हर प्राणी से जुड़ा हुआ है जो कि इस संसार में सांस ले रहा है या सांस ले रहे हैं, जीवित है बिल्कुल। तो हमें सिर्फ मनुष्यों के बारे में ही नहीं, हमें जानवरों के बारे में भी सोचना चाहिए। हमें बहुत सारी इसके बहुत सारे मल्टीपल डायमेंशन हैं, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, इन मल्टीपल डायमेंशन का जो एक रिलेशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से होता है जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे मल्टीपल इफेक्ट्स हैं जो कि एक के बाद एक कई जगह पर देखने को मिलते हैं।
1: जी जी जी, आपकी बात से ये लगा कि आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि इस संसार में जो जीवधारी है वो सब रह रहे हैं, इसमें आदमी नहीं रह रहा, लेकिन कोई भी जीवधारी जो इस जीवन को जी रहा है या रह रहा है उसमें शायद पर्यावरण को बिगाड़ने में या इसको डिस्टर्ब करने में उसका योगदान नहीं है, उसको बनाने में उसका योगदान है। एक आदमी ऐसा सामाजिक प्राणी है जिसने थोड़ा छेड़छाड़ की है, तो ये जो विकास की जैसे आज अवधारणा हम कहते हैं कि वो आवश्यक तो है जब हम उन्नत होने की बात करें, लेकिन जो उन्नत हो चुके हैं, आपने जापान की बात की, आपने अमेरिका की बात की, आपने यूरोपियन कंट्री की बात की, तो वहाँ भी ये सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये जो समस्या है जलवायु परिवर्तन की काफ़ी गंभीर हो गई है इसमें। तो जो हो चुका है अब उसको हम दोबारा से उस स्तर पर लाएं जहाँ से हमने इसको बिगाड़ दिया था, तो कैसी कुछ सोच जो है शेयर हो रही है, क्योंकि एक दूसरे को बता रहे होंगे, समझा रहे होंगे और कुछ काम करने की बात हो रही है, तो किस तरह की तकनीक और व्यवस्था की बात निकल करके आ रही है इन सब के बीच में, थोड़ा सा बताएं हमारे श्रोताओं को।
2: जी, जब ये COP21 और ये कई तरीके की जो एग्रीमेंट्स हैं, ये जब सब देश एक साथ बैठते हैं तो वहाँ पर यही डिस्कशंस सबसे ज़्यादा प्रभावी होते हैं कि किस तरीके से हम इस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं या सुलझा सकते हैं। तो उसमें जैसे कि जो कंट्रीज जिनके पास ये टेक्नोलॉजीज नहीं है, जिनके पास ये तकनीकी विकास

0: नहीं है। जैसे अगर मैं उदाहरण दूं तो यूरोपियन कंट्रीज सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी में काफ़ी आगे हैं, उनकी तकनीक हमसे बहुत बेहतर है, और भारत भी काफ़ी बहुत अच्छा कर रहा है पिछले कुछ सालों से। भारत में तकनीकी विकास बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, इनोवेशंस हैं, जो कि बाहर की कंट्रीज में ज़्यादा हैं, तो उनको कैसे इन कंट्रीज में लाया जाए, क्योंकि ये कई सारे दायरों के भीतर होती हैं, जिनको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। तो उनसे बाहर हट के हम सबके साथ किस प्रकार इन तकनीकों को साझा कर सकते हैं, और उसके बाद कैसे जो हम डेवलपिंग कंट्रीज बोलते हैं उन कंट्रीज में भी किस प्रकार से पर्यावरण को बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये
1: एक सामूहिक सोच और सामूहिक जिम्मेदारी की तरफ
0: किस प्रकार से
1: आगे बढ़ रहे हैं। आपने विकासशील देशों की बात की, जिसमें भारत भी है और भी है, बहुत सारे जो एशिया और अफ्रीका के जो कंट्री है वहाँ उसकी जरूरत हो रही है, तो उसको उपलब्ध करवाने की कोशिश की जा रही है उस तकनीक को। तो अब जैसे भारत जैसे इसकी बात करें हम, जहाँ पॉपुलेशन की ग्रोथ इतनी ज्यादा है, साधनों पर उसका प्रभाव इतना ज्यादा है, और अगर जब हम रेशियो की बात करते हैं तो वो काफी आनुपातिक रूप से बिगड़ा हुआ सा दिखाई देता है। तो एक तरफ भारत जैसे देश को हम रोटी कपड़ा और मकान की बात करते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं, लेकिन जलवायु भी महत्वपूर्ण है जैसा आप कह रहे हैं। तो उन चीजों को पूरा करते हुए कि उनकी बेसिक जो नीड है वो भी पूरी हो जाए, लेकिन आज जैसे जो कॉन्सेप्ट है इन पे भी हमें ध्यान देना है, समाज को उस पे भी चेताना है। हालांकि सामाजिक चेतना इन चीज़ों के तरफ पहले से रही, लेकिन बीच में एक गैप ऐसा आया कि हमने अपनी चीज़ों को छोड़ दिया, उनसे अपना जो तारतम्य था, उनसे जो जुड़ाव था उसको हम कहीं भूल गए, और आधुनिकता की दौड़ में इतना हम आगे बढ़ गए कि जो हमारा था उसको भूल गए, और जो हमको चाहिए था वो हमारे पास रहा नहीं। तो एक गैप बहुत पैदा हो गया है उसमें। तो भारत जैसे देश में अगर हम बात करें इस काम को आगे बढ़ाने की, तो वो किस तरह संभव होगा उसमें?
0: जी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, और मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि जिसे एक फील्ड है जलवायु परिवर्तन में, जिसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज, तो उसमें बहुत रिसर्च हो रही है, और जितना मैं जानता हूँ कई बड़े संस्थानों में इसके अपने ग्रुप बने हुए हैं जो कि ट्रेडिशनल नॉलेज पे काम कर रहे हैं। लोग कैसे सर्वाइव करते थे उसके ऊपर एक पूरा रिसर्च ग्रुप है कि वो नेचर बेस्ड टेक्नोलॉजीज, यानी कि जो पर्यावरण ने हमें दिया है उसके अनुरूप कैसे रहा करते थे, और हम कैसे नई तकनीकों का विकास कर सकते हैं जो कि उससे इंस्पायर्ड हों पर्यावरण से। तो इस प्रकार के बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं वर्ल्ड में जो कि इन चीजों पर फोकस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारत में, क्योंकि हमारी संस्कृति और हमारा इतिहास बहुत लंबा रहा है, तो हमारे पास बहुत
1: लॉट ऑफ
0: नॉलेज, और हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो अगर हम ट्रेडिशनल नॉलेज की तरफ जाते हैं तो एक बहुत अच्छा कदम होगा, साथ ही साथ नई तकनीकों का होना बहुत जरूरी है। पूरा विश्व बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान हुआ है, बिल्कुल, लेकिन इसकी वजह से ही हम पर्यावरण की जितनी भी समस्याएं हैं उनको सुलझा भी सकते हैं। तो हम किस प्रकार से नई तकनीकों को जल्दी से जल्दी अपने परिवेश में समावेश कर सकें और सीख सकें। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूं कि हमारी नदियां जो कि पॉल्यूटेड हुई है, उसका एक बड़ा कारण है कि नदी नाले, जितने भी गंदे नाले हैं वो सब नदियों में जा रहे हैं। तो उसके लिए हम अच्छे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट प्लांट्स को यूज कर सकते हैं, और उन ट्रीटमेंट प्लांट्स में सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनको कैसे मेंटेन रखें। कई बार बहुत अच्छी तकनीकें लगा दी जाती हैं लेकिन कुछ सालों के बाद वो
1: सर्वाइव नहीं कर
0: पाती हैं। तो इसीलिए किस प्रकार से हम उनको लंबे टाइम तक मेंटेन कर सकें, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज होगी।
1: जी जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी जो पुरातन संस्कृति की जानकारी है उसको भी हमें उपयोग में लाना है, और जो आधुनिक उसमें तकनीकी विकास हो रहा है, विज्ञान का विकास हो रहा है, उन चीजों को भी हमें समाहित करना है, और दोनों का जो मिला जुला रूप होगा तो शायद हम बेहतर कुछ प्रबंधन कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा हम जल की बात आ जाए, आपने बात की कि जब नदियां हमारी जो जीवन धाराएं होती थी, हर सभ्यता का और संस्कृति का विकास नदी और नदी पानी की जो स्रोत है उनके आसपास ही हुआ। सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करें, गंगा जमुना की दोआब की बात करें, तो यहाँ जो पॉपुलेशन का जो इतना कंसंट्रेशन है, जो बसाव है, वो शायद इसीलिए कि पानी के बेहतर स्रोत थे, लेकिन उनको चूंकि हम संरक्षित नहीं कर पाए तो वो कहीं कहीं पॉल्यूटेड हो चुकी, और आज के संदर्भ में शहरीकरण बहुत तेजी से हो रहा है, हर आदमी सुख सुविधा और जरूरतों के लिए शहर की तरफ भाग रहा है, तो निश्चित तौर पर नदियों पर भी उसका प्रेशर है। अब इसमें जैसे भारतीय संदर्भ में हम जहाँ रह रहे हैं उसमें तो शहरीकरण तो होगा
0: जी,
1: लेकिन आपने बात की कि तकनीकी का भी हमें उपयोग करना है, और हमें

0: जो हमारी पुरानी जो जानकारी थी उसको भी यूज में लाना है। तो मैं थोड़ा सा और हिंदू मैथोलॉजी की तरफ आपको ले जाना चाहूंगा। हम हर चीज को नेचर का जो अंग थी उसको पूज्य मानते थे, उसमें देवत्व देखते थे, उसमें हम उसको एक तरह से साकार करते थे कि ये हमको जीवन दे रही है, तो ये जीवनदायिनी हमारे जीवन के संग ही रहेगी उसमें। तो नदियों को पूजना, तालाबों को पूजना, पानी के स्रोतों को पूजना, पेड़ पौधों में जीवन की कल्पना देखना और उनको पूज्य मानना। तो क्या आपको लगता है कि इन चीजों को बढ़ावा दे करके जो आधुनिक तकनीकें हैं वो उससे हम कुछ ज्यादा बेहतर और जल्दी परिणाम ला सकते हैं, आपको ऐसा लगता है उसमें?
1: मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें हमारी मॉरल वैल्यूज और हमारे आने वाली जनरेशन की मॉरल वैल्यूज को बेहतर बनाने के लिए बहुत उपयोगी हैं। बहुत जरूरी है कि हम जिस तरीके से अपने बचपन में मैं नदियों को देखता था, हम नदी को माँ बोलते हैं, गंगा माँ बोलते हैं, यमुना माँ बोलते हैं, और हम जब यमुना के तट पे जाया करते थे तो वो पानी का आचमन करते थे, उसको पीते थे। लेकिन अभी उस जल को उठा के पीने में एक बार सोचने में आता है कि क्या ये उतना साफ है। तो अगर हम इस बात को मान के चलते हैं कि नहीं, नदियां हमारी माँ है, तो हर इंसान उसमें गंदगी नहीं डालेगा, वो नहीं चाहेगा कि ये नदी गंदी हो। तो अगर इस प्रकार का आचरण, डेफिनेटली बहुत अच्छा कदम होगा जो कि आने वाली जनरेशन को एक
0: कुछ बेहतर हम दे सकते हैं उसमें। चित्र जी, आप तो जापान, चूंकि आज के संदर्भों में हम देखें तो एक विकास के उस पायदान पे है जिसको हम सर्वोच्च क्रम में कह सकते हैं, बहुत ऊंची जगह बैठा हुआ है, वहाँ तकनीकी विकास है। लेकिन क्या आप देखते हैं कि सिर्फ वहाँ क्या तकनीकी विकास ही है, क्या वहाँ इकोनॉमिक विकास ही है, वहाँ के लोगों की जो मोरल वैल्यूज है, अगर अपन अनुशासन की बात करें कि हम भाई आगे तो बढ़ना चाहते हैं, स्वतंत्रता भी हमको चाहिए, लेकिन कई बार अनुशासन को भूल जाते हैं। तो अगर आप वहाँ कुछ बताना चाहें कि आप चूंकि रह के आए वहाँ, तो वहाँ के जो नदियों की बात है, जल स्रोतों की बात है, तो उन्होंने चूंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ काफी हुआ, तो वहाँ का जो सिनेरियो था वो क्या रहा उसमें, और आज की स्थिति वहाँ क्या है उसमें?
1: जी, मैं भी बहुत इच्छुक था ये जानने का जब मैं वहाँ पहुंचा कि वहाँ की नदियाँ इतनी साफ हैं और वहाँ प्लानिंग बहुत अच्छी है, प्रबंधन नदियों का और पानी का बहुत अच्छा है। और साथ ही मैं जरूर इस बात पर आना चाहूंगा कि वहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा देखकर। बिल्कुल, तो शुरू में जब मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि 1960 के दशक में जापान की नदियों का पानी भी काफी पोल्यूटेड हो चुका था, क्योंकि वो लोग World War II से बाहर निकले थे और उनको विकास की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन वहाँ की सरकार इस बारे में सजग हुई 1960 के दशक में, और उन्होंने एक 30 साल का प्रोग्राम बनाया। उस 30 साल के प्रोग्राम के अंदर अंदर उन्होंने वहाँ की सारी नदियों को साफ कर दिया, जिसका सबसे बड़ा कारण था वहाँ के लोग। पहली बात, वो अनुशासन में रहना इतना पसंद करते हैं कि कभी मैंने कभी ऐसी कोई, वहां पर जो कूड़ेदान भी होते हैं जो कि हमारे घर के पास होते हैं, वो भी अलग 3 प्रकार के होते हैं। इसमें एक गीला कचरा अलग जाता है, सूखा कचरा, और उसके अलावा प्लास्टिक और जो भी कुछ है, और किसी भी प्रकार का मिक्सिंग नहीं होती है कूड़ों की। तो मतलब वो लोग इस लेवल पर, पहले लेवल, अपने घर के बाहर जो भी कूड़ा डालेंगे उसमें ही इतना,
0: वहीं से मैनेजमेंट शुरू हो जाता है,
1: वहीं से मैनेजमेंट शुरू हो जाता है। फिर नदियों के पास, क्योंकि वहां पर फ्लड यानी कि बाढ़ बहुत आती है, और वहां पर कई तरह की विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, तो नदियों को भी उन्होंने इस प्रकार से प्लान किया है कि नदी के आसपास का जो एरिया है वो बच्चों के खेलने के लिए मैदान बना दिए हैं। उसके बाहर बड़े बड़े डाइक्स हैं, उन डाइक्स के बाहर ही घर बनते हैं। तो अगर कभी नदी में बाढ़ आ भी जाए, या कभी कहीं, क्योंकि बारिश में बाढ़ भी आती है, तो घरों तक पानी पहुंचने से, वो जब पहुंचता है जबकि सिचुएशन एक्सट्रीमली खराब हो चुकी हो, जो कि सरकार क्या, भगवान के हाथ में ही होता है मैं कहूंगा। तो ऐसी सिचुएशंस को मेंटेन करने के लिए, और जैसे कि सुनामी के लिए उन्होंने फ्लड वॉल्स बनाई हुई हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। और साथ ही साथ लोगों का ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कहूँ उनका ये अपना आचरण भी ऐसा रहता है कि वो इसको कैसे मेंटेन रखें। वो सरकार की प्रॉपर्टी, जो जिसे हम कहें, उसे अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं और उसके उतनी ही अच्छे तरीके से उसका ध्यान रखते हैं। हर एक इंसान परिवर्तन ला सकता है, और हम सबको सोचना चाहिए कि हम क्या करें कि हम जलवायु परिवर्तन को सीमित कर सकें। और हर एक इंसान इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है।
0: चित्रेश जी, आप आए और हमारे श्रोताओं के साथ जुड़े, अपने संस्मरण और अनुभव उनके साथ बांटे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: धन्यवाद। नमस्कार।
2: हिंदी वार्ता के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, जलवायु परिवर्तन और जल प्रबंधन, ये विषय था वार्ता का। वार्ताकार थे चित्रेश सरस्वत। भेंट करें।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बागपत और फतेहपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बागपत जिले की हलचल। आलेख है राजीव कुमार का।
1: भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बागपत की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को वर्ष 2025-26 के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ नराकास का राष्ट्रीय सम्मान मिला है। मुंबई में आयोजित छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में गृह मंत्रालय की ओर से समिति अध्यक्ष और केनरा बैंक के क्षेत्रीय प्रमुख मिन्हाजुल कमर तथा समिति सचिव एवं वरिष्ठ राजभाषा प्रबंधक अभयनाथ मिश्र ने यह सम्मान प्राप्त किया। देश में कुल 592 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में बागपत की समिति को यह सम्मान पहली बार मिला है। समिति द्वारा केंद्र सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के साथ नियमित समीक्षा बैठकें, हिंदी कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। समिति ने राजभाषा कार्यान्वयन में डिजिटल नवाचार को भी बढ़ावा दिया। हिंदी सेतु ऐप के माध्यम से हिंदी राजभाषा से जुड़े संसाधन एक मंच पर उपलब्ध कराए गए। वहीं कालिंदी धारा पत्रिका के नियमित प्रकाशन से रचनात्मक हिंदी को मंच मिला। सम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन पर जोर दिया। ब्रिक्स यूथ ट्रैक के तहत आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में बागपत के युवा अमन कुमार ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। सम्मेलन में अमन ने ब्रिक्स देशों के युवा प्रतिनिधियों के समक्ष पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भारत की पहलों को प्रमुखता से रखा। उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम और मिशन लाइफ जैसे अभियानों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने की बात रखी। त्योढ़ी गांव के अमन कुमार ने बताया कि सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के युवाओं ने साझा चुनौतियों पर चर्चा की और विभिन्न मुद्दों पर संयुक्त सुझाव प्रस्तुत किए।
2: युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा ब्रिक्स यूथ ट्रैक के तहत आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के युवाओं के साथ मुझे संवाद का मौका मिला, जिसमें मैंने भारत में पर्यावरण क्षेत्र में हो रहे कार्य को प्रमुखता से रखा। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वह भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में भी जनभागीदारी सुनिश्चित करने की पहल की है, जिसमें मुझे एक युवा के रूप में अपनी बात, अपनी विचार दर्ज कराने का मौका मिला।
1: मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत बागपत ने मेरठ मंडल में बेहतर प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर जारी वित्तीय वर्ष 2026-27 की 11 सितंबर तक की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार जिले में करीब 40% ऋण आवेदनों को स्वीकृति मिल चुकी है। योजना के तहत बागपत को पूरे वित्तीय वर्ष में 1300 लाभार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य दिया गया है। सितंबर तिमाही तक 325 लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य था। इसके सापेक्ष अब तक 512 युवाओं के आवेदन अंतिम रूप से स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 422 लाभार्थियों के खातों में ऋण राशि वितरित की जा चुकी है। बागपत में कृष्णा नदी के पुनरोद्धार का विशेष अभियान असारा गांव से शुरू किया गया है। सहारनपुर से निकलकर बागपत में प्रवेश करने वाली कृष्णा नदी जिले की सीमा में करीब 29 किलोमीटर तक बहती है और 12 गांवों से होकर हिंडन नदी में मिलती है। जिलाधिकारी अस्मिता लाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में नदी के कायाकल्प की कार्ययोजना की समीक्षा की गई। जीपीएस और स्थलीय सर्वे के आधार पर नदी के प्रवाह क्षेत्र और जरूरत वाले स्थानों को चिन्हित किया गया है। अभियान के तहत नदी और उससे जुड़े नालों से मिट्टी, कूड़ा और अन्य अपशिष्ट हटाए जाएंगे। अतिक्रमण के कारण बाधित जल प्रवाह को बहाल करने के साथ आवश्यकता अनुसार नदी की गहराई और चौड़ाई दुरुस्त की जाएगी। नदी किनारे पौधरोपण और जल संरक्षण के कार्य भी कराए जाएंगे। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। जिले के लगभग 700 सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में बागपत पोषण

0: वृक्ष अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के तहत विद्यालयों में आंवला, जामुन और इमली के पौधे लगाए जा रहे हैं। विद्यार्थियों और शिक्षकों ने पौधों की नियमित देखभाल का संकल्प लिया। अभियान का उद्देश्य बच्चों को पोषण और पर्यावरण संरक्षण से जोड़ना है। मलकपुर चीनी मिल में किसानों के गन्ना मूल्य का 100% भुगतान कर दिया गया है। बागपत कलेक्ट्रेट में मिल प्रबंधन की ओर से 49,13,00,000 रुपए की अंतिम किस्त का चेक जिलाधिकारी अस्मिता लाल को सौंपा गया। इसके साथ ही मिल पर किसानों का कोई बकाया नहीं रह गया है। सहकारी गन्ना विकास समिति मलकपुर के चेयरमैन अंकित वीर ने बताया कि समय पर भुगतान होने से किसानों को रबी फसलों के लिए खाद, बीज, कीटनाशक और डीजल की खरीद में सुविधा मिलेगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति मिलने की उम्मीद है।
1: बागपत जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं फतेहपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नितेश श्रीवास्तव का।
2: फतेहपुर जिले में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 18 सितंबर को अपनी पत्नी सविता कोविंद और बेटी स्वाति कोविंद के साथ जिले के कल्याणपुर क्षेत्र के आदमपुर गांव पहुंचे, जहां जिलाधिकारी रीति गुप्ता वत्स और पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने गार्ड ऑफ ऑनर के तहत शिष्टाचार भेंट की, जहां उन्होंने पूर्व मंत्री स्वर्गीय अमरजीत सिंह जनसेवक की पत्नी स्वर्गीय प्रमिला सिंह के 13वीं कार्यक्रम में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व राष्ट्रपति ने स्वर्गीय प्रमिला सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर शोक संवेदना व्यक्त की और शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान परिवार के लोगों से मिलकर उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पूर्व मंत्री स्वर्गीय अमरजीत सिंह जनसेवक के निधन के समय पूर्व राष्ट्रपति किसी कारणवश उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके थे। अब उनकी पत्नी स्वर्गीय प्रमिला सिंह के निधन की जानकारी मिलने के बाद वह आदमपुर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। पूर्व राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस महकमा पूरी तरह से अलर्ट रहा। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर फतेहपुर जनपद में टूल किट एवं चेक वितरण का कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रेक्षागृह में राज्य मंत्री कृष्णा पासवान की उपस्थिति में लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सजीव प्रसारणों को देखा व सुना गया। जनपद स्तरीय कार्यक्रम का राज्य मंत्री कृष्णा पासवान सहित अन्य अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर भगवान विश्वकर्मा के चित्र पर माल्यार्पण कर शुभारंभ किया। राज्य मंत्री ने भगवान विश्वकर्मा जी जयंती एवं प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते कहा कि प्रधानमंत्री सभी वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य करते रहते हैं। उन्होंने समाज की आधी आबादी को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ते हुए उनको सम्मान दिया है और कारीगरों कामगारों के अर्थोन्नयन के लिए टूल किट व आधुनिक मशीन देकर आधुनिकता के साथ जोड़ा है, जिससे वह आगे बढ़ रहे हैं। यही सब अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का जब उत्थान होगा तब भारत को विकसित राष्ट्र बनने से नहीं रोक सकता। प्रधानमंत्री का जो विजन है कि वर्ष 2047 तक भारत का विकसित राष्ट्र बनाना है की दिशा में हम अग्रसित है, इसका जीता जागता उदाहरण आप योजनाओं से लाभान्वित होकर लोगों के विकास व परियोजनाओं से धरातल पर स्पष्ट रूप से विकास दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री के 25 वर्षों के अविरल सेवा और उनके विजन को हम देख सकते हैं कि वर्ष 2014 में पहले देश कहां था के बाद आज देश की स्थिति कितनी सुदृढ़ हुई है। विदेशों में भारत का डंका बज रहा है।
3: देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 2014 से जब से देश के प्रधानमंत्री बने विभिन्न क्षेत्रों में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां कार्य न हुआ। इस जन्मदिन के अवसर पर कहा सेवा दिवस संकल्प मना करके लोगों तक पहुंचना है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा सेवा मेरा अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजयुमो तथा सर्फ ह्यूमिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में एक विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का सफल आयोजन किया गया। शिविर में 26 उत्साही युवाओं ने बढ़ चढ़ के स्वैच्छिक रक्तदान किया। शिविर का भव्य उद्घाटन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने फीता काटकर किया। मुख्य अतिथि साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि रक्तदान महादान है। हमारे द्वारा दिया गया रक्त का एक कतरा किसी जरूरतमंद को नया जीवन दे सकता है। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा के तहत युवाओं का यह प्रयास अत्यंत सराहनीय एवं अनुकरणीय है। समाज के हर स्वस्थ नागरिक को नियमित रूप से रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए। रक्तदान के पश्चात मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा सभी रक्तदाताओं को उत्साहवर्धन हेतु प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। फतेहपुर जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स एवं पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक द्वारा जनपद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों बड़ाहार सदनापुर एवं बिंदकी फार्म का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान अधिकारियों द्वारा बाढ़ की स्थिति प्रभावित क्षेत्रों में आवागमन सुरक्षा व्यवस्था एवं आमजन को उपलब्ध कराई जा रही आवश्यक सुविधाओं का जायजा लिया गया। तत्पश्चात अधिकारियों द्वारा अभयपुर स्थित बाढ़ राहत शिविर का निरीक्षण कर राहत एवं बचाव व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई तथा शिविर में रह रहे प्रभावित लोगों से संवाद कर उनकी समस्याओं एवं आवश्यकता प्राथमिकताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। निरीक्षण के दौरान जहानाबाद विधायक राजेंद्र सिंह पटेल उपस्थित रहे, साथ ही संबंधित अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने, प्रभावित लोगों को समय से राहत सामग्री एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

0: प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में हम लोग ने यहाँ पर अस्थायी रुकने की व्यवस्था कर रखी है और अभयपुर में ये व्यवस्था का निरीक्षण करा गया। किस प्रकार वहाँ पर लोगों को हम लोग खाना पहुँचा सकते हैं, शुद्ध पेयजल पहुँचा सकते हैं, उसका भी प्रॉपर निरीक्षण किया गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जिला प्रशासन सतर्क है और कॉन्स्टेंटली वाटर लेवल्स को मॉनिटर कर रही है और कैसे लोगों में प्रॉपर सुविधा पहुँचाई जा सके और कैसे लोगों को कोई असुविधा ना हो उसका पूरा ध्यान रखें।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम आबो हवा। विषय है वृक्षारोपण और पर्यावरण। आलेख और वाचन है शरद सोनी का।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के विकास के दौर के अंदर आदमी ने अपनी अंधी भाग दौड़ के अंदर पर्यावरण का काफी नुकसान किया है विकास के नाम पर, और इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये हुआ है कि विकास के नाम पर हमने वन क्षेत्र थे उन पर धीरे धीरे अतिक्रमण कर वहाँ विकास के कार्य करवाने शुरू कर दिए हैं। एक लिमिट तक तो ये ठीक था, परंतु जैसे जैसे हमारे वन क्षेत्र घट रहे हैं हमारा पर्यावरण असंतुलन बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण असंतुलन बिगड़ने से हम देख रहे हैं कि कहीं पर बाढ़ आ रही है तो कहीं पर सूखा पड़ रहा है। इन सब से बचाव के लिए जो एकमात्र उपाय है वो है वृक्षारोपण किया जाना। हम सब पर्यावरण की रक्षा एवं प्रदूषण से बचाव के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। हम वृक्षारोपण कहाँ कर सकते हैं यह एक समस्या है, क्योंकि सबके पास खेत नहीं होते। आप अपने घर के पास, अपने दफ्तर के पास, अपने स्कूल के पास, जहां पर भी संभव हो वहां 5 से 10 वृक्ष अवश्य लगाएं। वृक्ष लगाएं ही नहीं, उन वृक्षों की लगातार सुरक्षा भी करें जब तक कि वो इतने बड़े ना हो जाएं कि उनको आगे कोई नुकसान हो सके। अब प्रश्न आता है कि हम वृक्षारोपण करें तो किन पौधों का करें। हमको वृक्षारोपण उन्हीं पौधों का करना चाहिए जो कि हमारे जलवायु में तालमेल रखते हों। यहाँ हमको नीम, बड़, पीपल, फलदार वृक्ष आदि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, क्योंकि ये सभी वृक्ष हमारे जीवन के लिए आवश्यक प्राणवायु तो देते ही हैं, अन्य कई सारे पशु पक्षियों की शरण स्थली भी बनते हैं। एक बड़ या पीपल का पेड़ कई हजारों पक्षियों का शरणगाह होता है, और उस वृक्ष के नीचे सुबह और शाम जब हम पक्षियों की मधुर वाणी सुनते हैं तो ये हमारे को एक बहुत सुकून देती है। अगर आपके पास खेत है तो खेत की मेड़ पर आप अधिक से अधिक पौधे लगाएं, जिससे कि उन पर पक्षी बैठ सके, क्योंकि पक्षी जितना अपना दाना खेत में से लेते हैं उससे ज्यादा फायदा हमारे को उस खेत में चूहों आदि से होने वाले नुकसान से बचा करके हमको वापस भी दे देते हैं। इसी प्रकार गाँव में भी जहाँ हमारे कुएं आदि के आसपास वृक्ष लगे होते हैं वहाँ आप पाएंगे कि वहाँ का तापमान और गांव का तापमान जहाँ बस्ती बसी है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। हमारे विकास के साथ साथ हम वन क्षेत्र को कम करते जा रहे हैं, उससे बचाव का एकमात्र उपाय ये है कि हम अगर अपने किसी भी विकास के काम के लिए, मकान बनाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, किसी अन्य कार्य के लिए अगर हम वृक्ष काटते हैं तो जितने हमने काटे हैं उससे ज्यादा कम से कम दुगने पेड़ हम अवश्य वृक्षारोपण करें और पर्यावरण में जो असंतुलन आ रहा है उसको रोकथाम करने की अपना प्रयास करें। अतः पुनः निवेदन है कि आप सब अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और पर्यावरण को बचाने में अपना सहयोग प्रदान करें।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:30 होने को हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं ब्रज की समसामयिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम ब्रज दर्पण। प्रस्तुति है जितेंद्र सिंह की और संयोजन है OP सिंह का।

ब्रज दर्पण कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को जितेंद्र सिंह का नमस्कार। शिक्षा, सूचना और मनोरंजन से भरपूर आपके अपने कार्यक्रम ब्रज दर्पण में आप सभी श्रोता मित्रों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, हर दिन अपने साथ एक नई उम्मीद, नया अवसर और कुछ नया करने की प्रेरणा लेकर आता है, क्योंकि हर सुबह आशा की एक नई किरण लेके आती है और यही बात शायद हमें जीना सिखाती है। और इसी नई सुबह के साथ हमारा भी आज का नया विचार है कि नई सुबह, नई शुरुआत। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम बीती हुई गलतियों, असफलताओं या परेशानियों में उलझ जाते हैं, लेकिन प्रकृति ने भी हमें ये संदेश दिया है कि अंधेरी रात के बाद उजाला ज़रूर आता है। सूरज की पहली किरण हमें ये याद दिलाती है कि हर दिन एक नया मौका है अपने सपनों को पूरा करने का और स्वयं को बेहतर बनाने का। एक नई सुबह का अर्थ केवल दिन का आरंभ नहीं, बल्कि नए विचारों, नए संकल्पों और नई ऊर्जा का आगमन भी है। यदि हमसे कोई गलती हुई है तो आज उसे सुधारने का एक मौका है। यदि कल हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाए हैं तो आज नई सुबह में हमें फिर से एक बार नया प्रयास करना चाहिए। महान व्यक्तियों की सफलता का रहस्य भी यही है कि वे हर नए दिन को नई शुरुआत के रूप में स्वीकार करते हैं। वे बीते हुए कल की निराशा को छोड़कर भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान देते हैं। याद रखिए कि हर सुबह अपने साथ अनगिनत संभावनाएं लेकर आती है। जो व्यक्ति उनका स्वागत करता है वही सफलता की नई कहानी लिखता है। तो आइए इस नई सुबह का स्वागत नई मुस्कान के साथ करें और अपने जीवन में एक नई शुरुआत करें।

0: श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आज विश्व अल्जाइमर दिवस है, तो आज इसको लेकर हम आपको सुनवा रहे हैं ये खास जानकारी। श्रोताओं, जैसा कि अल्जाइमर हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई एक गंभीर बीमारी है, जिसको लेकर जन जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। आज अल्जाइमर दिवस के अवसर पर हमारे साथ मौजूद हैं फिजिशियन एवं पूर्व CMS डॉक्टर RK चतुर्वेदी जी। तो आज इस विषय को लेकर हम आपसे बात करते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। ये बीमारी आखिर है क्या और शुरुआत में इसके लक्षण किस प्रकार के रहते हैं?
2: ये दिमाग के अंदर पैदा हुई बीमारी है, जिसमें भूलने की जो समस्या है, मेमोरी लॉस जो है, उस सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेटिंग सिम्टम है। उसके अलावा अन्य जो सिम्टम है, उसके मरीज के अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, लोगों के नाम के बारे में, शहरों के बारे में, अपने काम करने की प्रक्रिया के बारे में, सब वो भूल सकता है। और अभी वो कोई सामान लेके कहीं रखा है, वो ये भूल जाएगा मैंने सामान कहाँ रखा है, और वो ढूंढता फिरेगा। सामने वाले का क्या नाम है अभी बताया, वो भूल जाएगा। धीरे धीरे ये प्रोग्रेसिव बीमारी है और लक्षण इसके बढ़ते चलते हैं।
1: ये बीमारी आखिर क्यों होती है, क्या इसके कारण रहते हैं?
2: ये ब्रेन सेल में जब एक तरह से एट्रोफिक वो शुरू हो जाती है उम्र के साथ, तो उसकी डैमेज होने से ये बीमारी शुरू।
1: अगर शुरुआत में इसके लक्षण दिखाई देते हैं तो क्या इसको नियंत्रित किया जा सकता है?
2: नियंत्रण करने की संभावना अल्जाइमर की अभी वैज्ञानिकों ने इतनी खोज नहीं कर पाई है, लेकिन हाँ, सोशल उसको हेल्प के तौर पे, परिवारी हेल्प के तौर पे, जिसको रिहैबिलिटेशन कहते हैं, उसके तौर पे उसकी मदद की जा सकती।
1: किस उम्र में अक्सर ये रोग होता है?
2: ज्यादातर कॉमनली 65 साल के ऊपर और 75 साल के और 65 के बीच में ये हो ही जाता है, और उम्र के साथ साथ इसके लक्षण बढ़ते जाते हैं।
1: आपने बताया कि ये गंभीर समस्या तो है ही, अगर इस तरह के लक्षण अगर हमारे परिवार में किसी भी बड़े बुजुर्ग को आते हैं, तो ऐसे में उसके परिवारी जन क्या करें?
2: डॉक्टरों से संपर्क करें और जितनी भी उसकी संभव हो सके, जो भी दवाइयां संभव हो सके, जिससे उसका डिटोरिएशन फास्ट नहीं हो, स्लो हो जाए, जहां है वहीं रुका रहे, इस तरह के ब्रेन के डॉक्टरों को संपर्क करें। अगर समाज और परिवार उसकी अगर मदद करे तो उसको बहुत कुछ राहत मिल सकती है। वो अपने नित्य प्रति के कार्य नहीं कर पाता है, तो उन कार्यों को करना तो बहुत जरूरी है। उसको ये नहीं पता होता है कौन सा मौसम है, वो कपड़े पहनना मौसम के अनुरूप भूल जाता है, वो कोई भी कपड़े पहन सकता है, उसे यही नहीं ज्ञान होता है मुझे किस फंक्शन में क्या कपड़े पहनने हैं, किसके यहाँ जाने के लिए मुझे क्या, उसे इन सब चीजों का कोई आवाज नहीं।
1: यानी मस्तिष्क की सोचने समझने की क्षमता खत्म होती है,
2: डिसीजन लेने की प्रक्रियाओं को भूल जाता है।
1: क्या इसमें मरीज स्वयं का नाम भी भूल सकता है?
2: भूल सकता है। अल्जाइमर के लिए जो मिनिमम पॉसिबल डॉक्टरों की सलाह है वो लें, बाकी अल्जाइमर टोटली क्योरेबल डिसीज नहीं है।
1: अगर आप अपने भारत की बात करें तो भारत में अल्जाइमर को लेकर क्या स्थिति है?
2: जो 60-65 साल से ऊपर के मरीज हैं, उनमें 6 से 7 मिलियन पेशेंट

0: में से 20% अल्जाइमर के केसेस हो ही जाते हैं।
1: तो आज अल्जाइमर दिवस के अवसर पर हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मेरा संदेश ये है कि किसी के यहाँ अगर अर्ली स्टेज में इस तरह के सिम्टम बुजुर्गों को हों तो डॉक्टरों के यहाँ पहुँच के शीघ्र अतिशीघ्र उसकी बीमारी की जानकारी करें कि ये कौन क्या बीमारी है और ये मेमोरी लॉस कैसे हो रहा है, तो उनको डॉक्टर गाइड करेगा कि क्या क्या और आगे सिम्टम डेवलप होंगे, अल्जाइमर में क्या क्या चीज़ें होंगी, तभी उसको ये कोई राहत मिल सकती है। मैंने जो आप लोगों को जो बात बताई है उनको आप ध्यान रखते हुए जितनी मदद हो सके अल्जाइमर के लोगों को जल्दी से जल्दी डायग्नोस कराने में, चिकित्सक तक पहुंचने में और उनकी पारिवारिक मदद करने में आगे आए।
1: श्रोताओं, क्योंकि अल्जाइमर एक गंभीर बीमारी है और इसमें मरीज की देखभाल के लिए बहुत सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। अब इसी विषय को लेकर हम बात करते हैं जिला अस्पताल मथुरा के NCD विभाग से नैदानिक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर नीतू सिंह जी से।
2: आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हम अल्जाइमर दिवस को लेकर बात कर रहे हैं। सबसे पहले बताएं कि इस दिवस को मनाए जाने का क्या उद्देश्य है और इस वर्ष अल्जाइमर दिवस की क्या थीम रखी गई है?
3: हर साल हम ये दिन मनाते हैं जिससे कि लोगों में अल्जाइमर्स के बारे में अवेयरनेस बढ़े, लोग जाने कि अल्जाइमर्स क्या है, कि होने पर क्या क्या चैलेंजेस होते हैं और बहुत सारे पूर्वाग्रह इससे जुड़े हुए हैं जिनको दूर करना भी इसका उद्देश्य है। इसीलिए हम लोग ये दिवस मनाते हैं। इस बार इसकी थीम है द अर्लियर यू नो द मोर यू कैन डू डेमेंशिया डायग्नोसिस मैटर्स। मतलब कि जितनी जल्दी हम इसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं, इसकी पहचान कर सकते हैं, उतना जल्दी या उतने अच्छी तरीके से हम इसको इम्प्रूव करने में या कहें कि इसको डील करने में कर सकते हैं कि क्या इसके साथ किया जा सकता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और साथ साथ में अर्ली डायग्नोसिस इम्पॉर्टेंट। तो जितनी जल्दी डायग्नोसिस होती है उसका प्रोग्रेशन को या उसके बढ़ने की गति को हम ज्यादा अच्छी तरीके से रोक सकते हैं।
2: अल्जाइमर रोग के शुरुआती लक्षण क्या रहते हैं?
3: देखिए, अल्जाइमर एक मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है जैसे आपने कहा। इसमें शुरुआती लक्षण भूलने से संबंधित होते हैं, जैसे कि लोग छोटी छोटी चीजें रख के भूल जाते हैं या कोई नई चीज को सीखने में दिक्कत आती है या रिसेंट में या अभी अभी कुछ समय पहले कुछ चीजें हुई हैं उनको याद रखने में दिक्कत आती है। शुरुआती लक्षण ये याददाश्त से संबंधित होते हैं। धीरे धीरे इनमें और भी चीजें जुड़ती जाती हैं और ये याददाश्त से संबंधित परेशानी और भी ज्यादा कठिन होती जाती है। अधिकतर ये 65 साल से अधिक जो लोग होते हैं उसमें दिखाई पड़ती है। 60 साल में यहाँ पर शुरुआती लक्षण दिखाई पड़ना शुरू हो जाते हैं।
2: क्या कम उम्र में भी अल्जाइमर का होना संभव है?
3: बिल्कुल संभव है। कुछ केसेस होते हैं जो कम उम्र में भी होते हैं जिसको अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर्स कहते हैं। कुछ केसेस में ये जल्दी भी हो जाता है।
2: अगर हम इसके कारण के बारे में बात करें तो इसके क्या कारण रहते हैं? कोई वंशानुगत कारण रहते हैं या कोई अन्य कारण रहते हैं?
3: देखिए, कारण अगर कहें तो बहुत अच्छी तरीके से नोन तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा कारण है आयु। जैसे जैसे एज बढ़ती है इसके होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा अनुवांशिक कारण भी होते हैं। कई बार अगर आपके घर में परिवार में किसी को डिमेंशिया या अल्जाइमर्स है तो इसके होने की संभावनाएं बाकी लोगों से उस व्यक्ति में ज्यादा है। इसके अलावा डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, डिप्रेशन है, ये सारी चीजें भी इस चीज के लिए कई बार उत्तरदायी होती हैं कि अगर ये चीजें आपके अंदर ज्यादा हैं तो यहाँ पर अल्जाइमर्स होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। ये भी देखा गया है कि महिलाओं में पुरुषों से इसके होने की संभावनाएं ज्यादा है।
2: जैसा कि आपने डिमेंशिया का अभी जिक्र किया, तो डिमेंशिया और अल्जाइमर में क्या अंतर रहता है?
3: अल्जाइमर्स में देखिए बहुत सारी चीजें इफेक्टेड होती हैं, जैसे कि सिर्फ मेमोरी से रिलेटेड या ये जो हम याददाश्त से संबंधित परेशानी नहीं है, इसके अलावा बाकी संज्ञानात्मक जो प्रक्रियाएं हैं वो भी प्रभावित होती हैं। जैसे सोच से संबंधित, सोचने की गति में कमी आती है, निर्णय लेने की क्षमता में, ध्यान देने की क्षमता में। इसके अलावा व्यक्तित्व से संबंधित बीमारियां भी, परेशानियां भी दिखाई पड़ती हैं, व्यक्तित्व भी परिवर्तित हो जाता है। साथ साथ में कई तरह की व्यवहारात्मक परेशानियां भी आती हैं, जबकि डिमेंशिया में ये पूरी तरीके से मेमोरी या याददाश्त से संबंधित बीमारी है।
2: क्या भूलने की हर समस्या को हम अल्जाइमर का लक्षण मान सकते हैं?
3: बिल्कुल भी नहीं। हम लोग रोजमर्रा की चीजें भूलते हैं, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई बार स्ट्रेस की वजह से, और देखा गया है कि कई तरह की अलग मानसिक बीमारियां भी होती हैं, जैसे डिमेंशिया है, एंग्जाइटी है,

0: व्यक्ति अधिकतर भूलना शुरू कर देता है। इसके अलावा जैसे कि आपने बताया कि डिमेंशिया भी एक बीमारी है जिसके और बहुत से कारण होते हैं, तो डिमेंशिया भी एक याददाश्त से संबंधित बीमारी है, इसकी वजह से भी हो सकता है। कई तरह की मेमोरी या ये जो याददाश्त से संबंधित बीमारियां जो होती हैं वो रिवर्सिबल हैं, उनको आप ठीक कर सकते हैं। तो ये पहचानना बहुत जरूरी है कि कब ये अल्जाइमर्स है और कब ये बाकी की बीमारियों से संबंधित है।
1: अब हम इसके उपचार और निदान की बात करें तो इसका क्या प्रभावी उपचार है?
0: देखिए, इसके उपचार में अगर हम कहें कि ये पूरी तरीके से ठीक हो सकता है तो ये नहीं हो सकता। ये एक प्रोग्रेसिव इलनेस है या बीमारी है जो लगातार बढ़ती जाती है, तो ये ठीक तो नहीं हो सकती, लेकिन बहुत सारे लक्षणों के आधार पर इसका इलाज किया जाता है। दोनों तरह के इलाजों या ट्रीटमेंट को रिकमेंड किया जाता है, फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल। मेडिसिन भी दी जाती है और साथ साथ में जो नॉन फार्माकोलॉजिकल यानी सपोर्टिव साइकोथेरेपी और कॉग्निटिव साइकोथेरेपी, इस तरीके की थेरेपीज भी दी जाती है।
1: तो इसमें कोई विशेष प्रकार की जीवन शैली को फॉलो करने के लिए कहा जाता है या कुछ विशेष ऐसे व्यायाम रहते हैं या खानपान रहता है जो कि इसके लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद मिले?
0: जी बिल्कुल, देखा गया है कि अधिकतर ये जब बीमारी होती है तो लोग भूलने लग जाते हैं, ये तो होना ही है। तो ऐसी स्थिति में जो रोजमर्रा की चीजें हैं उन्हें याद नहीं रहती, तो खाने पीने में भी धीरे धीरे जब प्रोग्रेशन होता है तो वो खाना पीना ये सारी चीजें भूलना शुरू कर देते हैं। तो बहुत जरूरी है कि खान पान का ध्यान रखें। बैलेंस्ड डाइट तो बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसके साथ साथ बाकी बीमारियां भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो बॉडी जितना हेल्दी रहेगी, बैलेंस डाइट जितना अच्छे से दी जाएगी, वो उतने अच्छे से इस बीमारी को मैनेज किया जा सकता है। साथ साथ में व्यायाम बहुत ही उपयोगी है इस बीमारी में। योगा है, योगा से आपका अटेंशन भी इम्प्रूव होता है, तो से इस बीमारी के प्रोग्रेशन को कम किया जा सकता है। बाकी एक्सरसाइज भी काम करती है, जितना अच्छा हेल्थ रहेगा पेशेंट का, प्रोग्रेशन उतना ज्यादा कम रहेगा।
1: अगर हमारे घर में किसी बुजुर्ग को अगर अल्जाइमर की बीमारी हो जाती है तो उसमें जो परिवारी जन है क्या भूमिका रह सकती है, किस तरह से वो उनका ख्याल रखे?
0: देखिए, कई बार होता है कि जो पेशेंट है वो बहुत कंफ्यूज रहता है, वो चीजें बहुत धीरे धीरे भूलने लग जाता है और आखिरी स्थिति में ऐसा होता है कि वो पूरी तरीके से परिवारजनों पर ही निर्भर रहता है अपनी रोजमर्रा की चीजों के लिए। तो परिवारजनों के लिए बहुत जरूरी है कि वो थोड़ा पेशेंस रखें, धैर्य रखें। पेशेंट क्योंकि बहुत भूल रहा है, वो रोजमर्रा की चीजें, दवाई लेना, खाना खाना, कब उसको पानी पीना है, कब कहाँ जाना है, ये सारी चीजें भूलने लगता है। तो धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अगर आप धैर्य छोड़ेंगे तो पेशेंट भी बहुत इरिटेबल हो जाएगा, या मतलब उसको गुस्सा ज्यादा आएगा क्योंकि वो कंफ्यूज है, उसको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ऐसी स्थिति में गुस्सा करना है, एग्रेशन, और इसके साथ साथ शक करना क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है उसके साथ, आसपास के लोग उसके साथ कैसा क्या रहे हैं। धीरे धीरे वो रिलेटिव्स को भी भूल जाता है कि वो उसके कौन है, तो ऐसी स्थिति में कंफ्यूजन और ज्यादा हो जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है धैर्य रखना। साथ में ये भी जरूरी है कि क्योंकि पेशेंट धीरे धीरे अपने आप को भी भूल जाता है, वो कहाँ रहता है, आसपास के जगह के रास्ते भूल जाता है, तो कोई टैग लगाना, जैसे कोई कंगन पहना सकते हैं या कोई प्लेट उसके लगा सकते हैं, जैसे कि जिसने हमेशा उसका नाम, एड्रेस और साथ साथ में फोन नंबर लिखा हो, अगर वो कहीं भूल जाए या भटक जाए तो कोई आपको इन्फॉर्म कर सके। बाकी ये भी बहुत जरूरी है कि आसपास की जो भी चीजें उनको बहुत सरल रखें, बहुत सिंपल रखें, उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें ना दें।
1: जैसा कि आपने बताया कि इस बीमारी में एक भूलना समस्या है, तो क्या इसमें अगर रोगी कुछ चीज भूल गया है तो फिर वो पुनः उसकी स्मृति में आ जाती है?
0: देखिए, इसमें तीन स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में समस्या बहुत कम होती है, पहचानना भी मुश्किल होता है, लैंग्वेज में भी डिफिकल्टी आनी शुरू हो जाती है, लेकिन ये प्रोग्रेसिव है जैसे मैंने बताया। तो ऐसा नहीं है कि ये चीजें दोबारा से फिर ठीक हो सकती हैं। हाँ, धीरे धीरे इनकी मात्रा आप कम कर सकते हैं, इसकी प्रोग्रेशन को धीमा कर सकते हैं, लेकिन याददाश्त वापस आ जाएगी ऐसा नहीं होता है। मतलब इसका प्रोग्रेशन आगे ही बढ़ता है, पहले रिसेंट मेमोरी में प्रॉब्लम आती है, फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी जो पहले की बातें थी उसके जीवन से संबंधित उसमें भी वो भूलना स्टार्ट कर देता है।
1: अल्जाइमर को लेकर हमारे जनपद मथुरा की किस तरह की स्थिति है?
0: देखिए अल्जाइमर्स के पेशेंट तो रहते हैं और बहुत सारे सुविधाएं भी उनके लिए उपलब्ध हैं। कई बार हम लोग जो ओल्ड एज होम में जाते हैं तो वहां पर भी कई पेशेंट इस तरीके की बीमारी से ग्रसित रहते हैं। सबसे जरूरी है अगर इस तरीके की कोई समस्या व्यक्ति को दिखाई पड़ती है तो न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें। ये न्यूरोलॉजी से संबंधित बीमारी है तो न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना बहुत जरूरी है और डायग्नोसिस बहुत जरूरी है जो हमारे मथुरा जनपद में उपलब्ध है। तो इस तरीके की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, बस पेशेंट को सही जगह पहुंचना बहुत जरूरी है।
1: तो आज अल्जाइमर दिवस के अवसर पर हमारे श्रोताओं को, साथ ही उन सभी लोगों को जिनके घर में इस बीमारी से पीड़ित कोई भी बुजुर्ग हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि सबसे बड़ी जरूरी बात है कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसकी कोई ज्ञात कारण नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको ध्यान रखे। जैसे प्रिवेंटिव मेजर क्या होते हैं, इसके अच्छे से एक्सरसाइज करें, योगा करें, अपने दिमागी जो भी एक्सरसाइजेस हैं उनको भी करते रहें, लोगों से मिलना जुलना, सोशल कनेक्टेडनेस, ये बहुत जरूरी है। ये एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है अल्जाइमर्स का। आप अपने आप को बिजी रखें, क्योंकि ओल्ड एज में, आप रिटायरमेंट में के एज में कई बार पेशेंट या व्यक्ति बहुत ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व नहीं होता, वो अकेलेपन का शिकार हो जाता है। ऐसा जरूरी है कि आप अपनी सोसाइटी से जुड़े रहें किसी मीनिंगफुल तरीके से। ये एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है। अगर कोई भी कोमॉर्बिड प्रॉब्लम, जैसे कि कारणों में हमने बताया डिप्रेशन है या हाई ब्लड प्रेशर है या हाई कोलेस्ट्रॉल है, कोई भी किसी भी तरीके की आपको बीमारी है, तो उसका इलाज पूरी तरीके से करवाते रहें। अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, साथ साथ में अच्छा खान पान रखना, लाइफ स्टाइल रखना। खान पान में जो ड्राई फ्रूट्स हैं या हरी शाक सब्जियाँ हैं, ये सारी चीज़ों को इन्वॉल्व रखना, ये बहुत जरूरी है। तो प्रिवेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ में ऐसे रोगी हैं और उनके जो केयर गिवर्स हैं उनसे तो मैंने यही बोलना चाहूंगी कि धैर्य रखना बहुत जरूरी है ऐसे पेशेंट के साथ, क्योंकि ये केयर गिवर के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन होता है। लेकिन जो रोगी है वो जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा है, बर्डन को थोड़ा सा सभी लोग जो भी परिवारजन है वो उसको अपनी अपनी ड्यूटीज को बांटें, जिससे कि एक ही व्यक्ति पर बर्डन ना पड़े और जो व्यक्ति है जो अल्जाइमर से ग्रसित है उसका उपचार या उसका मैनेजमेंट बेटर हो पाए।
1: आज आपने अल्जाइमर दिवस के अवसर पर हमारे श्रोताओं को जागरूक किया और उनको इस बीमारी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

श्रोताओं, इसी के साथ अब हम अपने कार्यक्रम के अगले सेगमेंट क्या करें क्या ना करें में आपसे ये अपील करना चाहेंगे कि कागज़ की बचत कर पर्यावरण का संरक्षण करें। मित्रों, आज के आधुनिक और डिजिटल युग में भी कागज़ हमारे जीवन का अहम हिस्सा अभी भी बना हुआ है। सुबह अखबार से लेकर बच्चों की कॉपियां, दफ्तर की फाइलों और पैकेजिंग तक हर जगह कागज़ का इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि आखिर ये कागज़ हम जिसे इतनी आसानी से इस्तेमाल और बर्बाद करते हैं वो आखिर बनता कैसे है, कैसे ये कागज़ हम तक पहुंचता है? हम जिसे इतनी आसानी से इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमत हमारे पर्यावरण को चुकानी पड़ती है। कागज़ की हर एक बर्बादी पर्यावरण के विनाश को बुलावा देती है, इसलिए कागज़ की बचत करना केवल पैसों की बचत नहीं बल्कि पृथ्वी को बचाने का एक महाअभियान भी है। कागज़ बनाने की प्रक्रिया पर्यावरण को कई तरह से नुकसान पहुंचाती है। इसमें एक तो वनों की कटाई होती है। एक टन सफ़ेद छपाई वाला कागज़ बनाने के लिए लगभग 17 बड़े पेड़ काट दिए जाते हैं। पेड़ों के कटने से वन्य जीवों के घर छिन जाते हैं और जैव विविधता भी नष्ट होती है और इसमें पानी की भारी खपत होती है। कागज़ उद्योग में पानी का भारी इस्तेमाल होता है और एक A4 साइज की शीट बनाने में लगभग 10 लीटर पानी खर्च होता है, ऐसे आंकड़े बताते हैं। तो ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि इससे कितना हमारे पर्यावरण को नुकसान होता है। कागज़ बनाने वाली मिलों से निकलने वाले जो हानिकारक रसायन होते हैं वो भी हमारी नदियों को प्रदूषित करते हैं और हवा में ग्रीन हाउस गैसें छोड़ते हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। कागज़ की बचत कैसे करें, इसके लिए हम कुछ बातों पर ध्यान दे सकते हैं। हम डिजिटल माध्यमों का उपयोग करें, नोट लिखें और बिल जमा करने और समाचार पढ़ने के लिए स्मार्टफोन, लैपटॉप या हम टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दफ्तरों और स्कूलों में ईमेल, PDF आदि को प्राथमिकता दें। कागज़ का हम सही इस्तेमाल भी करें। लिखते या प्रिंट करते समय कागज़ के दोनों साइड्स होती हैं, यानी दोनों ओर से हम उसको इस्तेमाल करें और रफ़ काम के लिए हम पुरानी कॉपियों के बचे हुए पन्नों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो रद्दी कागज़ हमारे घर में रहते हैं तो उनको ऐसे फेंकें या जलाएं नहीं। रद्दी कागज़ को कचरे में फेंकने के बजाय रिसाइकलिंग के लिए आप दे सकते हैं। रिसाइकल किए गए कागज़ से दोबारा नया कागज़, गत्ते और टिश्यू पेपर बनाए जा सकते हैं। और इसके अलावा पैकेजिंग में थोड़ी समझदारी भी आप बरत सकते हैं। सामान ले जाते समय घर से कपड़े का थैला साथ लेकर जाएं ताकि कागज़ या प्लास्टिक के बैग की आवश्यकता ही नहीं पड़े। तो हम इस बातों का हम अगर ध्यान रखें, इन बातों को जीवन में अपनाएं तो कागज़ की हम भारी बचत कर सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं आज की कुछ खास खबरों की। तो आज की खास खबरों में है कि DLED प्रथम एवं द्वितीय तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 21 से 26 सितंबर 2026 तक 12 परीक्षा केंद्रों पर होंगी, जिसमें 4,879 अभ्यर्थी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। और ITI में प्रवेश परीक्षा का तीसरा चरण आज से है। राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी ITI में तृतीय चरण में चयनित अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश की तिथि 21 सितंबर से 25 सितंबर 2026 तक निर्धारित की गई है।

और मित्रों बात करें आज के दिन विशेष की, तो आज की तिथि यानी 21 सितंबर इतिहास के झरोकों से ये कहती है कि आज ही के दिन सन 1857 में अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेज़ों ने हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था। और आज ही के दिन सन 1991 में आर्मीनिया को सोवियत संघ से पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। और आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, जिसे आधिकारिक तौर पर विश्व शांति दिवस के रूप में भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त ये एक अवकाश है और सन 1981 में इसकी स्थापना की गई थी आज ही के दिन, और पहली बार सन 1982 में 21 सितंबर को इसे मनाया गया था। और इसे कई राष्ट्रों, राजनीतिक समूहों, सैन्य समूहों और लोगों द्वारा मनाया जाता है। तो साथियों इसी के साथ अब कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम। अगले कार्यक्रम में हम आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, फिर किसी नई जानकारी, नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज दर्पण, प्रस्तुति थी जितेंद्र सिंह की, संयोजन था ओपी सिंह का। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 MHz पर। सुबह के 10 बज चुके हैं और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार को फिल्म बेमिसाल में। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहरा फिल्म से, आवाजें हैं पंकज उदास और साधना सरगम की।

मोहरा फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना पंकज उधास और साधना सरगम की आवाजों में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दो कलियां फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी ने और धुन बनाई थी रवि ने।

दो रास्ते फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत रचना थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं बंटी और बबली फिल्म से।

रवि के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफी को फिल्म डोली में। गीत को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

नीला आकाश फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की युगल आवाज़ों में। गीत को लिखा था राजा मेहंदी अली खान ने और धुन बनाई थी मदन मोहन ने।

आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में ऊंचे लोग फिल्म का ये गीत। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: हैं और आइए अब आपको सुनवाते हैं फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। प्रस्तुति है देवराज कृष्ण दीक्षित की।
1: हेलो आकाशवाणी, हेलो आकाशवाणी। हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का अभिवादन, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ देवराज। जी हां श्रोताओं, एक बार फिर से हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, जिसमें हमारे श्रोता करते हैं फोन के माध्यम से अपने दिल की बात और हम सुनवाते हैं उनको उनकी पसंद का गाना। जी हां श्रोताओं, हम आपको बता दें इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। हमारा टेलीफोन नंबर है 25 30 135। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 एसटीडी कोड लगाकर हमें फोन करें। और अब आइए आरंभ करते हैं आज का हेलो आकाशवाणी।
2: हेलो आकाशवाणी।
3: हेलो आकाशवाणी, नमस्कार।
2: नमस्कार,
3: मैं ब्रिज रेडियो श्रोता मित्र सांवरिया गांव खैरावर तहसील कुमेर जिला ढीग राजस्थान।
2: स्वागत है सांवरिया जी आपका कार्यक्रम में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद साहब।
2: कैसे हैं आप?
3: बिल्कुल ठीक है जी, बारिश हुई है यहाँ। गुरुवार की रात्रि को बहुत भारी बरसात हुई है।
2: अच्छा, मौसम अच्छा हो गया होगा।
3: अच्छा, बहुत खेती के लिए जरूरत थी।
2: जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और बताएं परिवार में कैसे हैं सब आपके?
3: हम सभी ठीक हैं, और आप बताएं आप कैसे हैं?
2: सभी लोग बहुत अच्छे हैं, आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और गाना आज सुनवाइए, कन्यादान फिल्म लिखे जो खत तुझे तेरी याद में।
2: लीजिए सुनवाते हैं आपकी फरमाइश। बहुत बहुत धन्यवाद आपने फोन किया।
3: नमस्कार जी।
2: नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी, पिशावर से विजय कुमार कश्यप बोल रहा हूँ, आपका निम्न श्रोता।
0: स्वागत है विजय जी।
1: और बढ़िया अंकल जी।
0: एकदम अच्छे हैं, आप कैसे हैं ये बताइए।
1: हाँ हम तो बढ़िया हैं, घर पर काम चल रहा है, तुम्हारा आशीर्वाद है हम पर।
0: जी, और काम कैसा चल रहा है।
1: हाँ हमारा खूब अच्छा चल रहा है अंकल जी।
0: अच्छा, बाल बच्चे सब ठीक हैं आपके।
1: बाल बच्चे हमारे सब ठीक है, आपका आशीर्वाद है। चांदी का भी काम करते हैं और ग्रह का भी काम करते हैं हम अपने घर पर।
0: अरे वाह, फिर तो चांदी चांदी है आपकी।
1: हाँ चांदी चांदी, आप मुझे गाना सुनना है।
0: बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको।
1: फिल्म का नाम तो देखो मुझे याद नहीं, पर गाने के बोल मुझे याद है।
0: जी
1: जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं।
0: सुनवाते हैं विजय जी, आपकी फरमाइश बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आप मेरे शर्मा जी हैं, उनको नाम लेना चाहता हूँ।
0: जी
1: कमलो शर्मा और रणदीप शर्मा, रोता शर्मा, सावर से
0: जी
1: राधे राधे।
0: राधे राधे।

0: हेलो,
1: हेलो आकाशवाणी।
0: नमस्ते सर जी।
1: नमस्ते,
0: रामेश्वर चौधरी बोल रहा हूँ सर, साथ में।
1: स्वागत है चौधरी साहब कार्यक्रम में आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। और कैसे हैं सर?
1: एकदम अच्छे हैं, आप बताइए आपके क्या हाल चाल है।
0: बहुत मजे में, सब ठीक ठाक है।
1: गणेश पूजन का कार्यक्रम चल रहा है।
0: जी हाँ जी हाँ, वो गांव में पूरी झांकी वगैरह का प्रोग्राम किया गांव वालों ने, बड़ा अच्छा लगा।
1: जी जी बिल्कुल, ये उत्सव और ये पर्व हमें उत्साहित करते हैं।
0: जी जी बिल्कुल जी, अच्छा भी लगता है सर।
1: जी, और एक नई ऊर्जा बढ़ते हैं हमारे अंदर।
0: बिल्कुल सर बिल्कुल। एक गाना है भक्ति से ही संबंधित सर,
1: जी
0: मोरा रूप रंग करके, इस तरह से गाना है, और लेकिन फिल्म का नाम तो मेरे को मालूम नहीं।
1: चलिए सुनवाते हैं आपकी फरमाइश।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: हाँ, जय बजरंग रेडियो छोटा संग बस फैन बंडा विले से लक्ष्मण को चाय वाले बोल रहे सर, कैसे हो? चाय पी लो।
0: धन्यवाद। आपके क्या हाल चाल है? हम तो अच्छे हैं।
1: हम भी अच्छे हैं, भगवान कृपा है। गणेश जी उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर।
0: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। काम कैसा चल रहा है आपका?
1: अच्छा चल रहा है सर, बस अच्छा पानी भी गिर गया है।
0: अच्छा, मौसम अच्छा है?
1: अब तो मौसम खुला है 3 दिन से।
0: जी, बताइए आपकी क्या फरमाइश है आज?
1: आज सुनवाई देवा हो देवा, गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन।
0: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये भक्ति गीत। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ठीक है सर, नमस्कार।
0: नमस्कार।

हमसे पर कर दो, हमसे पर कर दो। सेवा हो सेवा गणपति देवा, तुमसे पर कर दो। स्वामी तुम

0: हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत आपका।
1: धन्यवाद सर। मैं गंगाधर सावनकर।
0: अरे वाह गंगाधर जी, बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार करते हैं आपको। कैसे
1: हाँ सर,
0: हैं?
1: बहुत बढ़िया सर। पानी गिरा रात में।
0: ये तो अच्छी बात है, मौसम सुहाना हो गया
1: जी जी सर, सुहाना होगा।
0: जी।
1: ऐसे
0: और
1: अपने
0: परिवार
1: घर
0: में
1: में
0: कैसे हैं सब?
1: सब कुशल मंगल है सर।
0: जी कुछ कहना चाहेंगे कार्यक्रम में?
1: बहुत बढ़िया कार्यक्रम होते हैं आपके, कार्यक्रम में SMS बात हो, शाम
0: जी
1: सुहानी हो,
0: जी
1: फोन इन कार्यक्रम हो, सुने बगैर रहते नहीं सर।
0: ये तो आप लोगों का स्नेह है।
1: हाँ सर,
0: बताइए आज के कार्यक्रम में फरमाइश क्या है आपकी?
1: फरमाइश देखो, दुलारा फिल्म,
0: जी गाने के बोल क्या हैं?
1: तुम्ही से तुम्ही को चुरा लेंगे। मित्रों नाम लेता हूँ सर।
0: जी
1: हमारे
0: बिल्कुल।
1: तुकाराम यादव जी है, भगवान सिंह जी है, तनुश्री है, उदयलाल टेलर जी है, और सुनील झा है,
0: जी
1: केसरी सिंह राजपूत है। ये सभी दोस्तों को सर आप सुनना है सर गाना है।
0: सुनवाते हैं आपकी और आपके मित्रों की फरमाइश पर ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, प्रस्तुति देवराज कृष्ण दीक्षित की थी। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम यादों के झरोखे से।

लता मंगेशकर और साथियों को आपने सुना फिल्म गाइड में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म बाजार से। इस गीत को स्वर दिए हैं भूपेंद्र ने।

बॉबी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, स्वर थे लता मंगेशकर के। श्रोताओं, कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में आज हम बात करेंगे उत्सव और आनंद की। जी हाँ, अभी इस समय जो महीना चल रहा है, त्योहारों का महीना चल रहा है, और उसके आगे भी बहुत सारे त्योहारों का आनंद हम हमारे परिवार के साथ, इष्ट मित्रों के साथ लेंगे, और उसकी जो तैयारियां होती हैं वो भी काफ़ी दिन पहले से आरंभ होने लगती हैं। तो एक के बाद एक अब त्यौहार आने वाले हैं, तो ऐसे उत्सवों की तैयारी आप कैसे कर रहे हैं और क्या कुछ होता है आपके यहाँ विशेष, अपने एसएमएस में हमें ज़रूर लिखिएगा, हमें प्रतीक्षा रहेगी। हमारा फ़ोन नंबर वही है 94 122 25 575।

गोलमाल फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे स्वर्थे किशोर कुमार के। श्रोताओं, हम आपको बता दें, आज कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में हम बात करेंगे उत्सव और आनंद की। जी हाँ, त्योहारों का आनंद हम सभी लेना चाहते हैं और उसके लिए तैयारियां हो जाती हैं काफ़ी दिन पहले से ही। घर में जो आयोजन होने लगते हैं, चाहे वो सफाई की बात हो, रंगाई पुताई की बात हो, और या फिर बात हो शॉपिंग की, तो बस कुछ ऐसी ही बातें आपके साथ हम भी आपसे जानेंगे कि आपके यहाँ क्या चल रहा है और कैसे तैयारियाँ हो रही हैं त्योहारों की, और क्या कुछ खास होता है इन त्योहारों पर आपके घर में। तो बस अपनी बातें संदेश के माध्यम से हम तक भेज दीजिए। कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में हमारा नंबर है 94 122 25 575।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को आपने सुना फिल्म कारवां में। और आइए अब सुनते हैं पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल को फिल्म गवाही में।

गवाही फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और पंकज उदास के स्वरों में। इस गीत के साथ ही यादों के झरोखे से कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम गीत बात और SMS।

हैं और पितृपक्ष आएगा, फिर आएंगे शारदीय नवरात्रे, दशहरे का पर्व, दीपावली का पर्व। और दीपावली का जो पर्व होता है वो तो पूरे 5 दिनों का पर्व होता है, यानी एक के बाद एक त्योहारों की श्रृंखला अनवरत अब जारी हो रही है और हम सभी उन त्योहारों के लिए तैयार हो रहे हैं। और त्योहारों के लिए तैयार होना मतलब हम अपने आप को मानसिक रूप से इस चीज़ के लिए तैयार करते हैं कि अब ये त्योहार आएगा और इस त्योहार में हमें अपने घर में क्या कुछ तैयारियां करनी हैं, चाहे वो पूजा की सामग्री हो, साफ सफाई की बात हो, रंगाई पुताई की बात हो। और आजकल तो देखिए बहुत ट्रेंड चल पड़ा है, हर त्योहारों की अलग सजावट होती है। आपके जो भी इष्ट हैं उनको भी आप अच्छी तरीके से सजाना चाहते हैं, उनकी ड्रेस हो, उनका मंदिर का डेकोरेशन हो, इसके अलावा घर के भी हर कोने को आप साफ सुथरा और सजावट के सामान के साथ देखना चाहते हैं। और ये जब आप चीज़ें करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो ध्यान है उन सब तैयारियों की तरफ होता है, तो बहुत सारी जो आपके अंदर तनाव, चिंता या कुछ चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं आप थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो चीज़ें भी काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं, क्योंकि आपका ध्यान जो है ना वो डाइवर्ट हो जाता है। आप अलग तरीके से अलग चीज़ों को जब सोचना शुरू कर देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें स्वतः ही बहुत आप लाइट फील करने लगते हैं। तो बस ये त्योहार जो होते हैं ये हमारा घर ही नहीं, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क सब कुछ शुद्ध कर देते हैं, हमें ऊर्जा से भर देते हैं, एक एनर्जी हमें मिलने लगती है। और देखिए एनर्जी की हमने बात की तो देखिए एनर्जी हमारे सभी श्रोताओं में भी आ गई है। और सॉरी, अभी ये जो हमारे श्रोता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं ये हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर लिखते हैं। उत्सव और त्योहारों की तैयारी में हमारे जीवन में खुशियां और उमंग के रंग भर उठते हैं। इनकी तैयारी में घर की सजावट, खरीदारी और स्वादिष्ट पकवानों का विशेष आनंद मिलता है। परिवार और मित्रों के साथ मिलकर त्योहार मनाने से प्रेम, एकता और भाईचारे की भावना बढ़ती है। यही त्योहारों की असली खुशी है। बिल्कुल सही कहा आपने, त्योहारों की असली खुशी तभी है जब हम सब अपने परिवार में उस त्योहार को अच्छे से सेलिब्रेट करें और ये त्योहार एक फॉर्मेलिटी ना हो बल्कि उत्सव का उस नजर आना चाहिए। ये हमारे श्रोता हैं सत्यनारायण, कपिल, शोभा, फुंदीबाई बागरी, बागरी मोहल्ला झालावाड़ राजस्थान से लिख रहे हैं कि त्योहार हमारे यहाँ भी सब मिलजुल कर परिवार के साथ मनाते हैं और ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये SMS हमारे पास में आया है रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी लिखते हैं, त्योहारों की तैयारी और उनका आगमन हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा, सकारात्मकता और अपार खुशी लेकर आता है। भारत जैसे विविधताओं वाले देश में त्योहार केवल एक कैलेंडर की तिथि नहीं बल्कि ये सपनों से जुड़ने, पुरानी यादों को ताजा करने और जीवन को उत्सव के रूप में मनाने का एक जरिया है। त्योहारों की तैयारी और उनसे मिलने वाली खुशी के कुछ मुख्य पहलू इस प्रकार हैं, घर की साफ सफाई, सजावट। त्योहारों के आने से हफ्तों पहले घर में साफ सफाई होने लगती है, रंग रोगन का काम शुरू हो जाता है। माना जाता है कि स्वच्छ और सुंदर स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। दियों, रंगोली, गेंदे के फूल और लाइटों से घर को सजाना मन को एक अनोखा सुकून देता है। पकवानों की खुशबू त्योहारों का एक खूबसूरत हिस्सा और रसोई से आने वाले लजीज व्यंजनों और मिठाइयों की महक है। तो बहुत ही प्यारा सा SMS है। SMS बहुत ज़्यादा लंबा है, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा कीजिए, लेकिन ये SMS पढ़ते पढ़ते मेरे सामने दीपावली का जो चित्र है वो आ गया, जो आपने वर्णन किया है बहुत खूबसूरत किया है। और ये हमारे श्रोता हैं सिद्धार्थ नगर दुर्गा
दुर्गा पूर्वावली

जी हाँ श्रोताओ, ये जो समय चल रहा है त्योहारों का समय है, यानी अभी हमने श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया और उसके बाद राधा अष्टमी का पर्व, गणेश चतुर्थी का पर्व और इसके आगे भी बहुत सारे पर्व ही पर्व।

से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अशोक येले और शरी वडनेर अकोला से हैं, अरुणा बलदेव दामोदर आदित्य दामोदर लिखते हैं। अभी आने वाले सभी त्योहारों के लिए तो ढेर सारी तैयारी करनी पड़ती है और घर की सजावट में ही असली खुशी मिलती है। त्योहार आने पर हम अपने परिवार के साथ बहुत खुश होते हैं। बिल्कुल, और ये SMS हमारे पास में आया है कलानौर से, नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा और नितिन मयंक शर्मा का। गणपति जी के आगमन के साथ ही त्योहारों की शुरुआत हो जाती है दीदी, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, भाई दूज सब साथ साथ आ जाते हैं और हम इन्हें बड़े प्यार से और बड़े आनंद के साथ मनाते हैं। और देखिए ये SMS हमारे पास आया है, ये हमारे श्रोता हैं जिला मुरादाबाद से, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून लिखते हैं। हमारे देश में बहुत ही त्यौहार, बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। हिंदू और मुस्लिम भाई के भाईचारे के साथ इन त्यौहारों को मनाया जाता है, हमें बहुत खुशी होती है। और अब हमारे भाइयों का कोई त्यौहार होता है तो हम उन्हें बधाई देते हैं, और हमारा त्यौहार होता है तो वो भी हमें बधाई देते हैं। बहुत अच्छा लगता है एकजुट होकर त्योहारों को मनाना, और हमारे देश में यही तो प्रेम मोहब्बत है। और दूसरी बात यह है कि जब हमारे त्योहार आते हैं तो हम अपने घरों की साफ सफाई में लग जाते हैं, इससे हमारे घर की साफ सफाई हो जाती है और त्योहार बड़ी शांति के साथ और उल्लास के साथ मनाते हैं। बिल्कुल, यह समय हमें भेजा है इन श्रोताओं ने मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से, सोपान लाइडे और मोहन करांगले, वसंतरा भोजने लिखते हैं कि त्यौहार आने से जीवन महक उठता है और सभी परिवार के साथ त्यौहार मनाने का आनंद ही अलग है। और ये SMS हमें भेजा है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से, रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा ने, लिखते हैं त्यौहार केवल पूजा पाठ या रस्मों का नाम नहीं बल्कि परंपरा, संस्कृति, परिवार और आपसी प्रेम को जोड़ने वाला अवसर है। त्यौहारों की तैयारियां घर परिवार में उत्साह लाती हैं और लोगों को साथ बैठने, खुशियां बांटने और पुराने यादों को फिर से जीने का मौका देती हैं। बदलते समय के साथ त्यौहार मनाने के तरीके जरूर बदले हैं, लेकिन उनका मूल उद्देश्य मिलजुल कर खुशियां बांटना और रिश्तों में अपनापन बढ़ाना आज भी है। और ये SMS हमें भेजा है लिखने वाले श्रोता जी, पहले मैं SMS पढ़ती हूँ। कोई भी त्यौहार मानो, सब त्यौहार में अलग अलग उमंगें बढ़ाने वाले होते हैं, अलग अलग प्रकार की खुशियाँ, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि हर त्यौहार का एक अलग रंग है और उसकी खुशियाँ भी अलग हैं। और मैं बहादुर चक्रवर्ती, लेकिन त्यौहार मनाना थोड़ा धीरज धरकर मनाना, क्योंकि उसमें भी थोड़ा बहुत कभी कभी संकट आ जाता है। देखिए, अच्छा अच्छा सोचिए, अच्छा अच्छा होगा, तो नेगेटिव सोच ना रखिए और अच्छी सोच के साथ त्योहारों को मनाइए। और ये हमारे श्रोता हैं पप्पू राजा खुशदिल पंजाब चकला बाजार से, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक खुशदिल, सुनीता रानी जिंदल, आरजू हसमुख लाल, बुलबुल शक्ति, संजीव बंटी और इनका पूरा परिवार लिखते हैं। ये परिवार हमारे जीवन में, परिवार की खुशियां सबसे महत्वपूर्ण हैं और ये त्यौहार हमें एक साथ जब इन त्यौहारों को मनाने का अवसर मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। और सबके साथ इकट्ठे बैठकर खाना खाना, त्यौहार मनाना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और ये हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, लिखने वाले श्रोता हैं रंगोली राजनगर बिहार से, नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल रानी, काशी विश्वनाथ धाम से हैं, अरुण भाई, नवीन भाई लिखते हैं दीपावली का त्यौहार बहुत अच्छा लगता है। तो भाई, दीपावली के त्यौहार के लिए तैयारियां भी तो करनी होती हैं ना पहले से। और ये मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से हैं, सोपान ताड़े, पीएस
नुहानकर।

और लिखते हैं, त्योहारों की खुशियां तब और सुंदर लगती हैं जब परिवार के सभी सदस्य प्रियजन साथ मिलकर उत्सव मनाते हैं। आपसी प्रेम, सौहार्द, अपनापन और सहयोग से त्योहार का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। तो देखिए, कई गुना आनंद बढ़ाते रहेंगे और आपको साथ में गीत भी तो सुनवाने हैं, तो चलिए एक गीत खास आपके लिए।

ये है श्रोता तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, डब्बू और शाहदरा दिल्ली से हमें लिख रहे हैं कि मस्कीन जी का बर्थडे है, प्लीज विश करें। चलिए जी, हमारी ओर से बहुत बहुत बर्थडे की भी शुभकामनाएं। और लिखते हैं, हमने तो अभी से घर की साफ सफाई का काम शुरू कर दिया है। पूरे गणेश उत्सव में गणेश जी का जीव भर के गुणगान किया है। गणेश जी सबकी मनोकामना पूर्ण करें।

मुझे पता है आप गाने के साथ साथ झूमने भी लगे होंगे, डांस करने भी लगे होंगे, लेकिन बस भूलिए मत SMS भी आपको करना है। और SMS तो मेरे पास बहुत सारे आ चुके हैं, जल्दी से मैं भी पढ़ना शुरू कर रही हूँ। ये SMS आया है मथुरा से, गीता, आभा, अक्षय और माधव, प्रिंस, स्वाति, यश और वासु का दीपावली का त्यौहार एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है। काम करते समय लगता है कि बहुत ज्यादा काम है, लेकिन जैसे समय आता है त्यौहारों को एक एनर्जी अपने आप ही हमें आ जाती है और अपने फ्रेंडों से अपने परिवार से मिलने का मौका मिलता है। एक साथ त्योहार मनाने का मजा ही कुछ और है। बच्चों बड़ों के लिए गिफ्ट ले आते हैं और बच्चों को गिफ्ट देने में बहुत मजा आता है और बड़े जो हमें देते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हैप्पी दिवाली इन एडवांस, सेम टू यू जी। और ये SMS हमें आया है इन श्रोताओं का, लिखते हैं, त्योहार आने से शरीर में एक नई उमंग भर जाती है, खास करके बच्चों के लिए बहुत खुशी का दिन होता है। ये SMS हमें भेजा मगनपुर झारखंड से अब्बास आलम ने।

ये SMS हमें भेजा है, रश्मि दीदी आप बहुत बहुत दिनों के बाद आई हो, नमस्ते। नमस्ते जी, और हैप्पी श्री गणेश फेस्टिवल। हम हर साल एक गणेश जी बिठाते हैं घर में और फिर विसर्जन भी करते हैं सभी मिलकर। एक

सभी मिलकर एक साथ इस उत्सव को मनाते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये SMS में भेजा लातूर से संगीता जैन, सूरज जैन और PR जैन ने। ये SMS हमें भेजा है इन श्रोताओं ने। लिखते हैं, दीपावली दशहरा के समय घर की सफाई एवं व्यंजन कपड़ा की खरीदारी करना पड़ता है। आज का विषय काफी अच्छा है, आपको बधाई। ये SMS हमें भेजा भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरविंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, अंकिता जोशी, लक्ष्मी ध्रुव, बेबी वैदेही जोशी, बेबी हंसिका जोशी और इनके सभी परिवारी जन। और ये आया है SMS हमारे पास इन श्रोताओं का। शांति निकेतन राजनगर से, रेणु मिश्रा, क्रांति मिश्रा, क्रांति गुप्ता, गोदावरी देवी और मेनका गांधी। आप लिखते हैं, सावन आते ही पर्व का दिन आ जाता है। तो आपको सावन बहुत ज़्यादा पसंद है, सावन का महीना पसंद है। आप बिल्कुल सही कहा आपने, सावन के बाद तो फिर श्रृंखला, जैसे राम लखन, कृष्ण बलराम हम कहते हैं, ऐसे ही सावन भादो एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे दिन और रात। और ये दोनों ही जो त्योहार है ना, सावन से जो शुरू हो जाते हैं, उसकी जो श्रृंखला शुरू हो जाती है, तो वो तो फिर उसका जो आनंद है काफी महीनों तक हम लेते ही रहते हैं। ये SMS हमें भेजा है रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया और कविता महोबिया और पेंटर बाबू ने। लिखते हैं, त्योहारों के आने से मन हर्षोल्लास से खिल उठता है। विभिन्न प्रकार के पकवान और पूजा पाठ का आनंद ही अलग होता है। यही त्योहारों का आगमन एक ऊर्जा प्रदान करता है। और ये हमारे जो श्रोता हैं हमें लिख रहे हैं, कमल बलूजा, मधु बालूजा, सागर बलूजा सतना MP से हैं, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक। और आप सभी को कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, इसके लिए धन्यवाद। और ये श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से, मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा। लिखते हैं, बचपन की यादें ताजा हो गई आज इस कार्यक्रम से। और बचपन में तो हम त्योहारों का बहुत बेसब्री से इंतजार करते थे। और ये हमारे जो श्रोता हैं लिखे हैं, उत्तम कुमार बघेल, रुखमणि बघेल, साहिल भारती बघेल, पंडरिया छत्तीसगढ़ से। हमारे छत्तीसगढ़ में सावन माह से त्योहार शुरू हो जाता है, हर महीने एक त्योहार आता है और हम सभी परिवार के साथ में इन्हें खुशी खुशी मनाते हैं। तो चलिए इसी बात पर हो जाए फिर से एक और गीत।

ये श्रोता जुड़े हैं रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से। त्योहारों के आने से मन हर्षोल्लास से खिल उठता है, विभिन्न प्रकार के पकवान और पूजा पाठ का आनंद ही अलग होता है, यही त्योहारों का आगमन ऊर्जा प्रदान करता है। ये श्रोता हैं विजय महोबिया, कविता महोबिया और पेंटर बाबू।

भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार लिखते हैं। मैडम जी बहुत बढ़िया प्रोग्राम आप पेश कर रहे हैं और विशेष बातचीत कर रहे हैं, बेहतरीन प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम सुनने में आनंद आ रहा है और त्योहार हमें मनाने भी चाहिए और उसका आनंद भी उठाना चाहिए। त्योहार और पर्व होते ही इसलिए हैं कि हम एक दूसरे से मिल सकें, एक दूसरे से हम जुड़े रहें और साथ ही साथ अपना कुछ वक्त निकालकर अपनों के साथ, परिवारों के साथ, दोस्तों के साथ मिल बैठकर त्योहार मनाते रहें।

ये SMS हमें भेजा है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव ने। हमारे जीवन में उत्सव और त्योहारों का इतना गहरा और खास महत्व है कि उत्सव सिर्फ खान पान या छुट्टियों का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारे जीने के तरीके और आपसी जुड़ाव का हिस्सा है।

फूटानी चौक नारायण एस्टेट से हैं ललन मिश्रा। लिखते हैं, अभी से लेकर 2 महीने तक विभिन्न तरह के त्योहारों की धूम रहेगी। त्योहार हमें आनंद प्रदान करते हैं और इन्हें मनाने में आनंद की अनुभूति होती है। और आप जानते हैं कि आनंद की अवस्था हमारे शरीर में तनाव करने वाले तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने वाले रसायनों का भी उत्सर्जन करते हैं। तो त्योहार केवल अच्छे पकवान खाने का ही उत्सव नहीं है, बल्कि जीवन की नीरसता को समाप्त कर नई ऊर्जा हमें प्रदान करते हैं।

और अब वक्त हो चला है कार्यक्रम को विराम देने का और आपसे अनुमति लेने का भी। तो इसी के साथ करती हूँ आपसे नमस्कार और देते हैं कार्यक्रम को यही विराम।

ये आकाशवाणी का मथुरा और वृंदावन केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम ब्रज लोक गीत। कलाकार हैं अलका राजेश।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ब्रज लोकगीत, प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं अलका राजेश के स्वर में कुछ ब्रज लोकगीत।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ब्रज लोक गीत।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ब्रजलोक गीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं अलका राजेश के स्वर में कुछ ब्रजलोक गीत।

इस समय कार्यक्रम ब्रज लोकगीत में आप सुन रहे हैं अलका राजेश के स्वर में कुछ ब्रज लोकगीत। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं ये एक और लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज लोकगीत। आज इस कार्यक्रम में आपने सुने अलका राजेश के स्वर में कुछ ब्रज लोकगीत। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। नई दिल्ली में नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी के लिए फिलहाल 1100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं और सरकार का उद्देश्य इनकी संख्या प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों के स्तर तक ले जाने का है। सुश्री पटेल ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को ये जानकारी देने की सूची में भारत 8वें स्थान पर पहुंच गया है।
2: भारत आज WHO के डेटाबेस में दवा सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करने में दुनिया में 8वें स्थान पर है, जबकि 2009 से 2014 के बीच वे 123वें स्थान

0: पर था। दुनिया के करीब 25 देश भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देते हैं और स्वीकार करते हैं।
1: Which recognize and accept the Indian pharmacopoeia.
2: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आज मेरठ पहुंचे। श्री नबीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर के दौरे पर हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद श्री नबीन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये पहला दौरा है। इस दौरान उन्होंने बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया। श्री नबीन ने सुभारती विश्वविद्यालय में आयोजित युवा संवाद में छात्र छात्राओं से बातचीत की। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में आवारा पशुओं के लिए आश्रय स्थल बनाने के निर्देश के खिलाफ दायर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर सहमति व्यक्त की है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने प्राधिकरण को आश्रय स्थल बनाने का निर्देश दिया था, जबकि ये जिम्मेदारी स्थानीय निकायों और प्रशासन की है। सॉलिसिटर जनरल ने प्राधिकरण की याचिका पर सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की विशेष पीठ के पुनर्गठन का भी अनुरोध किया। दिल्ली उच्च न्यायालय में आज 7 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने न्यायमूर्ति निवेदिता अनिल शर्मा, निशा सहाय सक्सेना, संजय शर्मा, भरत पाराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को पद की शपथ दिलाई। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ को लेकर लोगों से सतर्क रहने को कहा है। विभाग ने दोहराया है कि ऐसा किया जाना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। संचार मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करें। आधुनिक युद्धक क्षमताओं से लैस स्वदेशी जहाज INS सह्याद्री और INS कुलिश फिलीपींस की सुबे खाड़ी पहुंचे। दोनों जहाजों को नौसेना की संचालनगत तैनाती के अंतर्गत भेजा गया है। ये युद्धपोत फिलीपींस में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक और संयुक्त सहयोग गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बना ली है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार पार्टी ने करीब 58% वोट हासिल किए हैं। अंतिम परिणाम 25 सितंबर तक आने की उम्मीद है। यूनाइटेड रशिया पार्टी ने पिछले चुनावों में 324 सीटें जीती थी। ये चुनाव यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष के बीच हो रहा है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भी रजत पदक जीता था। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में महिलाओं के 60 किलोग्राम पारंपरिक सेमीफाइनल में सिंगापुर की हुई हुनटो से 0-2 से हारने के बाद सुचिका तारियाल ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारी दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से कुछ ही देर में बहनें सुनेंगी कार्यक्रम वनिता लोक। समय रहेगा दिन में 1:15। आज इस कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे विश्व अल्जाइमर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। इसी कार्यक्रम में सुनिएगा आरोग्य क्रम में ये वार्ता, वायरल फीवर कारण लक्षण और बचाव। वार्ताकार होंगी डॉक्टर भारती गर्ग, इनसे भेंट करेंगे विजय सिंह नौलखा। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा दिन में 1:45 पर।

आयोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय रहेगा दिन में 2:30। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी संध्या 5:30 पर कार्यक्रम युववाणी के साथ। कार्यक्रम में आज की बात के अंतर्गत चर्चा के विषय रहेंगे श्री नारायण गुरु समाधि दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस।

ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में सुनिएगा ब्रजवार्ता, ब्रज की ठाकुर सेवा में भोग राग। वार्ताकार होंगे अजय कुमार तेलंग। समय रहेगा संध्या 6:15। संध्या 6:30 पर सुनिएगा भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन। संध्या 6:50 पर ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे एआई से खेती को आसान कैसे बनाएं, और इसी क्रम में चर्चा का दूसरा विषय रहेगा स्वच्छता ही सेवा है मिशन। इसी कार्यक्रम में सुनिएगा वार्ता जैविक खेती, खेत की सेहत, किसान की खुशहाली। वार्ताकार होंगे शंभु दयाल सारस्वत। संध्या 7:31 पर सुनिएगा कार्यक्रम शाम सुहानी। रात्रि 8 सुनिएगा विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में। फिल्म संगीत का प्रसारण समय रहेगा रात्रि 8:35 और रात्रि 9:15। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 9:30 पर। रात्रि 10 सुनिएगा नौटंकी स्वामी हरिदास जी। लेखक सत्यनारायण केशोरिया, प्रस्तुति टी एन शर्मा की।

अभी आप सुन रहे थे देशगान, स्वर थे उषा टंडन के और गीत लिखा योगेश श्रीवास्तव ने। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। अब बहनें सुनेंगी कार्यक्रम वनिता लोक।

जब यादों के दीप धीरे धीरे बुझने लगें, जब यादों के दीप धीरे धीरे बुझने लगें, अपनों के चेहरे भी धुंधले दिखने लगें, तब प्यार से थाम लेना उनका हाथ, तब प्यार से थाम लेना उनका हाथ, भूल जाएं वे हमें, हम ना भूलें उनका साथ। इन्हीं पंक्तियों के साथ वनिता लोक सुनने वाली सभी प्यारी बहनों को प्रियंका खंडेलवाल का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, ये पंक्तियाँ हमें याद दिलाती हैं कि जीवन में अपनों का साथ और उनका प्यार कितना अनमोल है। लेकिन जब किसी व्यक्ति की याददाश्त कमज़ोर होने लगे और वह अपने परिचितों को पहचानने में परेशानी महसूस करे, तब हमें उन्हें अपने स्नेह से

अपने साथ लेकर चलना है, क्योंकि यह केवल उम्र का असर नहीं बल्कि अल्जाइमर या मनोभ्रंश का संकेत भी हो सकता है। बहनों, आज 21 सितंबर है और आज यह दिवस पूरे विश्व में जितनी जल्दी आपको पता चलेगा उतना ही आप कर पाएंगे मनोभ्रंश का निदान मायने रखता है थीम के साथ मनाया जा रहा है। यानी आज हम

इस दिवस को मनाए जाने के अगर हम उद्देश्यों की बात करें तो इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य अल्जाइमर रोग और मनोभ्रंश के प्रति जागरूकता फैलाना, प्रभावित लोगों और उनके परिवारों को सहयोग देना है। बहनों, अल्जाइमर से प्रभावित व्यक्ति को हमारे प्यार, धैर्य और सम्मान की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। उनकी भूल पर उन्हें डांटना या मजाक उड़ाने के बजाय हमें उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। अमेरिका की प्रसिद्ध लेखिका माया एंजेलो ने कहा है, लोग आपकी कही हुई बातें भूल जाएंगे, लोग आपके किए हुए काम भूल जाएंगे, लेकिन वे कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। इसीलिए बहनों, हम अपने बुजुर्गों और मनोभ्रंश से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदनशील बने। यदि किसी व्यक्ति को मैं लगातार भूलने या रोजमर्रा के कामों में परेशानी जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो चिकित्सक को अवश्य दिखाएं, उन्हें चिकित्सक के पास जाने की सलाह अवश्य दें। यदि बहनों याद रखिए, समय पर जांच, उचित देखभाल और परिवार का साथ किसी के जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। बहनों, विश्व अल्जाइमर दिवस पर यही संदेश अपनाएं, भूले नहीं अपनों को, अपनापन सदा निभाएं। इसी के साथ अब रुख करते हैं इस गीत की ओर और सुनते हैं यह गीत।

0: नफ़रत की दीवारें गिराएं, नफ़रत की दीवारें गिराएं, प्रेम के दीप जलाएं, हर दिल में शांति का संदेश पहुंचाएं, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, मिलकर बनाए संसार खरा, जहां ना हो युद्ध ना हो तकरार, शांति से महके अपना संसार। बहनों, आज हम एक और दिवस मना रहे हैं जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। बहनों, यह दिवस मनाए जाने का अगर हम कारण जाने का प्रयास करें, इतिहास के पृष्ठों पर नज़र दौड़ाएं, इतिहास के पृष्ठों पर पढ़ने जो अंकित शब्द हैं, अक्षर हैं, उनको पढ़ें, तो हमें ज्ञात होता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1981 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की स्थापना की और वर्ष 1982 से इसे सितंबर के तीसरे मंगलवार को मनाया गया। लेकिन बहनों, वर्ष 2001 में इसकी तारीख 21 सितंबर निर्धारित कर दी गई और हम तभी से 21 सितंबर को यह दिवस मना रहे हैं। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया में शांति, अहिंसा और आपसी सद्भाव के महत्व को समझाना और लोगों को इसके लिए प्रेरित करना है। बहनों, एक महान विद्वान मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, अंधकार को अंधकार से नहीं मिटाया जा सकता, अंधकार को अंधकार से नहीं मिटाया जा सकता, केवल प्रकाश ही एक ऐसा माध्यम है जिससे अंधकार को मिटाया जा सकता है। नफ़रत को नफ़रत से नहीं मिटाया जा सकता, केवल प्रेम ही ऐसा कर सकता है। बहनों, कितनी सरल लेकिन कितनी गहरी बात है। शांति की शुरुआत हमारे अपने घर से, हमारे व्यवहार से और हमारे शब्दों से होती है। जब हम किसी की बात धैर्य से सुनते हैं, गुस्से में भी संयम रखते हैं, किसी दुखी व्यक्ति का हाथ थामते हैं, तब हम अपने स्तर पर शांति की नींव रखते हैं। हम महिलाएं परिवार को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इसीलिए घर में प्रेम, सम्मान और संवाद का वातावरण बनाकर हम बच्चों और आने वाली पीढ़ी को भी शांति और सद्भाव के संस्कार दे सकते हैं। इसीलिए बहनों, आज इस अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर हम संकल्प लें कि नफ़रत का जवाब नफ़रत से नहीं बल्कि धैर्य, प्रेम और समझदारी से देंगे, क्योंकि जहां प्रेम की भाषा होगी वहीं सच्ची शांति होगी। और बहनों, शांति तब और बढ़ जाती है जब बदलते मौसम में परिवार का कोई सदस्य बीमार ना पड़े। चूँकि इस समय बदलते मौसम के कारण वायरल फीवर के मरीज देखने को मिल रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में ऐसा ना हो कोई सदस्य जिसे वायरल फीवर हो। इसीलिए बहनों, वायरल फीवर से बचने के लिए आज हम आपको सुनवा रहे हैं आरोग्य क्रम के अंतर्गत भेंटवार्ता, वायरल फीवर कारण, लक्षण और बचाव। जानकारी दे रही हैं डॉक्टर भारती गर्ग और इनसे भेंट कर रहे हैं विजय सिंह नौलखा। तो सुनते हैं हम और आप मिलकर यह भेंटवार्ता।
1: जैसा कि आप जानते हैं, साल के इस मौसम में यानी बरसात के मौसम में आम तौर पर एक इस तरह की बीमारी आती है जो साल दर साल आती रही है, जिसे हम वायरल बुखार भी कहते हैं। और आजकल अगर आप समाचार पत्रों में देखें या दूसरे मीडिया की रिपोर्ट्स में देखें, इस तरह के पेशेंट्स जो है बहुत अधिक मात्रा में हमारे पास आ रहे हैं। तो इसी विषय को ध्यान में रखते हुए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वरिष्ठ डॉक्टर हैं डॉक्टर भारती गर्ग। और आज ये वायरल बुखार या डेंगू बुखार ये किस कारण होता है, इसके क्या लक्षण है और इसकी रोकथाम किस तरह से की जाए, इस विषय पर जानकारी देंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियोज में। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: तो जैसे डॉक्टर साहब आपने देखा है कि आम तौर पर हर साल बरसात के मौसम में बुखार आना एक सामान्य समस्या है। बुखार यूं तो स्त्री पुरुष बच्चे या किसी को किसी भी वक्त हो सकता है, वो एक लक्षण जैसा है। तो इस वक्त जो बुखार आ रहा है जिसे वायरल बुखार या डेंगू बुखार भी कह रहे हैं
2: जी,
1: तो ये किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं
2: जी? इस समय हर साल की तरह जैसे देखते हैं कि जब भी मौसम बदलता है और बरसात का मौसम आता है तो उस समय वायरल बुखार जो होता है वो अधिक मात्रा में अधिक लोगों में देखने को मिलता है। और इस बार भी बुखार वायरल है, लेकिन इस बार जो वायरस जो है वो एक खतरनाक बीमारी की तरह से

0: लोगों में आया है और वायरल डेंगी वायरस जिसको बोलते हैं, इसे सामान्य भाषा में हम डेंगू बुखार भी
1: जी
0: बोलते
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: साथ में चिकुनगुनिया बुखार है, साथ में इन्फ्लुएंजा बुखार है। तो ज्यादातर जो बुखार है, डेंगू जो बुखार है, ये ज्यादा खतरनाक तरीके से लोगों के बीच में देखने को हमें मिल रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि बुखार है, लेकिन बुखार के साथ साथ कुछ परसेंटेज लोगों में ये जो हमारी मज्जा होती है, जो कि हमारे सभी प्रकार के ब्लड के कंपोनेंट्स को बनाती है, जैसे कि RBC, WBC, प्लेटलेट्स, तो इन लोगों में कुछ परसेंटेज लोगों में ये बुखार जो है प्लेटलेट्स को काफी कम कर देता है। वैसे ज्यादातर सभी लोगों में प्लेटलेट्स कम होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये इतने ज्यादा कम हो जाते हैं कि अगर समय रहते इनका सही तरीके से उपचार ना हो तो कई बार हमको डेथ भी देखने को मिली है।
1: जी जी
0: तो जरूरी है कि हम इस बीमारी से जुड़े सभी पहलुओं के ऊपर एक बात करें, और जिससे कि पब्लिक को
1: थोड़ी सी
0: एक
1: अवेयरनेस होगी तो
0: अवेयरनेस हो।
1: जानेंगे। हाँ, तो डॉक्टर साहब ये बात बताइए, आपने बताया कि जैसे बहुत सारे पेशेंट्स इस रोग से पीड़ित आ रहे हैं और लगभग हर साल ही आते हैं, ये मौसम ही इस तरह का है कि इसमें ये बीमारी का प्रकोप सामान्यतः देखा जाता है,
0: जी
1: तो डॉक्टर साहब इसका कारण क्या है, क्यों इस तरह की बीमारी इस वक्त हो रही है, क्या कारण है?
0: कारण इसका ये है कि ये जो बीमारी है, ये वायरस जो है, ये मच्छर मच्छर इसके वेक्टर है,
1: जी जी
0: और मच्छर की एक प्रजाति होती है एडीज एजेप्टी।
1: जी जी
0: तो ये जो मच्छर है ये हमारे आसपास ही रहता है, और इस मच्छर की वजह से अगर ये मच्छर किसी व्यक्ति जो कि इस वायरस से ग्रसित है और उसको ये काटता है, तो ये इस बीमारी को दूसरे लोगों में ट्रांसमिट कर देता है।
1: जी जी
0: और एक बार अगर ये एक मच्छर अगर इस वायरस से ग्रसित है, तो पूरे मच्छर की जितनी भी लाइफ है, ये हमेशा जब भी किसी को काटेगा, ये वायरस उस व्यक्ति के शरीर में छोड़
1: छोड़
0: देगा।
1: देगा।
0: तो हमको इसलिए, इस वजह से ये वेक्टर बॉर्न डिसीज है, इंसेक्ट बॉर्न डिसीज है। तो हमको इस समय सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो अपने आसपास के जो माहौल है उसको, वातावरण को स्वच्छ रखने में, और ये देखना है कि हमारे जो घर के ही अंदर, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पौधे हैं, हम उनमें पानी देते हैं और वो कई बार नीचे प्लेट भी लगा देते हैं जो पानी एकत्रित होता रहता
1: जी
0: है,
1: जी बरसात
0: तो
1: में पानी
0: बहुत
1: उसमें भर
0: मामूली
1: जाता
0: बात
1: है।
0: है। घर
1: जी
0: की छत पर टायर्स पड़े हुए हैं पुराने, हमने डाल रखे हैं, पुराने कुछ बर्तन हैं, चिड़ियों को पानी पिलाने के बर्तन हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें जिनके
1: इसके
0: ऊपर
1: अलावा
0: शायद
1: भी
0: कभी हमारा ध्यान जाता हो,
1: जी जी
0: उसमें ये मच्छर का ब्रीड करता है, ये लार्वा देता है, और इस वजह से ना केवल बाहर, घर के बाहर, घर के अंदर भी ये मच्छर पनपता है और इस बीमारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैलाता है।
1: इसके अलावा भी डॉक्टर साहब, चूंकि बहुत सारे लोग कूलर्स का इस्तेमाल करते हैं,
0: जी
1: उसमें पानी
0: बिल्कुल,
1: भर के चलाते हैं
0: जी
1: और
0: बिल्कुल,
1: वो पानी को, मेरे ख्याल से उसी पानी को बार बार यूज़ करते रहते हैं, यानी और पानी डालते हैं, फिर वो पूरा ख़त्म नहीं हो पाता।
0: मौसम बदल जाता है
1: जी
0: तो उस समय शायद उस कूलर की उतनी आवश्यकता नहीं होती है, पर वो पानी वहीं की वहीं रह जाता है, तो
1: जी
0: वो एक बड़ा जो है मच्छरों का एक पैदा होने का एक सोर्स बन जाता है।
1: यानी कुल मिलाकर कहने वाली बात यह है कि ये मच्छरों के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर की जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, तो मतलब हमें ये जानना चाहिए कि कहीं पे भी पानी का रुकाव, यानी पानी इकट्ठा अगर कहीं हो रहा है तो उसको ना होने दें, क्योंकि वो मच्छरों के प्रजनन के लिए ज़रूरी है, मच्छर
0: जी
1: उसी से फैलते हैं, रुके हुए पानी को कहीं पे भी ना इकट्ठा होने दें। आप अगर बरसात के मौसम में पानी अगर आपके आसपास कहीं इकट्ठा होता है तो ये कोशिश करें, आप जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, आपके ऊपर अगर कबाड़ में भी कुछ रखा हुआ है जिसमें पानी इकट्ठा हो सकता है, उसे हटा दें, सफाई का ध्यान रखें। तो डॉक्टर साहब ये तो बात हो गई कि भाई क्यों होता है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी को हो जाता है तो उसमें कौन कौन से मरीज को लक्षण देखने को मिलेंगे?
0: जी सबसे पहला जो लक्षण है वो बुखार आता है पेशेंट को, और ये बुखार भी बहुत तेज रहता है, जैसे 104 डिग्री तक भी
1: जी
0: बुखार हो जाता है, और साथ में इस बुखार के साथ साथ उसको सिर दर्द रहता है। सिर दर्द भी इस टाइप का रहता है कि आंखों के पीछे काफी दर्द महसूस होता है,
1: जी
0: इसके अलावा हाथ पैरों में दर्द रहना, जोड़ों में दर्द हो सकता है, इसके साथ में पेशेंट को उल्टी आ सकती है, और धीरे धीरे क्या होता है कि इसको बुखार उतरता नहीं है, 2-3 दिन तक लगातार

0: आता रहता है और कुछ केसेस में शरीर पर लाल लाल चकत्ते बन जाते हैं,
1: जी
0: तो इसको हम रैश बोलते हैं मेडिकल टर्मिनल्स में। और ये क्यों होती है, क्योंकि क्या होता है कि ये जो वायरस जब तेजी से शरीर में रेप्लिकेट करता है तो जो छोटे छोटी जो धमनियाँ होती हैं उसके इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, तो उस वजह से ये रैशेस बन जाते हैं। कई बारी नाक से खून आ जाता है, कई बारी मसूड़े में से खून आ सकता है, और कभी कभी जरा सा भी चोट लग जाए तो वो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो
1: जी
0: ये इसके सामान्यतः इसके बुखार के लक्षण रहते हैं। और टेस्ट करवाते हैं तो उसमें ज़्यादातर देखा जाता है कि हमारे जो प्रोटेक्टिव सेल्स होती हैं WBC वो कम हो जाती हैं, प्लेटलेट्स जो बहुत ज़रूरी होते हैं कि हमारे जो खून है वो धमनियों में ही रहे, धमनियों से बाहर ना निकले, तो वो प्लेटलेट्स जो एक ज़रूरी फैक्टर है वो काफ़ी कम होने लग जाते हैं। और कई बारी जब डेंगू हेमरेजिक फीवर जिसको हम बोलते हैं, या डेंगू शॉक सिंड्रोम जो उसकी डेंगू की सीवियर फॉर्म है, कॉम्प्लिकेशंस है, हालांकि ये बहुत 5% से कम ही लोगों में मिलती है, लेकिन जब ये हो जाता है तो पेशेंट का कई बार मृत्यु भी हो जाती है इसकी
1: जी
0: वजह से।
1: डॉक्टर साहब, आमतौर पे सुनने में आता है कि जो डेंगू या इस तरह के जो फीवर है उससे जो पेशेंट्स हैं उनमें क्रिटिकल स्टेज तभी बनती है जब उनके खून की जांच की जाती है और ये पाया जाता है कि प्लेटलेट्स बहुत कम है।
0: जी
1: तो इस तरह के मरीजों में आप क्या, जो मरीज हैं या जो श्रोता हैं हमारे, सावधानी के तौर पे उसे किस तरह से लें?
0: सबसे पहले तो सावधानी यही है कि जैसे बुखार आता है तो आप अपना खुद का खुद ट्रीटमेंट करना शुरू ना कर दें, क्योंकि
1: जी
0: कई बारी क्या होता है कि लोग जो है ऐसे ही मेडिकल शॉप से दर्द निवारक दवाइयाँ या बुखार की दवाइयाँ ले लेते हैं, तो उसमें कुछ जैसे डाइक्लोफेनेक है या एस्पिरिन है, तो इस तरह की दवाइयाँ जब डेंगू का अगर वो पेशेंट को पता नहीं है कि उसको कौन सा बुखार है तो उसमें उस दवा को लेने से उसको और ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ब्लीडिंग की टेंडेंसी ज़्यादा हो सकती है।
1: जी
0: तो ज़्यादातर सिंपली जो पैरासीटामोल जो एसिटामिनोफेन जो है सिर्फ वही लेना चाहिए, और किसी भी प्रकार की दर्द निवारक दवा उनको नहीं
1: नहीं
0: लेनी
1: ले।
0: चाहिए। तो एक तो ये सावधानी उनको रखनी है, दूसरा ये है कि अगर उनका बुखार है तो उनको सबसे ज़्यादा उनको घर में ही रह करके भी ज़्यादातर ज़्यादा पानी का सेवन या फ्रूट जूसेस हैं, या अपने आप को डिहाइड्रेशन की स्टेज में नहीं लाना है, क्योंकि बुखार होता है तो नेचुरली उनका उल्टियाँ होती हैं तो पानी की कमी शरीर में हो जाती है,
1: जी
0: तो वो उनको प्रॉपरली रेस्ट करके आराम करना है और पानी की कमी पूरी तरीके से उनको करनी है, इलेक्ट्रॉल या घर में ही नींबू पानी शिकंजी कुछ भी वो करके अपने को हाइड्रेट करके रख सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर उनको लगता है कि अब उनको मेडिकल अटेंशन लेना है तो तुरंत उनको डॉक्टर के पास जाकर के अपनी जांच करवा के ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि उनको कौन सा बुखार है, सामान्य वायरस है या डेंगी है या चिकनगुनिया है या कोई और उनको मलेरिया वगैरह है।
1: हाँ, तो ये जो डॉक्टर साहब ने जो अंतिम बात कही है इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमें खुद का इलाज खुद न करके एक विशेषज्ञ डॉक्टर के पास ज़रूर समय रहते जाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये चूंकि ये इस वक्त तो काफ़ी फैल रहा है, ये न फैले इसकी रोकथाम के लिए आप जो हमारे जो श्रोता बंधु हैं इनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे?
0: मेरी सलाह यही है कि चूंकि इस समय मच्छरों का भी पनपना ज़्यादा है, तो जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कि आपको अपने घर के अंदर और घर के बाहर बिल्कुल ध्यान दे करके सफाई रखनी है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप घर के अंदर हैं, क्योंकि ये वायरस जैसा मैंने बताया था कि जो ह्यूमन्स हैबिटेट के पास ही रहना पसंद करता है, जो एडीज एजेप्टी है, तो
1: जी
0: आपको घर के अंदर मॉस्किटो रेपेलेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं, और या फिर
1: मच्छरदानी लगाएं तो?
0: मच्छरदानी आप अगर
1: जी
0: बाहर छत पर सोते हैं या तो वो आप लगा सकते हैं। और अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि पूरे बाहों के कपड़े आप पहनिए, पैंट पूरा पहनिए, पूरी आस्तीन की आप शर्ट पहनिएगा। कई
1: जी
0: बार तो ये भी कहा जाता है कि अगर आपने पैंट भी पहना है तो उसको आप मोजे के अंदर डाल करके
1: जी
0: पहनिएगा, जिससे कि ये वायरस आपको न काट पाए। वजह इसकी ये भी है कि ये जो वायरस है ज़्यादातर सुबह जल्दी सुबह या फिर शाम में ही ज़्यादातर काटता है, हालांकि सारे दिन में कभी भी मच्छर
1: मच्छर
0: काट
1: से।
0: सकता है आपको। तो ये एक चीज़ एक इस पर ध्यान देने की है। और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कुछ ऐसा पानी का स्रोत है जो आप उसको नहीं ठीक कर सकते हैं तो उसमें आप मॉस्किटो इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं वो उसका छिड़काव जो है बहुत ज़रूरी है।

0: उसको करना है।
1: वैसे हमारी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर पालिका, नगर निगम या दूसरे जो संस्थान है, वो आजकल मच्छरों को भगाने के लिए छिड़काव भी करवा रहे हैं और फ्यूमिगेशन भी करवा रहे हैं। तो आशा करते हैं कि जो हमारे श्रोता बंधु हैं उन्होंने जो विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही काम करेंगे और इस रोग से बचे रहेंगे। तो डॉक्टर भारती गर्ग जी, आप आज हमारे स्टूडियो में आए और आपने अच्छी जानकारी दी हमारे सुनने वालों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी हमने और हमारी प्यारी बहनों ने सुनी भेंटवार्ता, वायरल फीवर कारण लक्षण और बचाव जानकारी दी डॉक्टर भारती गर्ग ने और भेंट की विजय सिंह नौलखा ने। इसी के साथ अब रुक करते हैं गीत संगीत की दुनिया की ओर और सुनते हैं यह गीत।

बहनों अब करते हैं रुख घरेलू नुस्खों की ओर। बहनों कई बार नल पर सफ़ेद सफ़ेद दाग लग जाते हैं, इन्हें साफ करने के लिए यदि हम थोड़ी सी वैसलीन नल पर लगा दें और कुछ देर के बाद उसे मुलायम कपड़े से साफ़ कर दें तो आप देखेंगे कि आपका जो नल है वो चमक जाएगा। इसी प्रकार बहनों जब बर्तन नीचे से जल जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं। अगर हम उस जले हुए हिस्से पर आपकी क्रीम होती है शेविंग क्रीम होती है उसको लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो हम देखेंगे कि जो आपका जला हुआ हिस्सा है बर्तन का वो साफ़ हो जाएगा। तो ये कुछ घरेलू नुस्खे थे बहनों आपके लिए, और इसी के साथ अब रुख करते हैं पुनः घरेलू मनोरंजन की दुनिया की ओर और सुनते हैं यह गीत।

कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे। इस मधुर गीत की समाप्ति के साथ अब इस कार्यक्रम को भी विराम देने का समय आ गया है। बहनों, आज के संदेश को आप अपने जीवन में उतारेंगी और अपने आसपास प्रेम, शांति और सद्भाव का प्रकाश फैलाएंगी। इसी आशा के साथ मुझे यानी प्रियंका खंडेलवाल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी कार्यक्रम वनिता लोक। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत किया प्रियंका खंडेलवाल ने। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

दिल ने जिसे अपना कहा। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, स्वर थे उदित नारायण और अलका याज्ञिक के।

कविता कृष्णमूर्ति और साथियों को आपने सुना फिल्म देवदास में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: economic and political consequences if it does not reach a deal. He also suggested that he is possibly open to meet Iranian President Pezeshkian at the UN General Assembly in New York. US has also warned its citizens against traveling to Iran amid possibility of further escalation in the conflict. Shipping through the Strait of Hormuz continues to remain slow, but fall in oil prices today reflect hopes for some diplomatic solution. Manish Shiva for Akashvani News from Dubai.
1: Russia's ruling United Russia Party has taken the lead in the country's parliamentary election, according to preliminary results released by the Central Election Commission. The party secured about 57.5% of the vote, while overall turnout stood at 56.66%. Final results are expected by September the 25th. The United Russia Party won 324 seats in the previous election. The election took place amid the ongoing conflict with Ukraine and a major overnight drone attack launched by Kiev. Russian officials said more than 1,900 drones were involved, killing at least two people and damaging an oil refinery. In the Asian Games, India secured a double podium finish in the men's 10-meter air rifle event in Nagoya, Japan. Himanshu Dhillon won the silver medal with a score of 252.4, while Rudraksh Patil clinched the bronze with 230.9. Earlier, India had also won the silver medal in the men's 10-meter air rifle team events. In mixed martial arts, Suchikata Riyal bagged the bronze medal after losing 0-2 to Singapore's Hui Hoon Tsui in the women's 60-kilogram traditional semi-final. The Intermeteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Telangana for today. According to IMD, similar weather conditions are also likely to prevail over coastal Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Karnataka and Madhya Maharashtra during the next 2 to 3 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India-New Zealand free trade agreement finalised comes into force on 20th October, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Union Minister Anupriya Patel says Indian pharmacopoeia gains recognition in 25 countries, reflecting the country's remarkable journey of self-reliance. Releases 7th edition of National Formulary in New Delhi. BJP says Congress is deeply influenced by communist ideology, condemns former Vice President Hamid Ansari's remarks. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar to lead Indian delegation at 81st session of UNGA in New York. Russia's ruling United Russia Party takes lead in parliamentary election. IMD forecasts heavy rainfall over Andaman and Nicobar, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Telangana for today. And Indian shooters win 3 medals in men's 10-meter air rifle, taking total tally to 6 at Asian Games in Japan. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू होगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का उल्लेखनीय उदाहरण। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बनाई, करीब 58% वोट हासिल किए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में आज तेज बारिश की संभावना। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 3 पदक अपने नाम किए। सुचिका तारियाल ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA 20 अक्टूबर को दशहरे के अवसर पर लागू होगा। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड को होने वाले 100% भारतीय निर्यात पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा।
3: This strategic partnership.
4: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की

0: साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
1: इस समझौते से वस्त्र और परिधान, चमड़ा और जूते, इंजीनियरिंग उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और

0: फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद सहित भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समझौता सेवाओं, निवेश और पेशेवरों, विद्यार्थी और युवाओं के आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर पैदा करता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच लंबे समय से घनिष्ठ संबंध हैं, जो मजबूत जन संबंधों और व्यापार तथा निवेश, कृषि, शिक्षा, खेल, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर आधारित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है। नई दिल्ली में नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए फिलहाल 1100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं।
1: Today we have around 1150.
2: देश में अभी करीब 1150 प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी केंद्र और 773 चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्टिंग केंद्र कार्यरत हैं। ये केंद्र सरकारी और निजी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में संचालित हैं। अब इन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक करने की योजना है, जिसे दवा और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा।
1: Which will make a big change in times to come.
0: सुश्री पटेल ने बताया कि भारत अब दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी से जुड़े आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन के रोगी सुरक्षा डेटाबेस को दे रहा है।
1: इंडिया टुडे हैज रिजन फ्रॉम द
2: भारत आज WHO के डेटाबेस में दवा सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करने में दुनिया में 8वें स्थान पर है, जबकि 2009 से 2014 के बीच वे 123वें स्थान पर था। दुनिया के करीब 25 देश भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देते हैं और स्वीकार करते हैं।
1: विच रिकग्नाइज एंड एक्सेप्ट द इंडियन फार्माकोपिया।
0: सुश्री पटेल ने लोगों से बिना चिकित्सकीय सलाह के दवा न लेने की अपील की है। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ को लेकर सतर्क रहने को कहा है।
2: विभाग ने दोहराया है कि ऐसा किया जाना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 साल की तक की जेल और 50,00,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने को कहा है। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदें। संचार मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी ने कल तमिलनाडु के मदुरई में डाक विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला का शुभारंभ किया। उन्होंने दक्षिणी क्षेत्र में इंडिया पोस्ट ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स साझेदारी का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
3: इस पहल के तहत शुरुआत में 3 किसान उत्पादक संगठनों टेनिकी वराठ नाठी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, मदुरई की मामा मदुरई फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और विरुद्ध नगर जिले की कम्बिकुड़ी कलवाई फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के साथ साझेदारी की गई। मदुरई प्रधान डाकघर में विक्रेताओं के ऑर्डर के संग्रह, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और भेजने के लिए विशेष भंडारण और ऑर्डर पूर्ति केंद्र भी स्थापित किया गया है। श्री पेमासानी ने सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत एस किला पट्टी गांव को संपूर्ण सुकन्या ग्राम घोषित किया है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
4: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों, फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आज मेरठ पहुंचे। श्री नबीन आगामी

0: विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया। श्री नवीन ने युवा संवाद में छात्र छात्राओं से बातचीत की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के लोगों से नशा मुक्त पंजाब यात्रा से जुड़ने और राज्य को नशा मुक्त बनाने में योगदान देने की अपील की है। फटिंडा के तलवंडी साबो में यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत करते हुए श्री चौहान ने पंजाब सरकार पर मादक पदार्थों और ड्रग माफिया के खिलाफ तय समय सीमा में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब में ड्रग माफिया को खत्म कर राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए नई शुरुआत करेगी।
1: पंजाब की नशा मुक्ति के लिए अभियान चला रही है। हम सरकार पे भी दबाव बना रहे हैं। जितने माफिया है उनके खिलाफ हमने अभियान छेड़ा हुआ है। दो दिन की बहारें हैं जग में, कब जुल्म किसी का चलता है। ये जुल्म का सूरज लाख चढ़े हर शाम को लेकिन ढलता है। आज वो चुनौती देने आया हूँ, प्रधानमंत्री जी का भी संदेश और अमित जी का भी संदेश लेके आया हूँ।
0: श्री चौहान ने नशे से प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की हाल की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। पार्टी मुख्यालय में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अंसारी ने 2019 में प्रकाशित एक किताब का हवाला देते हुए कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हिंदू राष्ट्रवाद को कम्युनिज्म से बड़ा खतरा मानते थे। श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब वामपंथ और वामपंथी विचारधारा से प्रभावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर हम विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। वर्षों के इंतजार के बाद हुए भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ ही राम की नगरी अयोध्या आज वैश्विक पटल पर धार्मिक पर्यटन और विकास की नई इबारत लिख रही है। राज्य और केंद्र सरकार के प्रयासों से अयोध्या में अनेकों विकास कार्य हुए हैं और पूरी दुनिया में सनातन धर्म के केंद्र के रूप में अयोध्या फिर से प्रतिस्थापित हो चुकी है।
2: 2014 में केंद्र में सरकार बदलने और 2017 में राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से ही भगवान राम की नगरी अयोध्या का कायाकल्प शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी। इसी राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
3: राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा।
2: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप यहाँ सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ है।
4: अयोध्या में जब से राम मंदिर बना है अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
2: पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही राम नगरी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हुई है। अयोध्या आज न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि धार्मिक पर्यटन, कनेक्टिविटी और रोजगार के मामले में नए आयाम स्थापित करके भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत का वैश्विक प्रतीक बन रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
5: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का विषय है विश्वास बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन करना। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और रुख को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने विश्व नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए और बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बना ली है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार पार्टी ने करीब 58% वोट हासिल किए हैं। अंतिम परिणाम 25 सितंबर तक आने की उम्मीद है। यूनाइटेड रशिया पार्टी ने पिछले चुनावों में 324 सीटें जीती थीं। ये चुनाव यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष के बीच हो रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। दोनों पक्ष एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। वहीं संघर्ष में कूटनीतिक सुलह की संभावना के संकेत भी मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन तक तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला आज भी जारी है। भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले हिमांशु ढिल्लो, पार्थ माने और रुद्रांश पाटिल की टीम ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। वहीं सुचिका तारियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स में महिलाओं के 60 किलोग्राम पारंपरिक स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू होगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का उल्लेखनीय उदाहरण। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में आज तेज बारिश की संभावना। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 3 पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए NCERT एवं CIET द्वारा आयोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए श्रोताओं, करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,
2: मन शांत हो तो हर कठिन परिस्थिति भी एक नई और महत्वपूर्ण सीख बन जाती है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू लिखते हैं,
3: सादर नमस्कार, ये मेरा प्रशंसा पत्र है। उमंग कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ, इससे हमारा भरपूर मनोरंजन तो होता ही है, हमें सीख और प्रेरणा भी मिलती है। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए पूरे टीम को हार्दिक बधाई और धन्यवाद।
2: भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मेहू।
3: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
2: रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था आपसे कि दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
2: इसका उत्तर जान लेते हैं।

0: साथियों, कोकोवा या कोको फल का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
1: और हमारा दूसरा प्रश्न था कि चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से किस गांव से हुई थी।
0: तो श्रोताओं, इसका उत्तर है चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से राजस्थान के खेजडली गांव से हुई थी।
1: और फिर हमने आपसे पूछा था कि जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, ऐसा क्यों?
0: उत्तर है साथियों, जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि इन्हें जीवात्मा माना जाता है। ये ऐसे वृक्ष होते हैं जो जंगल के दूसरे पेड़ पौधों का भी पोषण करते हैं।
1: और हमारा अगला सवाल बड़ा मजेदार था। हमारा सवाल था श्रोताओ, यदि कोई स्वार्थवश जंगल में लकड़ी काटने जाए तो जंगल का रक्षक लेशी उनके साथ क्या करता है?
0: उसका उत्तर है साथियों, लेशी उन्हें जंगल में भटका देता है।
1: जी, और हमारा अंतिम प्रश्न था आपसे कि खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का जवानों और बच्चों को जंगल के बारे में दिया जाने वाला मूल संदेश क्या है?
0: खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का संदेश है, जंगल हमारा नहीं है, हम बस इसके रखवाले हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था?
1: श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। हमारा निवेदन ये भी है कि इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को ताज़ा तरीन जानकारी के लिए जरूर फॉलो करें।
0: जी, और आपको बता दें कि अब NCERT की कक्षा 9 तक की नई पाठ्य पुस्तकें किसी भी सर्च इंजन द्वारा NCERT की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती हैं। टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF।
1: और यदि आप इन पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
0: जी,
1: वहाँ आप हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी जब चाहें सुन सकते हैं। और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
0: अंग्रेजी की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित कविता को संगीत रूप में प्रस्तुत करते हुए ये कार्यक्रम नगर की बनावट, साफ सफाई और कूड़ा निपटान समेत स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने का संदेश देता है।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए एनसीईआरटी असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम का शीर्षक है जगमगाता गांव।
1: इस कार्यक्रम में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग लिया गया है और विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि हमें अपने विचारों को कर्म में भी प्रकट करना चाहिए, अन्यथा उनका कोई मूल्य नहीं है।
2: साथियों, आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपको जरूर प्रोत्साहित करेगी। ये घटना अमेरिका की है।
3: ये बात उन दिनों की है जब अमेरिका संयुक्त राज्य नहीं बना था। दरअसल ये कई देशों की कॉलोनी थी। उस जगह के मूल निवासी आदिवासी थे, जिन्हें रेड इंडियंस भी कहा जाता था। आगे चलकर जब सभी राज्यों का एकीकरण हुआ तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका बना। ये वही अमेरिका है जिसे इतालवी नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोजा था और इसे नई दुनिया का नाम दिया था।
2: कोलंबस निकले तो थे भारत को खोजने, लेकिन पहुंच गए अमेरिका। तो आइए मित्रों, इस जानकारी के साथ अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये 17वीं शताब्दी के आरंभ का काल था। उन दिनों आज की तरह आधुनिक सुविधाएं नहीं थी।
3: मोटर गाड़ी, टेलीफोन, चलचित्र, समाचार पत्र कुछ भी नहीं था। यातायात के साधन नहीं के बराबर थे और लोग आवागमन के लिए या तो पैदल चलते या पशुओं का इस्तेमाल करते थे।
2: बिजली भी नहीं थी, इसलिए रात को लोगों को यात्रा करने में बड़ी परेशानी होती थी। जो सड़कें थीं, वे भी खस्ता हाल थीं। बारिश के समय वहां बड़े बड़े गड्ढे बन जाया करते थे और उनकी मरम्मत करने वाले नहीं के बराबर थे। और तो और, अधिकांश सड़कें कच्ची ही थीं।
3: इन कारणों से वहां दुर्घटनाओं का होना आम बात थी। रात के अंधकार में यात्रा करने वाले मुसाफिर और मुख्य रूप से व्यापारी अक्सर दुर्घटनाओं का शिकार होते थे। हर रोज कोई न कोई ऐसी घटना होती ही रहती थी।
2: ज्यादातर व्यापारी ही इन दुर्घटनाओं का शिकार इसलिए होते थे क्योंकि उन्हें अपना सामान लेकर सुबह सुबह मंडियों में पहुंचना होता था और इसलिए उन्हें रात भर सफर करना पड़ता था।
3: अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत में एक गांव था, नाम था पोप्स क्रीक। इसी गांव में एक बालक रहता था। उसके गांव में भी इस तरह की दुर्घटनाओं का होना आम बात थी। जब कोई भी उस गांव से रात को गुजरते हुए दुर्घटना का शिकार होता तो उस बालक को बहुत दुख होता।
2: लेकिन किया ही क्या जा सकता था, उसे कोई समाधान दिखाई नहीं पड़ता था। उसने अपने गांव के बड़े लोगों से बात भी की, लेकिन सबने हंसकर टाल दिया। लोग उस बच्चे का मजाक भी उड़ाते थे। उसके पिताजी अक्सर अपने व्यवसाय के कारण बाहर ही रहते थे।
3: लेकिन वो बच्चा इस समस्या के समाधान के लिए लगातार सोचता रहता। एक दिन की बात है, उसने अपनी माँ से कहा।
4: माँ।
5: हाँ बेटा।
4: मुझे बहुत बुरा लगता है जब रोज हमारे घर के सामने दुर्घटना होती है। कोई ना कोई रोज हमारे घर के सामने गड्ढों में गिरता है।
5: हाँ बेटा, पर ये कोई नई बात तो है नहीं।
4: हाँ पर
5: देखो, ऐसी दुर्घटनाएं तो पूरे गांव में

0: हो रही हैं और दूसरे गांव में भी होती हैं।
1: पर माँ हमारे
0: लेकिन बेटा, इसमें भला हम क्या कर सकते हैं? सड़कें खराब हैं और अंधकार भी तो है, तो दुर्घटनाएं तो होंगी ना बेटा।
1: जरा सोचो ना माँ, लोग इसी तरह दुर्घटनाओं का शिकार होते रहते हैं, क्या हम चुप्पी साधे बैठे रहेंगे?
0: अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, अब तुम जाओ और अपनी पढ़ाई करो, मेरे पास बहुत काम है, मुझे जाने दो।
1: लेकिन माँ सुनो ना।
0: अरे बेटा मैंने
1: कहा। अरे सुनो। उफ माँ।
0: अरे बेटा मेरे पास बहुत काम है, मुझे जाने दो।
1: माँ।

0: साथियों, उस बच्चे ने हार नहीं मानी और अपने पिता से भी बात की। उसने गांव के बड़ों से भी बात की, लेकिन कोई हल नहीं निकला।
1: वो बच्चा लगातार सोचता रहता कि क्या किया जा सकता है, लेकिन कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। एक दिन की बात है, शाम हो गई थी और रात्रि भोजन का समय हो गया था। सब डिनर करने बैठे थे।
2: लो बेटा, अरे क्या बात है बेटा, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। बताओ बताओ क्या सोच रहे हो।
3: हाँ माँ, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ। बेशक बहुत बड़ा समाधान तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम कुछ तो कर ही सकते हैं।
2: कुछ कर सकते हैं? भाई क्या समाधान है? देखो, बड़े बड़ों से कुछ नहीं हुआ और तुम करोगे।
3: हाँ माँ, माँ कैसा रहेगा यदि हम अपने घर के बाहर एक लैंप रख दें या लालटेन टांग दें?
2: बेटा जॉर्ज, तुम कैसी बातें करते हो। लालटेन टांग दें, इससे क्या होगा भला?
3: माँ मुझे दे दीजिए ना एक लालटेन।
2: बेटा
3: मैं जलती लालटेन को घर के बाहर लटका दूंगा।
2: अरे इस छोटी सी लालटेन से क्या होगा, क्या दुर्घटनाएं रुक जाएंगी? सारा गांव इस बात पर हंसी उड़ाएगा हमारी।
3: हंसने दो ना माँ, हम लोगों को यूं ही चोट खाने के लिए नहीं छोड़ सकते। मैं मानता हूँ कि सारी दुर्घटनाएं नहीं रुकेंगी, लेकिन
2: लेकिन क्या बेटा?
3: कम से कम हमारे घर के सामने तो दुर्घटना होनी कम हो जाएगी ना। लालटेन से लोगों को रास्ता दिख जाएगा और वे बच जाएंगे। लाओ मुझे एक लालटेन दे दो माँ। दे दो ना माँ, दे दो।
2: अरे बेटा सुनो तो
3: माँ, एक लालटेन दे दो।
2: देखो बेटा, इससे कुछ नहीं होगा और तुम लालटेन उठाकर, अरे तुम,
3: अरे माँ लालटेन दे दो।
2: अरे लालटेन लेके कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा रुको तो सही। ओहो सुनो तो, देखो ये बच्चा मानता ही नहीं है। ठीक है, जैसा तुम सोचो।
4: एक दो दिन के लिए ऐसा करने में हर्जी क्या है? करके देखता हूँ। कहाँ रखूँ, कौन सी जगह, यही ठीक रहेगा। कुछ नहीं करने से कुछ करना तो अच्छा है।
0: साथियों, उस बालक का नाम था जॉर्ज। उसने जलती हुई लालटेन उठाई और घर के बाहर लटका दी। वो देखना चाहता था कि इसका क्या असर होता है। रात भर वो जागता रहा।
1: सुखद आश्चर्य, व्यापारियों और यात्रियों का झुंड वहां से गुजरता रहा, लेकिन उस रात उसके घर के आगे कोई दुर्घटना नहीं हुई।
0: सुबह वो बच्चा भागा भागा माँ के पास पहुंचा।
3: माँ माँ माँ,
2: अरे अरे बड़ी खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
3: देखा आपने रात को लालटेन टांगने का असर, मैं तो सारी रात जागता रहा।
2: क्या क्या कह रहे हो तुम, क्या वहाँ पे एक भी दुर्घटना नहीं हुई?
3: नहीं माँ, एक भी नहीं।
2: अच्छा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि हमारे घर के सामने किसी को चोट नहीं लगी। तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा।
3: मैं कहता था ना माँ, कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा है। अब तो मैं गांव के लोगों को भी ये बात बताऊंगा।
2: हाँ, ये जरूर करना, तुम सबको बताना।
3: हाँ माँ,
2: बहुत अच्छा काम किया बेटा, मैं तो विश्वास ही नहीं करती थी। बहुत अच्छा।
0: तो साथियों, जॉर्ज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसकी माँ को भी बात समझ में आने लगी थी। उन्हें लगा कि यदि हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं कि कम से कम हम अपने घर के बाहर होने वाली दुर्घटनाओं को तो कम कर ही सकते हैं। कुछ लोगों ने उनकी हंसी जरूर उड़ाई।

0: लेकिन उन्होंने अब रोज रात को लालटेन टांगना शुरू कर दिया।
1: उन्हें बहुत अच्छा लगा जब कई राहगीरों ने रात को उनके घर का दरवाजा खटखटाया और इस बात के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।
0: धीरे धीरे ये चर्चा सारे गांव में होने लगी और लगभग सभी लोगों ने अपने अपने घर के सामने लैंप या लालटेन रखना शुरू कर दिया और परिणाम ये हुआ कि दुर्घटनाएं होनी बिल्कुल बंद हो गईं।
1: राहगीर जब दूर से आते तो उन्हें उस गांव को जगमगाता देखकर बड़ी प्रसन्नता होती। अब तो दूर दूर तक इस गांव की चर्चा होने लगी और लोगों ने इस गांव का नाम रखा द विलेज ऑफ लाइट्स।
0: विलेज ऑफ लाइट्स यानी जगमगाता गांव। साथियों, देखा आपने कैसे एक बालक की सोच और इच्छा शक्ति ने सारी परिस्थिति बदल दी। धीरे धीरे आसपास के गांव के लोगों ने भी ऐसा ही करना शुरू किया और वो क्षेत्र दुर्घटना मुक्त हो गया। इसी बात से प्रेरणा लेकर बाद में सड़कों के किनारे तेल के लैंप पोस्ट लगने शुरू हो गए।
1: हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि यदि कोई कुछ नहीं कर रहा है तो हम भी क्यों करें। कोई करे या ना करे, यदि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं तो हमें जरूर करना चाहिए और वो भी पूरी लगन से, जैसा कि उस बालक ने किया।
0: साथियों, वो बालक जॉर्ज कोई और नहीं, उसका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन, जो आगे चलकर अमेरिका के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति बने।
1: जी हाँ साथियों, आप ये ना देखें कि कोई क्या कर रहा है या क्या कर सकता है, आप ये देखें कि आप क्या कर सकते हैं। यदि आप परिवर्तन चाहते हैं तो सबसे पहले वो परिवर्तन आप स्वयं बनिए।
2: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: एक दिन का जिक्र है, भाई मट्टू खेलते खेलते बावर्ची खाने में घुस गए। वहां दीवार पर घड़ी लगी थी, बस देखते ही उछल पड़े, सीधे चट्टू के पास भागे। इतने तेज कि बस कुछ पूछो मत। चट्टू के पास पहुंचे तो सांस फूला हुआ था, मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। मट्टू बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल कर बोले,
1: अरे चट्टू, वो दीवार पर टंगी है बावर्ची खाने में, और भाई बहुत ही खूबसूरत है।
2: आखिर क्या चीज?
1: घड़ी। घड़ी और क्या, और इसमें कुछ लटक भी तो रहा है, जाने क्या है, इधर आता है उधर जाता है, बस हिलता रहता है और ऐसे बोलता है जैसे टिक टिक टिक टिक। सुनो सुनो, आ रही आवाज।
0: चट्टू भाई ने थोड़ी देर आवाज की तरफ कान लगाए और बोले,
2: हाँ भैया, आ तो रही है।
0: इतना कहकर वो भी बावर्ची खाने की तरफ बहुत तेजी से भागे कि जरा एक नजर देख लें। वहां पहुंचकर बोले,
2: अरे भैया, ये तो पेंडुलम है।
3: पेंडुलम?
2: वही जिसे मास्टर साहब उस दिन रक्कास कह रहे थे। आहा भाई, ये तो बड़ा अच्छा झूला है।
0: चट्टू भाई झट से उस पर कूद कर चढ़ गए। अब मट्टू भाई को कहां ताप थी, उन्होंने भी एक छलांग लगाई और झूले पर सवार हो गए। चट्टू भाई बोले,
2: भैया टिल्लू खिल्लू और जग्गू मग्गू को भी बुला लाएं।
0: मट्टू बोले,
1: हाँ हाँ जरूर।
0: दोनों उतरे और थोड़ी देर में अपने साथ फौज की फौज ले आए।
1: देखो ये है वो झूला, मगर अब सूरत क्या हो। अच्छा यूं करें कि दो दो करके बारी बारी झूलें। पहले हम झूलेंगे, हमारा हक पहला है, हमी ने तो इसका पता लगाया है।
0: मगर वो चारों पांचों अकड़ने लगे।
2: वाह साहब वाह, पहले हम झूलेंगे, तुम अपनी बारी ले चुके, और जाने कितना झूल चुके हो।
0: अभी ये बहस हो रही थी कि घड़ी की सुई ठीक 12 के हिंसे पर आ गई। अचानक एक खटके के साथ छोटा दरवाजा खुला, उसमें से एक खूबसूरत सी चिड़िया बाहर आई और बहुत गुस्से से बोली,
1: हाय, ये क्या शरारत, तुमने यहाँ आने की कैसे हिम्मत की, ये मेरा घर है, भाग जाओ।
0: चूहे इस आवाज से ऐसे सहमे कि जिसका जिधर मुंह उठा गिरता पड़ता बुरी तरह भागा।
4: पढ़िए और समझिए।
0: कान लगाना,
4: ध्यान देना।
0: रक्कास,
4: नाचने वाला।
0: ताब,
4: ताकत बर्दाश्त।
0: हिंसा,
4: नंबर अदद। इन सवालों के जवाब दीजिए। सवाल नंबर एक,
0: भाई मट्टू खेलते खेलते कहां पहुंचे।
4: सवाल नंबर दो,
0: घड़ी की आवाज कैसी थी।
4: सवाल नंबर तीन,
0: घड़ी के किस हिस्से को मट्टू ने झूला बनाया था।
4: सवाल नंबर चार,
0: चट्टू टिल्लू खिल्लू और मट्टू डर कर क्यों भागे।
5: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
2: और अब सुनते हैं कार्यक्रम
0: भाई मट्टू और घड़ी।

0: है तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्षद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

श्रोताओं, हम आपको स्मरण करवा दें, आज संध्या 5:30 पर कार्यक्रम युववाणी में आज की बात के अंतर्गत चर्चा के विषय रहेंगे श्री नारायण गुरु समाधि दिवस, तथा इसी क्रम में दूसरा विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। इसी कार्यक्रम में सुनिएगा विश्व अल्जाइमर दिवस पर ये विशेष जानकारी देंगे डॉक्टर आर के चतुर्वेदी और डॉक्टर नीतू सिंह, इनसे भेंट करेंगे जितेंद्र सिंह।

संध्या 6:15 पर ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में सुनिएगा ब्रज वार्ता, ब्रज की ठाकुर सेवा में भोग राग। वार्ताकार होंगे अजय कुमार तेलंग। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 3 बजे हैं। हमारी प्रथम सभा के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। अपनी दूसरी सभा में संध्या 5:30 पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5:30 हुए हैं। हमारी दूसरी सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं की पसंद का दैनिक कार्यक्रम युव वाणी।

कार्यक्रम युवाणी सुनने वाले सभी युवा साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त अनुराग पांडे। साथियों, आज के इस युवाणी के अंक में हम संत श्री नारायण गुरु पर बात करेंगे, उनके जीवन दर्शन पर बात करेंगे। आज उनका समाधि दिवस है, तो क्या चिंतन महाराज जी ने सभी को दिया, उस चिंतन पर बात करेंगे। और संत जब भी समाज में आते हैं तो समाज में जो फैली हुई विषमताएं हैं, अंधकार है, विपरीत परिस्थितियां हैं या भागदौड़ भरी जो जीवन शैली है, उस जीवन शैली में अक्सर हम जो कई बार शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, जल्दी से सफल होना चाहते हैं और किसी भी रास्ते से, किसी भी प्रकार से हम जल्दबाजी में अपने को ऊपर लाना चाहते हैं, ऐसे में ये संत हमें बताते हैं कि हमें किस रास्ते को, किस मार्ग को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हमारे जीवन का जो मार्ग है उसे वो प्रशस्त करते हैं। बात करें श्री नारायण गुरु पर हम, तो आप केरल के दार्शनिक ऐसे संत थे जो आध्यात्मिक उन्होंने एक प्रकाश समाज को दिया, समाज में सुधार के लिए उन्होंने काम किया, जातिगत भेदभाव दूर हो समाज से, समाज में समानता आए, आत्मसम्मान और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा मिले, इन सभी दिशाओं में उन्होंने काम किया। मानव जाति के लिए एक जाति हो, एक धर्म या एक ईश्वर, तो ये कैसा विचार है जो सुनने में बड़ा आदर्शवादी लगता है, लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो जितने भी धरती पर हम मानव हैं, वस्तुतः है वो कहीं ना कहीं आनंद की खोज में है, शांति की खोज में है, लेकिन क्योंकि एक स्पर्धा है कि मैं जिस भी अपने धर्म में हूँ या मजहब में हूँ बस वही श्रेष्ठ है और दूसरे का जो संप्रदाय है, जो धर्म है, वो कहीं ना कहीं मेरे धर्म से कहीं ना कहीं छोटा है या कम है, ये भावना हमें ये बताती है कि शायद हमने ना अपना ही धर्म ढंग से समझा, अपने संप्रदाय को ढंग से समझा, ना ही हम दूसरों का धर्म या संप्रदाय ढंग से समझ पा रहे हैं। कारण ये कि जब भी ऐसे संत आते हैं तो अपनी जीवन शैली से वो जिस सामाजिक समरसता की बातें करते हैं उससे यही मालूम पड़ता है। और बात करें अगर हम नारायण गुरु जी की जीवनी पर, तो उनका तिरुवनंतपुरम के निकट चिंपाजी में इजवा परिवार में उनका जो है जन्म हुआ था और वे अपने अनुयायियों के बीच गुरुदेवन के नाम से जाने जाते थे। उनकी प्रारंभिक जीवन में संस्कृत का उन्होंने अध्ययन किया, आयुर्वेद, योग, ध्यान और वेदांत

विद्या का उनके अंदर समावेश था। आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसमें माता पिता हैं, पिता का जो नाम है मदन आसन और कुटियम्मा थे, ये इनके माता पिता। केरल में उनके इजवा समुदाय को जातिगत प्रतिबंधों का सामना उस दौर में करना पड़ता था, तो जिसमें सारी की सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी रहीं जिसमें उन्होंने उन सभी जो समाज में उस टाइम जो विषमताएं थीं, जो विसंगतियां थीं, उसको उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। और उन्होंने मलयालम, तमिल, संस्कृत का अध्ययन किया और रमन पिल्लई आसन के मार्गदर्शन में वेद, उपनिषद और संस्कृत साहित्य का आपने अध्ययन किया। और अपने जो चाचा थे उनसे उन्होंने आयुर्वेद का भी प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो जीवन में यदि हम संतों को और उनके जीवन को जब भी देखने का प्रयास करते हैं तो उसमें एक व्यापकता होती है, और वो व्यापकता समाज में आपको एक ऐसा आसमान देती है, एक ऐसा आकाश देती है जिसमें आप ये समझ पाते हैं कि आपके साथ साथ जो भी जीव हैं, चाहे वो वन्य जीव हों, पालतू हमारे घरेलू जीव हों या हम मानव हों, हम सबको एक ही आकाश में रहना है। तो हम ऐसा प्रयास करें, ऐसी सोच अपने अंदर रखें जिसमें हमारा भी समुचित विकास हो और हमारे द्वारा कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम अवश्य हो, प्रतिदिन हो, और जिसमें हमारा भी हित हो और दूसरे जो हमारे जीव हैं उनका भी उसमें हित हो। तो केवल ऐसी जीवन शैली जिसमें सिर्फ आप स्वार्थ के वशीभूत होकर के प्रकृति के जो संतुलन है उसको हम कहीं ना कहीं बिगाड़ रहे हैं, जो प्रकृति के संसाधन हैं उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं समाज में हम ऐसे विचार भी अगर कहीं ना कहीं रख रहे हैं जिससे शांति जो है वो कहीं ना कहीं दूर हो रही है, आपस में लोगों के बीच में कलह का कारण बन रहा है, तो ऐसे प्रयास हमें नहीं करने हैं। कहीं भी हम देखें, किसी भी, आजकल सोशल मीडिया भी इसमें एक अहम भूमिका निभाता है, हम सोशल मीडिया पर भी अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले कई बार ये सोचें कि हम कुछ ऐसा तो नहीं लिख रहे हैं जिससे किसी व्यक्ति के भावनाओं को ठेस पहुँचे। तो छोटी छोटी बातें हैं, हम खुद भी आनंदित रहें और ऐसी बातें करें जिससे दूसरों को भी आनंद मिले, तभी जीवन में हम कह सकते हैं कि हमने किसी संत का अपने जीवन में अनुसरण किया। सुनते हैं ये गीत।

जी हम बात कर रहे थे श्री नारायण गुरु को लेकर। आज उनका समाधि दिवस और लगभग 72 वर्ष की आयु में उन्होंने समाज में शिवगिरी संस्था, वैकोम सत्याग्रह, अद्वैत आश्रम, जी हाँ, इनका अद्वैत आश्रम जो है उन्होंने 1913 में अलवा में अद्वैत आश्रम की स्थापना की। यह ओम सहोदर्यम सर्वत्रम के सिद्धांत से जुड़ा था, जिसका अर्थ है कि भगवान की दृष्टि में सभी मनुष्य समान हैं। भगवान की दृष्टि में सभी मनुष्य समान हैं, यानी कि जीवन में समरसता हो और सभी जीवों में भी समरसता हो, कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं हो, सब एक समान हो। और जो भी हमारे ईश्वर से हमारी जुड़ी जो आस्था है, उसमें भी हम एक समान ही अपनी प्रार्थनाएं उस तक पहुंचाएं, वही कल्याण करेगा, सभी के लिए उसके दरवाजे खुले हैं, ऐसा भाव था संत श्री

0: और आइए बात करें, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये विश्व अल्जाइमर दिवस 2026 के अंतर्गत ये भेंट वार्ता। आज डॉक्टर आर के चतुर्वेदी और डॉक्टर नीतू सिंह से बातचीत कर रहे हैं जितेंद्र सिंह।
1: श्रोताओं, जैसा कि अल्जाइमर हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई एक गंभीर बीमारी है, जिसको लेकर जन जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। आज अल्जाइमर दिवस के अवसर पर हमारे साथ मौजूद हैं फिजिशियन एवं पूर्व CMS डॉक्टर आर के चतुर्वेदी जी। तो आज इस विषय को लेकर हम आपसे बात करते हैं।
2: डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। ये बीमारी आखिर है क्या और शुरुआत में इसके लक्षण किस प्रकार के रहते हैं?
3: ये दिमाग के अंदर पैदा हुई बीमारी है, जिसमें भूलने की जो समस्या है, मेमोरी लॉस जो है, उस सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेटिंग सिम्टम है। उसके अलावा अन्य जो सिम्टम है, उसके मरीज के अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, लोगों के नाम के बारे में, शहरों के बारे में, अपने काम करने की प्रक्रिया के बारे में, सब वो भूल सकता है। और अभी वो कोई सामान लेके कहीं रखा है, वो ये भूल जाएगा मैंने सामान कहाँ रखा है, और वो ढूंढता फिरेगा। सामने वाले का क्या नाम है अभी बताया, वो भूल जाएगा। धीरे धीरे ये प्रोग्रेसिव बीमारी है और लक्षण इसके बढ़ते चलते हैं।
2: ये बीमारी आखिर क्यों होती है, क्या इसके कारण रहते हैं?
3: ये ब्रेन सेल में जब एक तरह से एट्रोफिक वो शुरू हो जाती है उम्र के साथ, तो उसके डैमेज होने से ये बीमारी शुरू।
2: अगर शुरुआत में इसके लक्षण दिखाई देते हैं तो क्या इसको नियंत्रित किया जा सकता है?
3: नियंत्रण करने की संभावना अल्जाइमर की अभी वैज्ञानिकों ने इतनी खोज नहीं कर...

0: कर पाई है, लेकिन आज सोशल उसको हेल्प के तौर पे, परिवारी हेल्प के तौर पे, जिसको रिहैबिलिटेशन कहते हैं उसके तौर पे उसकी मदद की जा सके।
1: किस उम्र में अक्सर ये रोग होता है?
0: ज्यादातर कॉमनली 65 साल के ऊपर और 75 साल के और 65 के बीच में ये हो ही जाता है, और उम्र के साथ साथ इसके लक्षण बढ़ते जाते हैं।
1: आपने बताया कि ये गंभीर समस्या तो है ही, अगर इस तरह के लक्षण अगर हमारे परिवार में किसी भी बड़े बुजुर्ग को आते हैं, तो ऐसे में उसके परिवारी जन क्या करें?
0: डॉक्टरों से संपर्क करें और जितनी भी उसकी संभव हो सके, जो भी दवाइयां संभव हो सके, जिससे उसका डिटोरिएशन फास्ट नहीं हो, स्लो हो जाए, जहां है वहीं रुका रहे, इस तरह के ब्रेन के डॉक्टरों को संपर्क करें। अगर समाज और परिवार उसकी अगर मदद करे तो उसको बहुत कुछ राहत मिल सकती है। वो अपने नित्य प्रति के कार्य नहीं कर पाता है, तो उन कार्यों को करना तो बहुत जरूरी है। उसको ये नहीं पता होता है कौन सा मौसम है, वो कपड़े पहनना मौसम के अनुरूप भूल जाता है, वो कोई भी कपड़े पहन सकता है, उसे यही नहीं ज्ञान होता है मुझे किस फंक्शन में क्या कपड़े पहनने हैं, किसके यहाँ जाने के लिए मुझे क्या, उसे इन सब चीजों का कोई आवाज नहीं।
1: यानी मस्तिष्क की सोचने समझने की क्षमता खत्म होती जाती है,
0: डिसीजन लेने की प्रक्रियाओं को भूल जाता है।
1: क्या इसमें मरीज स्वयं का नाम भी भूल सकता है?
0: भूल सकता है। अल्जाइमर के लिए जो मिनिमम पॉसिबल डॉक्टरों की सलाह है वो लें, बाकी अल्जाइमर टोटली क्योरेबल डिसीज नहीं है।
1: अगर आप अपने भारत की बात करें तो भारत में अल्जाइमर को लेकर क्या स्थिति है?
0: जो 60-65 साल से ऊपर के मरीज हैं, उनमें 6-7 मिलियन पेशेंट, उसमें से 20% अल्जाइमर के केसेस हो ही जाते हैं।
1: तो आज अल्जाइमर दिवस के अवसर पर हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मेरा संदेश ये है कि किसी के यहाँ अगर अर्ली स्टेज में इस तरह के सिम्टम बुजुर्गों को हों, तो डॉक्टरों के यहाँ पहुँच के शीघ्रातिशीघ्र उसकी बीमारी की जानकारी करें कि ये कौन क्या बीमारी है और ये मेमोरी लॉस कैसे हो रहा है, तो उनको डॉक्टर गाइड करेगा कि क्या क्या और आगे सिम्टम डेवलप होंगे, अल्जाइमर में क्या क्या चीज़ें होंगी, तभी उसको ये कोई राहत मिल सकती है। मैंने जो आप लोगों को जो बात बताई है उनको आप ध्यान रखते हुए जितनी भी मदद हो सके अल्जाइमर के लोगों को जल्दी से जल्दी डायग्नोस कराने में, चिकित्सक तक पहुंचने में और उनकी पारिवारिक मदद करने में आगे आए।
1: श्रोताओं, क्योंकि अल्जाइमर एक गंभीर बीमारी है और इसमें मरीज की देखभाल के लिए बहुत सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक, अब इसी विषय को लेकर हम बात करते हैं जिला अस्पताल मथुरा के NCD विभाग से नैदानिक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर नीतू सिंह जी से।
2: आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हम अल्जाइमर दिवस को लेकर बात कर रहे हैं। सबसे पहले बताएं कि इस दिवस को मनाए जाने का क्या उद्देश्य है और इस वर्ष अल्जाइमर दिवस की क्या थीम रखी गई है?
3: हर साल हम ये दिन मनाते हैं जिससे कि लोगों में अल्जाइमर्स के बारे में अवेयरनेस बढ़े, लोग जाने कि अल्जाइमर्स क्या है, कि होने पर क्या क्या चैलेंजेस होते हैं और बहुत सारे पूर्वाग्रह इससे जुड़े हुए हैं जिनको दूर करना भी इसका उद्देश्य है, इसीलिए हम लोग ये दिवस मनाते हैं। इस बार इसकी थीम है द अर्लियर यू नो द मोर यू कैन डू डेमेंशिया डायग्नोसिस मैटर्स, मतलब कि जितनी जल्दी हम इसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं, इसकी पहचान कर सकते हैं, उतना जल्दी या उतने अच्छी तरीके से हम इसको इम्प्रूव करने में या कहें कि इसको डील करने में कर सकते हैं कि क्या इसके साथ किया जा सकता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और साथ साथ में अर्ली डायग्नोसिस इम्पॉर्टेंट, तो जितनी जल्दी डायग्नोसिस होती है उसका प्रोग्रेशन को या उसके बढ़ने की गति को हम ज्यादा अच्छी तरीके से रोक सकते हैं।
2: अल्जाइमर रोग के शुरुआती लक्षण क्या रहते हैं?
3: देखिए, अल्जाइमर एक मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है, जैसे आपने कहा। इसमें शुरुआती लक्षण भूलने से संबंधित होते हैं, जैसे कि लोग छोटी छोटी चीजें रख के भूल जाते हैं, या कोई नई चीज को सीखने में दिक्कत आती है, या रिसेंट में या अभी अभी कुछ समय पहले कुछ चीजें हुई हैं उनको याद रखने में दिक्कत आती है। शुरुआती लक्षण ये याददाश्त से संबंधित होते हैं, धीरे धीरे इनमें और भी चीजें जुड़ती जाती हैं और ये याददाश्त से संबंधित परेशानी और भी ज्यादा कठिन होती जाती है। अधिकतर ये 65 साल से अधिक जो लोग होते हैं उसमें दिखाई पड़ती है, 60 साल में यहाँ पर शुरुआती लक्षण दिखाई पड़ना शुरू हो जाते हैं।
2: क्या कम उम्र में भी अल्जाइमर का होना संभव है?
3: बिल्कुल संभव है। कुछ केसेस होते हैं जो कम उम्र में भी होते हैं जिसको अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर्स कहते हैं, कुछ केसेस में ये जल्दी भी हो जाता है।
2: अगर हम इसके कारण के बारे में बात करें तो इसके क्या कारण रहते हैं? कोई वंशानुगत कारण रहते हैं या कोई अन्य कारण रहते हैं?
3: देखिए कारण अगर कहें तो बहुत अच्छी

0: तरीके से नोन तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा कारण है आयु। जैसे जैसे एज बढ़ती है इसके होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा अनुवांशिक कारण भी होते हैं। कई बार अगर आपके घर में परिवार में किसी को डिमेंशिया या अल्जाइमर्स है तो इसके होने की संभावनाएं बाकी लोगों से उस व्यक्ति में ज्यादा है। इसके अलावा डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, डिप्रेशन है, ये सारी चीजें भी इस चीज के लिए कई बार उत्तरदायी होती हैं कि अगर ये चीजें आपके अंदर ज्यादा हैं तो यहाँ पर अल्जाइमर्स होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। ये भी देखा गया है कि महिलाओं में पुरुषों से इसके होने की संभावनाएं ज्यादा है।
1: जैसा कि आपने डिमेंशिया का अभी जिक्र किया, तो डिमेंशिया और अल्जाइमर में क्या अंतर रहता है?
0: अल्जाइमर्स में देखिए बहुत सारी चीजें इफेक्टेड होती हैं, जैसे कि सिर्फ मेमोरी से रिलेटेड या ये जो हम याददाश्त से संबंधित परेशानी नहीं है, इसके अलावा बाकी संज्ञानात्मक जो प्रक्रियाएं हैं वो भी प्रभावित होती हैं। जैसे सोच से संबंधित, सोचने की गति में कमी आती है, निर्णय लेने की क्षमता में, ध्यान देने की क्षमता में, इसके अलावा व्यक्तित्व से संबंधित बीमारियां भी, परेशानियां भी दिखाई पड़ती हैं, व्यक्तित्व भी परिवर्तित हो जाता है, साथ साथ में कई तरह की व्यवहारात्मक परेशानियां भी आती हैं। जबकि डिमेंशिया में ये पूरी तरीके से मेमोरी या याददाश्त से संबंधित बीमारी है।
1: क्या भूलने की हर समस्या को हम अल्जाइमर का लक्षण मान सकते हैं?
0: बिल्कुल भी नहीं। हम लोग रोजमर्रा की चीजें भूलते हैं, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई बार स्ट्रेस की वजह से, और देखा गया है कि कई तरह की अलग मानसिक बीमारियां भी होती हैं, जैसे डिमेंशिया है, एंग्जाइटी है, इसमें भी व्यक्ति अधिकतर भूलना शुरू कर देता है। इसके अलावा जैसे कि आपने बताया कि डिमेंशिया भी एक बीमारी है जिसके और बहुत से कारण होते हैं, तो डिमेंशिया भी एक याददाश्त से संबंधित बीमारी है, इसकी वजह से भी हो सकता है। कई तरह की मेमोरी या ये जो याददाश्त से संबंधित बीमारियां जो होती हैं वो रिवर्सिबल हैं, उनको आप ठीक कर सकते हैं। तो ये पहचानना बहुत जरूरी है कि कब ये अल्जाइमर्स है और कब ये बाकी की बीमारियों से संबंधित है।
1: अब हम इसके उपचार और निदान की बात करें तो इसका क्या प्रभावी उपचार है?
0: देखिए इसके उपचार में अगर हम कहें कि ये पूरी तरीके से ठीक हो सकता है तो ये नहीं हो सकता। ये एक प्रोग्रेसिव इलनेस है या बीमारी है जो लगातार बढ़ती जाती है, तो ये ठीक तो नहीं हो सकती, लेकिन बहुत सारे लक्षणों के आधार पर इसका इलाज किया जाता है। दोनों तरह के इलाजों या ट्रीटमेंट को रिकमेंड किया जाता है, फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल। मेडिसिन भी दी जाती है और साथ साथ में जो नॉन फार्माकोलॉजिकल यानी सपोर्टिव साइकोथेरेपी और कॉग्निटिव साइकोथेरेपी, इस तरीके की थेरेपीज भी दी जाती है।
1: तो इसमें कोई विशेष प्रकार की जीवन शैली को फॉलो करने के लिए कहा जाता है, या कुछ विशेष ऐसे व्यायाम रहते हैं या खानपान रहता है जो कि इसके लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद मिले?
0: जी बिल्कुल, देखा गया है कि अधिकतर ये जब बीमारी होती है तो लोग भूलने लग जाते हैं, ये तो होना ही है। तो ऐसी स्थिति में जो रोजमर्रा की चीजें हैं उन्हें याद नहीं रहती, तो खाने पीने में भी धीरे धीरे जब प्रोग्रेशन होता है तो वो खाना पीना ये सारी चीजें भूलना शुरू कर देते हैं। तो बहुत जरूरी है कि खान पान का ध्यान रखें। बैलेंस डाइट तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके साथ साथ बाकी बीमारियां भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो बॉडी जितना हेल्दी रहेगी, बैलेंस डाइट जितना अच्छे से दी जाएगी, वो उतने अच्छे से इस बीमारी को मैनेज किया जा सकता है। साथ साथ में व्यायाम बहुत ही उपयोगी है इस बीमारी में। योगा है, योगा से आपका अटेंशन भी इम्प्रूव होता है, तो से इस बीमारी के प्रोग्रेशन को कम किया जा सकता है। बाकी एक्सरसाइज भी काम करती है, जितना अच्छा हेल्थ रहेगा पेशेंट का, प्रोग्रेशन उतना ज्यादा कम रहेगा।
1: अगर हमारे घर में किसी बुजुर्ग को अगर अल्जाइमर की बीमारी हो जाती है तो उसमें जो परिवारी जन है क्या भूमिका रह सकती है, किस तरह से वो उनका ख्याल रखे?
0: देखिए कई बार होता है कि जो पेशेंट है वो बहुत कंफ्यूज रहता है, वो चीजें बहुत धीरे धीरे भूलने लग जाता है, और आखिरी स्थिति में ऐसा होता है कि वो पूरी तरीके से परिवारजनों पर ही निर्भर रहता है अपनी रोजमर्रा की चीजों के लिए। तो परिवारजनों के लिए बहुत जरूरी है कि वो थोड़ा पेशेंस रखें, धैर्य रखें। पेशेंट क्योंकि बहुत भूल रहा है, वो रोजमर्रा की चीजें, दवाई लेना, खाना खाना, कब उसको पानी पीना है, कब कहाँ जाना है, ये सारी चीजें भूलने लगता है। तो धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अगर आप धैर्य छोड़ेंगे तो पेशेंट भी बहुत इरिटेबल हो जाएगा, या मतलब उसको गुस्सा ज्यादा आएगा क्योंकि वो कंफ्यूज है, उसको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ऐसी स्थिति में गुस्सा करना है, एग्रेशन, और इसके साथ साथ शक करना क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है उसके साथ, आसपास के लोग उसके साथ कैसा क्या कर रहे हैं। धीरे धीरे वो रिलेटिव्स को भी भूल जाता है कि वो उसके कौन है, तो ऐसी स्थिति में कंफ्यूजन और ज्यादा हो जाता है।

0: वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है धैर्य रखना. साथ में ये भी ज़रूरी है कि क्योंकि पेशेंट धीरे धीरे अपने आप को भी भूल जाता है, वो कहाँ रहता है, आसपास के जगह के रास्ते भूल जाता है, तो कोई टैग लगाना, जैसे कोई कंगन पहना सकते हैं या कोई प्लेट उसके लगा सकते हैं, जैसे कि जिसने हमेशा उसका नाम, एड्रेस और साथ साथ में फ़ोन नंबर लिखा हो, अगर वो कहीं भूल जाए या भटक जाए तो कोई आपको इन्फॉर्म कर सके. बाकी ये भी बहुत ज़रूरी है कि आसपास की जो भी चीज़ें उनको बहुत सरल रखें, बहुत सिंपल रखें, उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ना दें.
1: जैसा कि आपने बताया कि इस बीमारी में एक भूलना समस्या है, तो क्या इसमें अगर रोगी कुछ चीज भूल गया है तो फिर वो पुनः उसकी स्मृति में आ जाती है?
0: देखिए, इसमें तीन स्टेजेस होती हैं. पहली स्टेज में समस्या बहुत कम होती है, पहचानना भी मुश्किल होता है, लैंग्वेज में भी डिफिकल्टी आने शुरू हो जाती है, लेकिन ये प्रोग्रेसिव है जैसे मैंने बताया. तो ऐसा नहीं है कि ये चीजें दोबारा से फिर ठीक हो सकती हैं. हाँ, धीरे धीरे इनकी मात्रा आप कम कर सकते हैं, इसकी प्रोग्रेशन को धीमा कर सकते हैं, लेकिन याददाश्त वापस आ जाएगी ऐसा नहीं होता है. मतलब इसका प्रोग्रेशन आगे ही बढ़ता है. पहले रिसेंट मेमोरी में प्रॉब्लम आती है, फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी जो पहले की बातें थी उसके जीवन से संबंधित, उसमें भी वो भूलना स्टार्ट कर देता है.
1: अल्जाइमर को लेकर हमारे जनपद मथुरा की किस तरह की स्थिति है?
0: देखिए, अल्जाइमर्स के पेशेंट तो रहते हैं और बहुत सारे सुविधाएं भी उनके लिए उपलब्ध हैं. कई बार हम लोग जो ओल्ड एज होम में जाते हैं तो वहां पर भी कई पेशेंट इस तरीके की बीमारी से ग्रसित रहते हैं. सबसे जरूरी है, अगर इस तरीके की कोई समस्या व्यक्ति को दिखाई पड़ती है तो न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें. ये न्यूरोलॉजी से संबंधित बीमारी है तो न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना बहुत जरूरी है, और डायग्नोसिस बहुत जरूरी है जो हमारे मथुरा जनपद में उपलब्ध है. तो इस तरीके की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, बस पेशेंट को सही जगह पहुंचना बहुत जरूरी है.
1: तो आज अल्जाइमर दिवस के अवसर पर हमारे श्रोताओं को, साथ ही उन सभी लोगों को जिनके घर में इस बीमारी से पीड़ित कोई भी बुजुर्ग हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि सबसे बड़ी जरूरी बात है कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. इसकी कोई ज्ञात कारण नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको ध्यान रखे. जैसे प्रिवेंटिव मेजर क्या होते हैं इसके, अच्छे से एक्सरसाइज करें, योगा करें, अपने दिमागी जो भी एक्सरसाइजेस हैं उनको भी करते रहें, लोगों से मिलना जुलना, सोशल कनेक्टेडनेस, ये बहुत ज़रूरी है. ये एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है अल्जाइमर्स का. आप अपने आप को बिजी रखें, क्योंकि ओल्ड एज में, आप रिटायरमेंट में के एज में कई बार पेशेंट या व्यक्ति बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता, वो अकेलेपन का शिकार हो जाता है. ऐसा ज़रूरी है कि आप अपनी सोसाइटी से जुड़े रहें किसी मीनिंगफुल तरीके से. ये एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है. अगर कोई भी कोमॉर्बिड प्रॉब्लम, जैसे कि कारणों में हमने बताया डिप्रेशन है या हाई ब्लड प्रेशर है या हाई कोलेस्ट्रॉल है, कोई भी किसी भी तरीके की आपको बीमारी है, तो उसका इलाज पूरी तरीके से करवाते रहें. अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है, साथ साथ में अच्छा खान पान रखना, लाइफस्टाइल रखना. खान पान में जो ड्राई फ्रूट्स हैं या हरी शाक सब्जियाँ हैं, ये सारी चीज़ों को इन्वॉल्व रखना, ये बहुत ज़रूरी है. तो प्रिवेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. साथ में ऐसे रोगी हैं और उनके जो केयर गिवर्स हैं, उनसे तो मैंने यही बोलना चाहूँगी कि धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है ऐसे पेशेंट के साथ, क्योंकि ये केयर गिवर के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन होता है. लेकिन जो रोगी है वो जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा है. बर्डन को थोड़ा सा सभी लोग, जो भी परिवारजन है, वो उसको अपनी अपनी ड्यूटीज को बांटें, जिससे कि एक ही व्यक्ति पर बर्डन ना पड़े और जो व्यक्ति है जो अल्जाइमर से ग्रसित है उसका उपचार या उसका मैनेजमेंट बेटर हो पाए.
2: अभी आप सुन रहे थे विश्व अल्जाइमर दिवस पर ये भेंटवार्ता. आज के विशेषज्ञ थे डॉक्टर आर के चतुर्वेदी और डॉक्टर नीतू सिंह. आपसे बातचीत कर रहे थे जितेंद्र सिंह. इसी के साथ आज का युवाणी कार्यक्रम अब संपन्न होता है. दीजिए इजाजत अपने रेडियो दोस्त अनुराग पांडे को. नमस्कार.

युवा साथी सुन रहे थे अभी अपना कार्यक्रम युववाणी FM 102.2 MHz पर, आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयदशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड को होने वाले भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होंगे। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
1: This strategic partnership,
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, किसानों, हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगरों को बहुत लाभ होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 2,00,000 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खुलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में एक्यूरेटेड इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है। नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय औषध सूची का 7वां संस्करण जारी करते हुए उन्होंने आज ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए इस समय 1,100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं। दूर संचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, पहचान के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा है। विभाग ने कहा है कि एक दंडनीय अपराध है, इसमें 3 वर्ष तक का कारावास और 50,00,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने और फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदने की सलाह दी है। संचार मंत्रालय ने लोगों को संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करने का परामर्श दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि महानदी जल विवाद को बातचीत से शीघ्र ही सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और केंद्र में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में है। वर्ष 2018 से महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल के पास लंबित इस मामले को अब केंद्रीय जल आयोग को सौंप दिया गया है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने आज नई दिल्ली में 15वां स्थापना दिवस मनाया। समारोह को संबोधित करते हुए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने भरोसा जताया कि भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने में निगम की भूमिका सदैव अग्रणी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। वे दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के भाई थे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि समाज की सेवा के लिए उनके प्रयासों को आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 564 अंक की बढ़त के साथ 74,859 पर बंद हुआ। निफ्टी 68 अंक बढ़कर 23,414 पर आ गया। जापान एशियाई खेलों में निशानेबाजी में आज भारत ने 3 पदक जीते।

0: 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लों ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किए। वहीं इसी प्रतियोगिता की टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर में यानी कि 6:15 पर श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक, जिसमें आज आप सुनेंगे अजय कुमार तैलंग से ब्रजवार्ता, ब्रज की ठाकुर सेवा में भोग राग। इस विषय पर रहेगी आज ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में ये ब्रजवार्ता। संध्या 6:30 पर आप सुनेंगे भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन।

किसान भाई और बहनें सुनेंगे अपना कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। कार्यक्रम लेके आएंगे आपके बीच वीरेंद्र सिंह, जिसमें आज चर्चा रहेगी एआई से खेती को आसान कैसे बनाएं। इस विषय पर स्वच्छता ही सेवा है मिशन, इस पर ही रहेगी चर्चा। साथ ही आज आप सुनेंगे शंभु दयाल सारस्वत से वार्ता, जैविक खेती, खेत की सेहत, किसान की खुशहाली। इस विषय पर ये वार्ता शंभु दयाल सारस्वत से। साथ ही लेंगे आनंद कार्यक्रम में ब्रज लोकगीतों का।

7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 7:31 पर श्रोता सुनेंगे अपनी फरमाइश का फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। जी हाँ, आप सुन सकेंगे अपनी फरमाइश के फिल्मी नगमे। करेंगे व्हाट्सएप, हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा आज 9412225 इस पर करेंगे आप व्हाट्सएप और सुनेंगे अपनी फरमाइश के फिल्मी नगमे कार्यक्रम शाम सुहानी में। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे विशेष श्रृंखला कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा। ये कार्यक्रम सुना जा सकेगा रात्रि 8:35 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। फिल्म संगीत का आनंद एक बार फिर से लेंगे श्रोता रात्रि 9:15 पर सुहाने तराने कार्यक्रम में। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे सत्यनारायण केशोरिया की लिखी नौटंकी स्वामी हरदास जी, प्रस्तुति TN शर्मा की रहेगी।

अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वर में देशगान FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक। ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में आज आप सुनने जा रहे हैं अजय कुमार तैलंग से ब्रजवार्ता, ब्रज की ठाकुर सेवा में भोग राग।

ब्रज की ठाकुर सेवा में भोग राग को महत्व। ठाकुर जी ब्रज मंडल में हमारे संप्रदाय के अनुसार ब्रज में ठाकुर जी की सेवा में भोग राग को नित्य क्रम होवे है। बल्लभ कुल संप्रदाय और ब्रज मंडल में ठाकुर जी

श्रृंगार ग्वाल और राजभोग की सेवा ठाकुर जी की करी जावे है। तत्पश्चात सायंकाल उत्थापन भोग संध्या आरती और सायंकाल शयन आरती को क्रम होवे। प्रभु की नित्य प्रतिदिन सेवा में अलग अलग दर्शन में ठाकुर जी को विभिन्न तरह के वस्त्र धराए जावे हैं, विभिन्न तरह की सामग्री भोग राग के द्वारा उनको आरोग्याई जावे है। ब्रज में सखा भाव की सेवा से प्रभु को नित्य प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के भोजन इत्यादि आरोग्याए जावे हैं। प्रथम मंगला में ठाकुर जी को घंटा ध्वनि करके शंखनाद करके उठाया जावे है। तत्पश्चात ठाकुर जी को मंगला में माखन मिश्री दूध और मंगल वक्त के ठौर भोग में आवे हैं। ता पीछे प्रभु के श्रृंगार में बेसन के नग थपड़ी आदि को भोग आवे है। दोपहर साय ठाकुर जी की क्रम अनुसार तृतीय दर्शन में ग्वाल भाव में प्रभु के मठरी मोहनतार पूरी साग को भोग आवे है। ठाकुर जी के प्रातकाल के चौथे दर्शन में राजभोग में प्रभु को राजा भाव से समस्त भोजन सकड़ी में दाल चावल खीर बांसौदी दही बड़ा रोटी पापड़ पूरी खाशा पूरी और विभिन्न तरह के साग प्रभु को भोग धराय जावे है। ठाकुर जी को प्रात कलेऊ से खीर खाण माखन मिश्री भी धरयो जावे है। हमारे यहाँ कहवे हैं कलेऊ कीजे नंद लाल खीर खाण और माखन मिश्री लीजे परम रसाल। ओठुओ दूध संग थोरी को तुम्हो देहू गोपाल बैनी भड़े होए बलकीसी पीजे मेरे बाल गोपाल। ओहो बारी या बदन कमल पर चुम्बन देहू गाल गोविंद प्रभु कलेऊ कियो जननी बचन प्रतिपाल। सांझ को प्रभु को ब्यारू कराई जामे ब्यारू में कहवे हैं कि ब्यारू करत है घनश्याम। ब्यारू करत है घनश्याम मधुमेवा पकवान मिठाई पिस्ता दांख बदाम। धूत दूध भात खोवा वासौदी ले आई ब्रजधाम आसकरण प्रभु मोहन नागर अंग अंग अभिराम। दूध पियो मन मोहन प्यारे बलबल जाऊं गेहूं जिन कीजे कमल नैन अखियन के तारे। कनक कटोरा भर पीजे सुख दीजे संग लेहूं बलभद्र भैया रे परमानंद मोही गोधन की सो उठता ही प्रात करो गैया रे। ब्रज में प्रभु की बाल स्वरूप की सेवा को बड़ा भारी महत्व बताया गया है। यहाँ प्रभु को नित्य प्रतिदिन लीला भाव की सेवा करी जावे है। हमारे बल्लभ संप्रदाय में प्रभु को बाल सेवा से भोग राग कराए जावे है। कहवे हैं राजभोग में माँ यशोदा अपने गोपाल को याद करे हैं और उनको राजभोग धरावे हैं। कहवे हैं देखो री गोपाल कहाँ गयो है खेलत कहो जाए बाबा तो ही बोलत। भोजन को नंदराय तुमहु भोजन कर लेउ आए जब माता की जानी प्रीत आए गए गोपाल समीप। बैठे आए कनक आसन पर नंद राय पकरे कर सो कर कनक बरन झारी जमुना जल भर दैनी जा समुति मन उज्ज्वल। पनवारो जोरो विस्तार थापर धारो कनक को थार बेला मोटे छोटे धरे चमचा रत्न जड़ित तहा खरे। अगर धूप कीनो ताठोर हित सौ प्रभु जी लीनो कोर अधि सुगंध चावर को भात आन धरे हो जसुमती बात। ठांडी मूंग और दार बनाई ताके पास कढ़ी ले आई माँ यशोदा भाव में प्रभु को राजभोग धरावे। ता पीछे झारी से प्रभु को आचमन करावे। राजभोग में ठाकुर जी को

0: सकड़ी भाव की सेवा से चांदी के थार में ठाकुर जी को दाल चावल पूड़ी साग बैठ के अपने हाथ से भोजन करावे हैं। तत्पश्चात ठाकुर जी को आचमन करावे, मुख मार्जन करावे, बीड़ा धरावे, पान को बीड़ा होवे तो ठाकुर जी को पान को बीड़ा धरावे हैं। सायंकाल प्रभु को उत्थापन करके आवे सो प्रभु की संध्या आरती को क्रम होवे है। कहवे हैं संध्या भोग है जाको नाम, सो तो लीनो वाई ठाम, नंद भुवन में ठाड़े आए, प्रभु दित भई जा सुमिति माए। अति हित सो आरती उतारी, कर्मे लिए कनक की धारी, भीतर भवन पधारे लाल, आए जुरी सब ब्रजी की बाल। कोहे बड़े सिंगार करावे, कोहू तेल फुलेल लगावे, कोहू गर्दन मंजन करे, विविध मनोरथ मन में धरे। कोहू जल के स्नान करावे, अंग बसन करी अति सुख पावे, इच्छा भोजन करी सुख पायो, तब रानी आचमन करायो। अति सुगंध बीरी मुख धरी, पुष्पमाल श्री कंठ धरी, करी आरती श्री मुख देखयो, अपनो जन्म सफल कर लेवियो। जा ठाकुर जी की सेवा में जो नित्य प्रतिदिन अपनी ठाकुर की बाल सेवा करे, उनको ब्रजमंडल में भोगराग की सेवा से जीवन उनको सफल होवे है। ब्रज में जाको बड़ो भारी महत्व है, ठाकुर जी की बाल सेवा को राग के अनुसार ही ठाकुर जी को भोजन आदि कराव जावे है। ठाकुर जी के सभी भोजन राग में कीर्तन आदि भी संग में होवे है, जासु ठाकुर जी की सेवा में कोई अड़चन नहीं आवे है। ठाकुर जी की सेवा में भोग राग को बड़ो भारी महत्व बताया गया है। ठाकुर जी के पल पल में हमसे दोष होवे हैं, ठाकुर जी को बार बार आज्ञा लेके उसको क्षमा प्रार्थी कहो जावे है। ठाकुर जी के ब्रज में ठाकुर जी की बाल सेवा के रूप में या प्रकार यह सेवा भोग राग को महत्व होवे है। ग्वाल बाल के संग में नित्य प्रतिदिन ठाकुर जी विहार करे हैं और विहार करवे से ठाकुर जी जो है चारों ओर आनंद फैलावे हैं। या प्रकार जो नर नारी ठाकुर जी की सेवा में भोग राग की सेवा के अनुसार नित्य प्रतिदिन कार्य करे हैं, उनको जीवन सफल होवे है। यही प्रकार भोग राग को होवे है। जय श्री कृष्ण।
1: भैया अभी आपने सुनी ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम के अंतर्गत अजय कुमार तैलंग पैते जी ब्रजवार्ता, ब्रज की ठाकुर सेवा में भोग राग। यही के साथ आज को ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम अब संपन्न हुए हैं। सभी भैया बहनों को हमारी जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए भक्ति पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन।

मधुश्री विजय प्रकाश को अभी आपने सुना फिल्म स्वदेश में। और आइए सुनते हैं दिलराज कौर। जी हाँ, दिलराज कौर और साथियों को कल हमारा है इस फिल्म में, इस गीत के अंतर्गत।

नरेंद्र चंचल, मोहम्मद रफ़ी और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म आशा में। गीत आनंद बख्शी का था और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और आइए सुने संध्या वंदन कार्यक्रम में यह अगला गीत, जिसे लिया फिल्म मिस मैरी से। आवाज़ इस गीत में मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को फिल्म मिस मैरी में। गीत राजेंद्र कृष्ण का था, संगीत हेमंत कुमार का। इसी के साथ भक्तिपरक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

लीजिए सुनिए, किसान भाई और बहनों का कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम लेके आ रहे हैं आपके बीच वीरेंद्र सिंह।

0: भैया आजकल देखो ऐसी ऐसी तकनीक चल गई हैं कि अब हमारे किसान भैया जाते अछूते ना रहे। और फिर देखो जी सुविधा कोई होए तो वो हमें हर क्षेत्र में हर महकमा में प्रयोग करनी चाहिए। अब बात कर लें जैसे एआई की। एआई माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, के हो तो कृत्रिम बुद्धिमान, यानी कृत्रिम बुद्धि जो होएगा, यानी एक तो बनाई इंसान की बुद्धि परमात्मा ने, और एक इंसान ने मान ली कि व्यक्ति ने खुद एक ऐसी बुद्धि की रचना कर दी जो कि काहू के बिना बताए बिना कहे ही अपने आप समझ के और कैसे हमें चलना है, कैसे वा को कहो मशीन को प्रयोग करना है। या मान लो कि खेती की बात करें, हम तो खेती बाड़ी की बात करेंगे भैया, तो जैसे कि हमें अपनी फसल की सुरक्षा करनी होए या हमें काम करे भाई मजदूर न कि जो रोबोट आमे काए बने बनाए कंप्यूटर थे और उनमें बुद्धि काम करे उनकी कृत्रिम बारी वो होए, या जो मान लो कि आपके जो फार्म हाउस है बाकी रखवाली करे वाले गार्ड होए, या जो कह लो कि तुम्हारे खेत में जो नराई गुड़ाई या फसल लगाए वो या फसल काट वो। भैया आजकल ज़्यादातर विदेशन में तो एआई ते ही खेती है रही है, हमारे यहाँ ले आएंगे तो बड़ा अचम्भ होएगो। देखो दो रोबोट के आदमी 10 आदमी के बराबर काम करें, क्यों वे सोलर उड़ जाते तो भैया चार्ज होते रहे, न उनने भोजन कर भी जानो न पानी पी भी जानो न सैतानो न काउदे बातचीत करनी और न कोई धूम्रपान या कछु करनो। हमारो मजदूर का करेगो 10 मिनट ना है तो पानी पीवे क्यों बैठे रहेगो, और क्यों तो भोजन करेगो आधा घंटा में फिर आराम करेगो सहतावेगो। लेकिन आजकल जो एआई के द्वारा बनाए गए जो रोबोट चल रहे हैं भैया खेती में बड़ी धुआंधार काम कर रहे हैं। हमने ऐसा देखो है कि धान लगा रहे हैं, फसल काट रहे हैं, निराई कर रहे हैं, पानी लगा रहे हैं, और तो क्यों तुम्हारी ट्यूबवेल है जो तुम्हारी ट्यूबवेल लग रही है बाय जाके स्टार्ट करा में और खेत की निगरानी करके जब खेत भर जाए भाई बंद करा में। किसान घर सोए रहो आराम से भाई नुईना देख रहो खेती में कौन देख रहो कौन ना देख रहो। और जो रोबोट एआई के द्वारा काम कर रहो वो सब 24 घंटा निगरानी खेत की रख रहो, न वह सोनो न वह का डल लगे रहो न कहा यूं कि भाई अंधेरो है को चलो घर को। तो कहवे को भाव जे भैया एआई ते खेती आसान है गई है, तो चौन हम या एआई को प्रयोग करके अपनी खेती बाड़ी में भाई या को प्रयोग करें। तो जी तो चर्चा हमने कछु करी एआई ते खेती कैसे आसान बनेगी। अब बात करेंगे भैया जैविक खेती की, चूंकि जैविक खेती एक बहुत ही कारगर खेती है। हमने ज्यादातर कहा करे हो आजकल ले लयो उर्वरकन को प्रयोग ज्यादा कर दो और कीटनाशन को प्रयोग कर दो, बातें न सिर्फ फसल खराब हो रही है बल्कि जो हमारी जमीन है बाकी उर्वरा शक्ति दिनों दिन खत्म होती चली जा रही। भैया अब हमें क्या करना है, वही ढर्रा पे आनो जो पहले ते हो चले वा रोका है भाई हमारे तुम्हारे बड़े बूढ़े लयो गोबर और गड्ढे में डाल दो, वहां में पानी डरत रहे और सड़े गले कूड़े करकट आमत रहे चौमासी में और वाको बन जाओ बिल्कुल कारो कारो, एक तरह को ऐसी जोर को खाद बने हो बाय भर भर के जब हम बुग्गी में गाड़ी ने में ले ले जाके डारे खेतन में तो कितनी अपट पैदा होती। भैया तो जय विषय पे आज एक वार्ता आपको सुनवा में समूह दयाल सारस्वत जानकारी देंगे भैया कि जैविक खेती खेत की सेहत और किसान किसान की खुशहाली। सुनो भैया
1: किसान भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसका सीधा संबंध हमारे खेत, हमारी मिट्टी और हमारी सेहत से है। वो विषय है जैविक खेती। अब आप कहेंगे कि जैविक खेती की बात तो आजकल हर जगह होती है, लेकिन भाई असली सवाल ये है कि जैविक खेती है क्या, इसे शुरू कैसे करें, इसमें फ़ायदा कितना है और सावधानी किन किन बातों की रखनी चाहिए, तो आइए आज इसी पर हम चर्चा करते हैं। किसान भाइयों, जरा अपने खेत की मिट्टी को याद कीजिए। पहले हमारे बुजुर्ग खेत में क्या डालते थे, गोबर की खाद, सड़ी गली घास पत्तियाँ, हरी खाद और घर खेत से निकलने

वाला जैविक कचरा उसी से खाद बनती थी और खेत में जाती थी। समय बदला, खेत में नई नई तकनीक आई, रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल बढ़ा, इनसे फसल को फायदा भी हुआ और उत्पादन भी बढ़ा। लेकिन लगातार और जरूरत से ज़्यादा रासायनिक खाद और दवाओं के इस्तेमाल से कई जगह मिट्टी की सेहत पर असर पड़ने लगा, खेती की लागत भी बढ़ी। ऐसे में जैविक खेती की तरफ फिर से ध्यान गया। जैविक खेती का मतलब क्या है भाइयों और बहनों? जैविक खेती को बहुत मुश्किल मत समझिए। सीधी भाषा में कहें तो जैविक खेती का मतलब है खेती में प्राकृतिक और जैविक चीज़ों का फायदा ज़्यादा से ज़्यादा सही इस्तेमाल करना और रासायनिक चीज़ों पर निर्भरता धीरे धीरे कम करना। इसके लिए गोबर की सड़ी हुई खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद और फसल के बचे हुए अवशेषों का इस्तेमाल किया जा सकता है। कीड़े और रोग लगने पर भी पहले प्राकृतिक और जैविक उपायों को अपनाने की कोशिश की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये सब सुनने में तो अच्छा है, लेकिन शुरू कहाँ से करें? तो इसकी शुरुआत बहुत छोटे कदम से कीजिए। पूरी ज़मीन पर एक साथ बदलाव न करें। मान लीजिए आपके पास 10 बीघा ज़मीन है, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप अगले ही दिन पूरी 10 बीघा ज़मीन को जैविक कर लें। पहले एक छोटे से हिस्से में करके देखिए। मान लीजिए आप 1 बीघा या 2 बीघा में जैविक तरीके से खेती की, उसमें कितना खर्चा आया, कितनी फसल हुई, मिट्टी कैसी रही, इन बातों पर ध्यान रखिए। नतीजा अच्छा लगे तो अगले साल थोड़ा और क्षेत्र बढ़ाइए, यानी पहले प्रयोग फिर विस्तार। ये तरीका किसान भाई के लिए ज़्यादा सुरक्षित रहता है। सबसे पहले मिट्टी को समझिए। किसान भाइयों, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जांच करवाता है, ठीक इसी तरह खेत की भी जांच जरूरी है। मिट्टी की जांच करवाइए, इससे पता चलता है कि आपके खेत में किस पोषक तत्व की कमी है और किसकी ज़रूरत है। फिर उसी हिसाब से खाद और दूसरे पोषक तत्वों का इस्तेमाल किया जा सकता है। सिर्फ पड़ोसी के खेत में जो डाला जा रहा है वही अपने खेत में भी डाल देना, ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि हर खेत की मिट्टी एक जैसी नहीं होती। गोबर को कचरा न समझें। अब बात करते हैं गोबर की। हमारे गांव में पशु हैं, पशुओं से गोबर मिलता है। किसान भाई, इस गोबर को बेकार मत समझिए, इसी से अच्छी जैविक खाद बनाई जा सकती है। ध्यान रखिए, ताज़ा गोबर सीधे खेत में डालने के बजाय अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद बनाकर इस्तेमाल करना अच्छा रहता है। गोबर के साथ खेत की सूखी घास, पत्तियाँ और फसल के अवशेष मिलाकर कंपोस्ट भी बनाई जा सकती है। इससे खेत में उपलब्ध चीज का खेत में ही उपयोग हो जाता है। वर्मी कंपोस्ट भी बना सकते हैं। किसान भाइयों, आपने केंचुआ खाद यानी वर्मी कंपोस्ट का नाम भी सुना होगा। केंचुए की मदद से जैविक पदार्थों से खाद तैयार की जाती है। अगर सही तरीके से तैयार की जाए तो ये अच्छी जैविक खाद बन सकती है, क्योंकि खेती में अंदाजे से नहीं सही जानकारी के साथ काम करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब बात कीड़ों की। किसान भाइयों, खेती में सबसे बड़ी चिंता होती है कीड़ा लग गया तो क्या करें। जैविक खेती में भी कीट रोग आते हैं। फर्क इतना है कि उन्हें रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए प्राकृतिक और जैविक तरीकों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, जैसे नीम आधारित घोल या स्वीकृत जैविक कीटनाशकों का इस्तेमाल। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, खेत में कीड़ा दिखाई दिया और तुरंत दवा छिड़क दी, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। पहले देखिए कि कीड़ा कौन सा है, क्या वो फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, कितने संख्या में है, यानी पहले पहचानिए फिर उपचार, फसल बदल बदल कर लगाइए। एक और आसान तरीका है फसल चक्र, मतलब एक ही खेत में हर साल एक ही फसल लगाने के बजाय फसल बदलते रहिए। जैसे साल में गेहूं है तो अगले मौसम में दलहन या दूसरी उपयुक्त फसल ली जा सकती है। फसल बदलने से मिट्टी की सेहत बनाए रखने में मदद मिलती है और कुछ कीट तथा रोगी की सहायता को भी कम किया जा सकता है। जैविक खेती में धैर्य जरूरी है। किसान भाइयों, यहाँ एक बात साफ साफ समझना बहुत ज़रूरी है, जैविक खेती कोई जादू नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज जैविक खाद डाली और कल से खेत की पैदावार दोगुनी हो गई। शुरुआत में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, मिट्टी को प्राकृतिक तरीके से संतुलित होने में समय लग सकता है, इसलिए किसान को धैर्य रखें और धीरे धीरे बदलाव करें। और सबसे बड़ी बात, अपनी पूरी खेती के साथ जोखिम में न डालें। पहले थोड़ी ज़मीन पर प्रयोग करें। जैविक खेती से फायदा तभी जब बाजार भी हो। अब एक बहुत ज़रूरी बात है, किसान भाई मेहनत करके अच्छी फसल पैदा कर लें, लेकिन उसे बेचने के लिए बाजार ही न मिले तो फ़ायदा क्या? इसलिए अगर आप जैविक फसल पैदा करने की सोच रहे हैं तो पहले बाजार की जानकारी ज़रूर ले लें।
आपके आसपास कौन खरीदता है।

0: किस भाव पर खरीदता है, क्या जैविक होने का प्रमाण चाहिए, इन बातों को पहले समझ लें। सिर्फ ये सोचकर जैविक फसल का भाव हमेशा ज़्यादा मिलेगा, पूरी ज़मीन पर तुरंत जैविक खेती शुरू कर देना ठीक नहीं है। पहले बाजार समझिए, फिर खेती की योजना बनाइए। किसान भाई, खेत को सिर्फ ज़मीन मत समझिए। किसान भाई और बहनों, हमारा खेत सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, यही खेत हमारे परिवार का सहारा है, यही खेत हमें अनाज देता है, यही खेत हमारे बच्चों का भविष्य बनाता है। इसलिए खेत की मिट्टी को स्वस्थ बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी भी और ज़रूरत भी। फसल काटने के बाद खेत में बचे अवशेषों को जलाने के बजाय उनका सही इस्तेमाल किया जा सकता है। गोबर को खाद में बदला जा सकता है, खेत की मिट्टी की जांच कराई जा सकती है, फसल चक्र अपनाया जा सकता है और ज़रूरत के हिसाब से ही खाद और दवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। यही छोटे छोटे कदम आगे चलकर खेती को टिकाऊ बनाने में मदद करते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप जैविक खेती की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो धीरे धीरे चलिए, लेकिन सही दिशा में चलिए। पहले मिट्टी की जांच कराइए, छोटे खेत या छोटे हिस्से में प्रयोग कीजिए, गोबर और खेत के जैविक अवशेषों से खाद तैयार कीजिए, फसल और कीटों की नियमित निगरानी कीजिए और फसल तैयार करने से पहले उसके बाजार की जानकारी जरूर जुटाइए। किसान भाइयों और बहनों, अंत में बस इतना ही कहना है कि जैविक खेती करने से जमीन का स्वास्थ्य ही नहीं संभलेगा, बल्कि हम स्वस्थ पोषण हेतु गुणवत्तापूर्ण अनाज, दलहन व साग सब्जी भी मिलेगी। मिट्टी स्वस्थ रहेगी तो फसल स्वस्थ होगी, फसल अच्छी होगी तो किसान खुशहाल होगा, किसान खुशहाल होगा तो हमारा गांव और हमारा देश खुशहाल और मजबूत होगा।
1: समूह दयाल सारस्वत अभी जानकारी दे रहे भैया कि जैविक खेती खेत की सेहत, किसान की खुशहाली। उम्मीद है कि हमारे किसान भैया जाते जरूर सीख लेंगे। भैया अगले क्रम में आपको एक लोकगीत सुनवा दें, मैं तो पूजूं गौरी गणेश, शालिनी के सुर में गायब है।

0: मैं तो पूजूं गौरी गणेश। शालिनी के सुर में अभी आप ब्रज लोकगीत को आनंद ले रहे थे भैया। देखो भैया, हम जो पशु पालन कर रहे हैं तो वहाँ में जो है कभी कभी ऐसे ऐसे रोग आ जाएं कि हमें सलाइनाएं पड़े, और हम क्या करें, लयो जो कुछ नॉन मेडिसिन जाकर उन्हें बतायो सुई दे दो, पर वो जो रोग है वाकी दवा ना लग पावे और पशु रोग ते ग्रसित ही रह जाए। तो ऐसी एक डिस्टोकिया है जो हमारे पशुओं में आ जाए। अब जी डिस्टोकिया क्या है या के बारे में डॉक्टर विकास सचान जानकारी देंगे, और इनसे भेंट कर रहे हैं दिलीप कुमार भैया। सुनो, डिस्कोसिया से बचाओ।
1: भैया राम राम। हम हैं वेटनरी विश्वविद्यालय में और हमारे संग हैं डॉक्टर विकास सचान जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यहाँ। और डिस्टोकिया एक समस्या हो यानी बच्चा, और यह समस्या के चलते किसान भैया को बड़ी समस्या को सामना करना पड़े, तो ये समस्या क्यों हो, कहा या के बचाव के उपाय है और कहा समाधान है, यह विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर।
2: तो किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। और इस समय ये सितंबर अक्टूबर के महीने पीक सीजन माने जाते हैं, जब जानवर ज्यादातर ब्याते हैं, क्योंकि सर्दियों में जो भैंसे हैं वो गर्मी पे आती हैं और प्रेग्नेंट कराते हैं लोग नवंबर दिसंबर में जनवरी में, तो इस सीजन में बच्चे पैदा होने का सीजन चल रहा है। डिस्टोकिया में बात यह कि कई सारे कारण रहते हैं। डिस्टोकिया का सामान्य शब्दों में अर्थ यह है कि प्रसूति करते वक्त बच्चे का फंस जाना, या कठिन प्रसव बोल सकते हो उसको, कि जैसे जानवर अपने आप बच्चा बाहर नहीं निकाल पाता है, पशु का बच्चे का एक आधा पैर या सर या इस तरह कुछ चीजें बाहर आ गई लेकिन पूरा बच्चा बाहर नहीं आ पाता, तो उसमें फिर हमें पशु चिकित्सक की मदद लेनी पड़ती है। और उसके कारण भी कई सारे हो सकते हैं, जैसे आजकल यहाँ पर हम लोग विश्वविद्यालय में अपने देख रहे हैं टॉर्जन के केसेस बहुत सारे आ रहे हैं, जिसमें बच्चेदानी घूम जाती हो पशुओं के उठने बैठने लौटने से। कई कारण और भी रहते हैं जिसकी वजह से बच्चेदानी घूम जाती है और बच्चेदानी का रास्ता बंद हो जाता है और समय पूरा होने के बाद भी बच्चा बाहर नहीं आ पा रहा है। उसके अलावा कभी कभी बच्चे का समय पूरा हो जा रहा है लेकिन बच्चा चूंकि सही स्थिति में ना होने के कारण ये कठिन प्रसव की बात आ जाती है। और ज्यादातर जो लोकल में बहुत सारे क्वैक्स काम कर रहे हैं, लोकल वेटनेरियन काम कर रहे हैं, जिनको हो सकता है बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, पशुपालकों पे उनकी पहुंच सबसे अच्छी रहती है, और वो जैसे ही पशुपालक के पास जाते हैं वो हाथ डाल करके बच्चे को अपने तरीके से खींचते हैं और उसको निकालते हैं। जबकि सही बात तो ये कि ये कोई ताकत का काम नहीं है, ये दिमाग का काम है दिलीप जी। और एक्चुअली में वो बच्चे को बाहर निकालने का भी हमें ये देखना पड़ता है कि बच्चे का कौन सा हिस्सा फंसा हुआ है, किसकी वजह से बच्चा नहीं आ रहा, भैंस में कुछ प्रॉब्लम है या बच्चे बड़ा हो गया है, बच्चे का साइज बड़ा है या बच्चे के हाथ पैर कुछ टेढ़े मेढ़े इस तरह से फंसे हुए हैं, तो उन चीजों को ठीक करने के बाद हम उन बच्चों को बाहर निकालते हैं। और अगर इस चीज में देरी हो जाती है तो जान माल की नुकसान होता है, क्योंकि भैंस मरेगी, बच्चा अंदर पेट के अंदर अगर मर जाएगा समय से बाहर नहीं आएगा तो भैंस मरेगी, बच्चे की वजह से जो भी मरे बच्चे की वजह से जो भी आसान भाषा में सड़ांध कह सकते हैं या जहर बनता है, टॉक्सिन्स बनते हैं, वो फिर भैंस के पूरे शरीर में फैलते हैं और धीरे धीरे फिर भैंस की स्थिति भी खराब होने लगती है, फिर दवाइयां कराने पड़ती है और बचने के भी चांस बहुत कम रहते हैं। हमें तो कई केसेस इतने पुराने आ जाते हैं हमारे पास कि हमें फिर ऑपरेशन करके बच्चे को निकालना पड़ता है, क्योंकि हमारी प्राथमिकता भैंस या गाय को बचाना रहता है। तो कठिन प्रसव के लिए सामान्य शब्दों में मेरा सुझाव यह है कि अगर पशु को बच्चा देने में परेशानी हो रही है, 1 या 2 घंटे हो गए हैं बच्चा नहीं दे पा रही है, तो किसी पंजीकृत पशु चिकित्सक को आप अपने पास बुलाएं और तुरंत ही अपने पशु को दिखाएं, जिससे वो वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करते हुए बच्चे को निकाल सकें, जिससे आपको जिंदा बच्चा मिल सके और दूध भी बना रहे भैंस के नीचे और जिससे आपको अधिक से अधिक आर्थिक लाभ पहुंचा।
1: तो डॉक्टर, डिस्टोकिया की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो या में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है या की वजह का है, बच्चा टेढ़ो मेढ़ो क्यों हो, जैसे हम लोग मनुष्य में देखें तो महिला पहले चाकी चलाओ करेंगी तो डिलीवरी यूं ही है जाएगी। अब हर मतलब जो डिलीवरी है रही है वो ऑपरेशन से, बिना ऑपरेशन की कोई डिलीवरी है ही ना रही। तो पशु में जो पशु जंगल में चरवे जा रहे हैं उनकी डिलीवरी में और जो खूंटा पे बंधे हुए हैं उनकी डिलीवरी में कोई अंतर है, खान पान की वजह से हो या कौन से कारण है जिनकी वजह से डिस्टोकिया की समस्या पैदा हो?
2: इस तरह से हम बिल्कुल इसको वर्गीकृत तो नहीं कर सकते हैं कि जो जंगल में चरने जा रहे हैं या खूंटे पे बंधा हुआ है तो दोनों में किसमें बच्चा देने में परेशानी नहीं होगी। पुराने जमाने में खरीद फरोख्त तो थोड़ा कम होती थी, पशु जंगल में चरने जाते थे तो उनकी मसल्स की टोनोसिटी मेंटेन रहती थी, खान पान का भी ध्यान रखा जाता था, लेकिन आजकल पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स इन सारी चीजों का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है जो हमारी मिट्टी में मिले हुए हैं और वो पशुओं के अंदर भी जाते हैं। खासकर जब पशु के प्रारंभिक गर्भावस्था का समय चल रहा होता है उस समय कुछ ऐसे खरपतवार या दूसरी चीजें खा ली जाती है जिसको हम लोग वैज्ञानिक भाषा में टेराटोजेंस बोलते हैं, जिससे बच्चे में एनोमली आ जाती है।

0: विकृति आ जाती है, जैसे बच्चे का फूल जाना या हाथ पैर टेढ़े मेढ़े होना या जोड़ों का अकड़ जाना या दो मुंह वाला बच्चा हो जाना, कई तरह की चीजें हो सकती हैं जो फिर प्रसव के टाइम पर इसको कठिन प्रसव में बदल दिया जाता है, जो फिर बच्चा आसानी से बाहर नहीं आता है। उसके अलावा आजकल जैसे हम लोग पशु खरीदने जाते हैं तो गाभिन पशुओं में या जो बच्चा देने वाले पशु होते हैं उनकी कीमत बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि उससे हमें प्रोडक्शन मिलने वाला होता है, उत्पाद मिलने वाला होता है बच्चे के रूप में और आगे आने वाले समय में दूध के रूप में। तो ज्यादातर ऐसे पशुओं को लोग जब मेले से या पीठ से पेट से खरीद के लाते हैं उसको, तो गाड़ियों से जब ट्रांसफर करते हैं तो ऑटो उसमें जो मिनी ट्रक्स होते हैं उनमें लद के जब जानवर एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा होता है तब भी उसमें टॉर्जन होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। घर में कई सारे जानवर बंधे हुए हैं, उठने बैठने में जानवर गिर गया या बगल वाले जानवर के धक्का लगाने की वजह से गिर गया या दो जानवर लड़ गए, उसकी वजह से भी कभी कभी बच्चेदानी घूम जाती है। इसके अलावा भैंसों में जैसे आपको पता है कि हम सबको जानते हैं कि पानी में लौटने की आदत रहती है, कीचड़ में या तालाब में गाँवों में जो, तो ये जो उनकी आदत होती है वो गर्मी को, शरीर की गर्मी को शांत करने के लिए होती है क्योंकि उनका रंग काला होता है। लेकिन सही बात तो ये है कि अगर गर्भावस्था अंतिम पड़ाव पे है, मतलब सातवें आठवें नौवें दसवें महीने के आसपास भैंस चल रही है, उस समय ये पानी में लौटने की आदत की वजह से या दूसरी आदतों की वजह से जिसमें शरीर में बहुत ज्यादा हलचल होती है उसकी वजह से भी बच्चेदानी घूम जाती है। मैं बच्चेदानी घूमने के लिए इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि हमारे यहाँ क्लिनिक पे इसमें रोज कम से कम 2 से 3 केसेस, 4 केसेस आ रहे हैं। राजस्थान से भी कल एक, फिरोजाबाद से भी केस आया, तो वही समस्या थी। आज भी हम लोगों ने 2 बच्चेदानी घूमी भी ठीक करी, ठीक की गई है, तो ये एक समस्या होती। तो गर्भावस्था इसके लिए बचाव का भी उपाय अगर बात करें तो हम लोग जब गर्भावस्था का आखिरी समय चल रहा होता है उसमें पशु को ज्यादा इस तरह बाहर छोड़ना ठीक नहीं है, और जमीन में लौटना, सॉरी पानी में या कीचड़ में लौटना, इन सब चीजों से उसको बचा कर रखना चाहिए, खान पान अच्छा रखना चाहिए। और उसके अलावा और इसके कारण ऐसे भी हो सकते हैं जैसे मैंने आपको खरपतवार खाने वाली बात बताई, जानवर के झगड़ा करने, कूदने से, उछलने से, दूसरे जानवर से टकराने से, गाड़ियों से ले जाने से भी बच्चेदानी में आ जाता है। और कभी कभी कुछ पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी बच्चेदानी में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो बच्चेदानी इतनी अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर सके, संकुचित हो सके, जिससे कि बच्चा बाहर आ सके। उसके साथ साथ पोषण की वजह से कभी कभी बहुत सारी शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जो स्राव को या हार्मोन जिसको बोलते हैं आप लोग जानते हैं, वो इतने अच्छी मात्रा में या उचित मात्रा में नहीं निकाल पाती हैं जो कि बच्चे देने की प्रक्रिया को आखिरी तक ले जा सकें। तो जिन पशुओं में पोषण की कमी या इस तरह की चीजें होती हैं तो वो पशु भी प्रसव के टाइम पर कठिन प्रसव को चले जाते हैं, मतलब दिक्कत से बच्चा बाहर आता, खुद से नहीं निकाल पाते हैं, तो उसके लिए फिर हमें फिर पशु चिकित्सक की सलाह लेनी पड़ती है। तो इस तरह से अगर हम पशु का पोषण और ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें कठिन प्रसव के लिए उत्तरदायी हो सकती है।
1: चलिए, तो किशन भैया हमारे संग है डॉक्टर विकास जी, और आपने दी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। तो गर्भावस्था के अंतिम समय पर जो सावधानी है, पानी में लोट वो पशु उनके आपस में लड़ने की स्थिति के चलते दूर बांध लो, इन सब चीजों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जो पशु है वागो ब्याह एकदम ठीक हो। रक्षा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: डिस्टोकिया से बचाव, यही विषय पे भैया और डॉक्टर विकास सचान जानकारी दे रहे, और जानकारी ले रहे दिलीप कुमार यादव। अब भैया थोड़ा सा मौसम को आपको जानकारी दे दें, तो कल को भैया अधिकतम तापमान 37 डिग्री, न्यूनतम रहेगा 27 डिग्री, आपेक्षिक आर्द्रता जो है सापेक्षिक आर्द्रता रहेगी 68 और न्यूनतम रहेगी 28। भैया हवान की जो गति है कल रहेगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले 3 दिन में बरसात की कोई सूचना ना आए, कोई चेतावनी ना आए। अधिकतम तापमान आगे 35 से 38 के बीच में रहने की संभावना है, और हवा की दिशा उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम रहने की संभावना है। भैया समय रहते एक छोटो सो लोकगीत आपको सुनवा दें, फिर चलेंगे समापन की ओर। सुनो भैया प्रेमचंद के सुर में गायो जी लोकगीत।

प्रेमचंद के स्वर में गाए भई या ब्रज लोक गीत के संग ही भैया आज को हमारा जो ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम यही संपन्न करेबे कि हमें देव आज्ञा। सभी भैया बहन को राम राम।

किसान भाई और बहनें अभी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे ब्रज ग्रामीण। कार्यक्रम लेके आए थे आपके बीच वीरेंद्र सिंह, FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मेरठ में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए संगठन की तैयारियों को परखा। कार्यकर्ताओं से कहा, राष्ट्र प्रथम के भाव से करें काम। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चंदे में अनियमितता मामले में हुई सुनवाई।

0: अनियमितता मामले में हुई सुनवाई, सरकार ने कहा 25 सितंबर तक दाखिल कर दी जाएगी चार्जशीट। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने आगरा में इंडियन वेडिंग इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का किया शुभारंभ, कहा सरकार की नीतियों ने निवेशकों के लिए बनाया सकारात्मक वातावरण। और वाराणसी में 25 अक्टूबर को होगा इंडियन एयरफोर्स एरियल डिस्प्ले का आयोजन, भारतीय वायुसेना के जाबाज आसमान में दिखाएंगे अपना कौशल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने आज मेरठ में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर आए श्री नबीन ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी किया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में संगठन की स्थिति, आगामी चुनाव की तैयारियों और जमीनी स्तर से मिलने वाली प्रतिक्रियाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ समाज के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज दुनिया एक नए भारत के दर्शन कर रही है।
1: 2014 में जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री सरदार नरेंद्र मोदी जी ने देश की सत्ता को अपने हाथों में लिया था, एक नए भारत का दर्शन, एक भारत जो अपनी विरासत पर भी गर्व करता है और विकास के लिए जिसकी अपने की स्पीड है, एक ऐसा भारत जिस भारत के सामने अब पहचान का संकट नहीं है। अब भारत की अर्थव्यवस्था बॉटम फाइव से टॉप फाइव में आ गई है।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपने संबोधन में मेरठ को क्रांति की धरा बताया। उन्होंने कहा कि इस धरती ने कई ऐसे परिवर्तन दिए हैं जिन्होंने देश के साथ पूरी दुनिया को संदेश दिया है। श्री नबीन ने बीते 9.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में आए परिवर्तन का जिक्र करते हुए कहा कि आज राज्य में कानून का राज है और उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है।
2: आज हम कह सकते हैं कि भाजपा की सरकार में भरोसा का वातावरण है। आज हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून का राज है, और आज हम कह सकते हैं कि विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश चल पड़ा है और विकसित राज्य के दृष्टि से आगे बढ़ रहा है।
0: श्री नवीन ने युवाओं से संवाद के दौरान युवाओं को देश की मौजूदा ताकत बताया। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष कल सहारनपुर में सांसदों, विधायकों, जिला स्तर के पदाधिकारियों और पूर्व पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चंदे में अनियमितता मामले पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की बेंच को बताया कि अदालत द्वारा नियुक्त एसआईटी 25 सितंबर या उससे पहले अपनी पहली चार्जशीट दाखिल करेगी। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में पहली गिरफ्तारी से 90 दिन की वैधानिक अवधि जल्द ही खत्म होने वाली है, उस अवधि से पहले चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। इस दौरान शीर्ष अदालत ने एसआईटी की ओर से पेश की गई विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट भी देखी। वहीं एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा ने आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ के रूप में औपचारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया है। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने आज आगरा में दो दिवसीय इंडियन वेडिंग इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव एंड एक्सपो का शुभारंभ किया। इस एक्सपो में देश के विभिन्न राज्यों से आए उद्यमी प्रदेश में वेडिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। इस दौरान मीडिया से बातचीत में पर्यटन और संस्कृति मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की नई पर्यटन नीति, सरकार के प्रयास, उद्यमियों को दी जा रही सुविधाओं और बेहतर कानून व्यवस्था के निवेशकों के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार किया है।
3: पर्यटन क्षेत्र में नई पॉलिसी एडॉप्ट करके इन सब लोगों को नई सहूलियत देने का, सब्सिडी देने का, तमाम इंसेंटिव देने का काम किया है, जिससे मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान में चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो, कनेक्टिविटी का हो, या नई पॉलिसी तमाम सुविधा संसाधन और सब्सिडी देने का विषय हो, आज देश और दुनिया के तमाम निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज़ ऑन एआईआर

0: www.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष के उपलक्ष्य में चल रहे सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आज जनभवन स्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए निबंध और स्लोगन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं का उद्देश्य विद्यार्थियों में स्वस्थ जीवन शैली, नशा मुक्ति और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता व रचनात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना था। प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 तक के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। वहीं इटावा में जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने अभियान के तहत शुरू हुई वाराणसी से वडनगर यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में यात्रा के इटावा से गुजरने के दौरान रूट, स्वागत स्थलों, यातायात और सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की गई। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर हम विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। वर्षों के इंतजार के बाद हुए भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ ही भगवान राम की नगरी अयोध्या आज वैश्विक पटल पर धार्मिक पर्यटन और विकास की नई इबारत लिख रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी। इसी राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
2: राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगी।
1: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप यहां सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ है।
3: अयोध्या में जब से राम मंदिर बना है अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
1: अयोध्या आज न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि धार्मिक पर्यटन, कनेक्टिविटी और रोजगार के मामले में नए आयाम स्थापित करके भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत का वैश्विक प्रतीक बन रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: वाराणसी में नमो घाट पर 25 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स एरियल डिस्प्ले 2026 का आयोजन होगा। इस दौरान वायुसेना के जाबाज आसमान में अपनी सटीकता, कौशल और समन्वय का प्रदर्शन करेंगे। आयोजन में मध्य वायु कमान की 6 दशकों से अधिक की गौरवशाली विरासत और युद्ध अभियानों, आपदा, राहत और मानवीय सहायता में निभाई गई भूमिका को भी प्रदर्शित किया जाएगा। हवाई प्रदर्शन के समय दर्शक क्षेत्र, यातायात, पार्किंग और सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश आयोजन की तिथि के निकट आधिकारिक माध्यमों से जारी किए जाएंगे। राज्य के कुछ जनपदों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश से मॉनसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। आगामी 48 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मेरठ में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए संगठन की तैयारियों को परखा। कार्यकर्ताओं से कहा राष्ट्र प्रथम के भाव से करें काम। सर्वोच्च न्यायालय में आज श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चंदे में अनियमितता मामले में हुई सुनवाई। सरकार ने कहा 25 सितंबर तक दाखिल कर दी जाएगी चार्जशीट। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने आगरा में इंडियन वेडिंग इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का किया शुभारंभ। कहा सरकार की नीतियों ने निवेशकों के लिए बनाया सकारात्मक वातावरण। और वाराणसी में 25 अक्टूबर को होगा इंडियन एयरफोर्स एरियल डिस्प्ले का आयोजन। भारतीय वायुसेना के जाबाज आसमान में दिखाएंगे अपना कौशल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: किधर है?
5: बेटी का नया अकाउंट और मेरा केवाईसी अपडेट।
4: ये तो झटपट काम है।
5: कैसे?
4: अगर केवाईसी डिटेल्स में चेंज नहीं या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल, ऑनलाइन या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो।
5: और बाकी चेंजेस?
4: घर बैठे वीडियो केवाईसी या आधार ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से, सिर्फ बैंक ऑथराइज्ड चैनल से।
5: ये नूडल्स बनाने जितना आसान है।
6: आरबीआई कहता है
7: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
8: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
8: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
9: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए फरमाइश।